नमस्कार श्रोताओ, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026। सुबह के 5:56 और 48 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 462.6 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु

0: शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

कुछ एहसास शब्दों में नहीं ढलते, बस दिल में उतर जाते हैं। कभी ये सरहद पर खड़े एक सैनिक की आंखों में दिखता है, तो कभी किसी मां की दुआओं में, कभी ये तिरंगे की लहराती शान में नजर आता है, तो कभी उन अनकहे बलिदानों में। ऐसी हमारी हिंदुस्तान की सरजमी को नमन करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा देशभक्ति गीत।

कुछ आवाजें वक्त के साथ नहीं मिटती, वो सदियों तक गूंजती रहती है। संत कबीर की वाणी भी ऐसी ही एक गूंज है जो हर युग में हमें सच का रास्ता दिखाती है। न किसी आडंबर की जरूरत, न किसी दिखावे की चाह, बस सीधी सरल और सच्ची बात जो दिल को छू जाए।

मीराबाई के गीत की शुरुआत तो खुद भक्ति का उत्सव होती है, जिनके लिए श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं बल्कि उनके प्राण, उनकी सांस और उनका संपूर्ण अस्तित्व थे। मीरा की वाणी में विरह भी है, मिलन भी, आंसू भी है और अनंत प्रेम की मधुरता भी। तो आइए उसी समर्पण और प्रेम की धारा में डूबते हुए सुनते हैं मीराबाई का एक अनुपम भजन।

जीवन के अंधकार में जब कोई दीपक बनकर राह दिखाता है तो वो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि गुरु कहलाता है। गुरु वो शक्ति है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है, जो हमारे भीतर छिपे सत्य को पहचानना सिखाती है। आज की इस पावन बेला में आइए हम सब मिलकर उस दिव्य शक्ति को नमन करें और अपने मन को विनम्र करते हुए गुरु के चरणों में

आज भक्ति संगीत से सजी इस मधुर बेला में आपने हमने अपने इष्ट और ईश्वर के साथ उन भक्तों की भक्ति को भी प्रणाम किया जो चीरकाल तक भक्तों को आस्था और विश्वास की प्रेरणा देती रहेगी। इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में ये सुमधुर भक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन, संगति का महत्व। आलेख निहारिका श्रीवास्तव का है और वाचन स्वर मुकाम सिंह चौहान के।
1: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका व्यक्तित्व, सोच और आचरण बहुत हद तक उसकी संगति पर निर्भर करता है। संगति का मतलब होता है हम किन लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं और किन की बातों को रोज सुनते हैं। हमारी आदतें, सोच और व्यवहार बहुत हद तक हमारी संगति से बनते हैं। अगर हम अच्छे, सच्चे और मेहनती लोगों की संगति में रहते हैं तो हम भी धीरे धीरे अच्छे गुण सीख लेते हैं। हमें सही गलत की पहचान होने लगती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसके उलट अगर हमारी संगति गलत लोगों से हो जाए तो हम भी गलत आदतें अपना लेते हैं, जैसे झूठ बोलना, आलस करना या बुरे कामों में पड़ जाना। जैसे सुवासित फूलों के पास रहने से वस्त्र भी सुगंधित हो जाते हैं और दुर्गंध के समीप रहने से वही वस्त्र दुर्गंधित हो उठते हैं, उसी प्रकार अच्छे या बुरे लोगों की संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस कहावत का अर्थ है कि संगत का असर हर किसी पर कम या अधिक होता ही है। वैज्ञानिकों का भी कहना है कि बच्चों की आदतों पर उनके भाई बहनों और मित्रों के व्यवहार और तौर तरीकों का बहुत ज्यादा असर होता है। बच्चे ज्यादातर बातें अपने भाई बहनों व अपने माँ बाप को देख कर ही सीखते हैं। कदल सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। जैसे एक ही स्वाति बूंद केले के गर्भ में पड़कर कपूर बन जाती है, सीप में पड़कर मोती बन जाती है और अगर सांप के मुंह में पड़ जाए तो विष बन जाती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की संगत का उस पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति व्यक्ति में सद्गुणों का विकास करती है। सत्संग से विवेक, करुणा, अनुशासन और सकारात्मक सोच का जन्म होता है। महापुरुषों, विद्वानों और सदाचारी लोगों के साथ रहने से जीवन का सही मार्ग मिलता है और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बना रहता है। वहीं कुसंगति व्यक्ति को गलत आदतों, नकारात्मक विचारों और पतन की ओर ले जाती है। कई बार प्रतिभाशाली व्यक्ति भी गलत संगति के कारण अपना लक्ष्य और मूल्य खो देता है। आज के समय में संगति केवल लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि किताबें, सोशल मीडिया, मनोरंजन के साधन भी हमारी संगति का रूप है। इसलिए आवश्यक है कि हम सोच समझकर अपनी संगति चुने जो हमें बेहतर इंसान बनाए। मान लीजिए एक बच्चा रोज मेहनती और पढ़ाई में रुचि रखने वाले बच्चों के साथ रहता है, उन्हें देखकर वह भी समय पर होमवर्क करने लगता है और पढ़ाई में अच्छा करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वही बच्चा ऐसे बच्चों की संगति में चला जाए जो पढ़ाई से भागते हैं और शरारत करते हैं तो वह धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। अर्थात जिनके पास हम रहते हैं उनका असर हम पर जरूर पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छी संगति चुननी चाहिए। संत कबीर ने कहा है, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल होए, जैसे पानी संग दूध के पानी दूध होए। संगति हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। अच्छी संगति हमें ऊंचाई पर ले जाती है जबकि बुरी संगति हमें नीचे गिरा देती है। कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य का स्वभाव और उसका जीवन उसकी संगति के अनुसार ही ढलता है। व्यक्ति जिन लोगों के साथ उठता बैठता है उनके गुण दोष अनजाने में ही उसमें समा जाते हैं। अच्छी संगति से मनुष्य में सद्गुणों का विकास होता है जबकि बुरी संगति उसके चरित्र को पतन की ओर ले जाती है। जैसी संगति होती है वैसा ही फल मिलता है। जैसे दूध में पानी मिल जाए तो पानी भी दूध जैसा बन जाता है, वैसे ही मनुष्य भी अपनी संगति के प्रभाव में आकर वैसा ही बन जाता है। अतः जीवन को सही दिशा देने के लिए सदैव उत्तम और सज्जनों की संगति करना चाहिए। कहा जा सकता है कि जीवन की दिशा तय करने में संगति का अत्यंत महत्व है। यदि हम उन्नति, शांति और सार्थक जीवन चाहते हैं तो हमें सदैव सत्संग को अपनाना चाहिए और कुसंगति से दूर रहना चाहिए। अतः हमें सोच समझकर अपनी संगति चुननी चाहिए। अच्छी संगति न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारती है बल्कि हमें जीवन में सही दिशा भी देती है।
0: यह था आज का चिंतन, संगति का महत्व। आलेख निहारिका श्रीवास्तव का और वाचन स्वर मुकाम सिंह चौहान के। श्रोताओ, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। खेती की बातें में लीजिए सुनिए, सोयाबीन की प्रजाति का चयन किस प्रकार करें।
2: खेती की बात कार्यक्रम में तुम्हारी स्मिता बहन की राम राम स्वीकार करो। आज हम खेती की बात में जानेंगा कि सोयाबीन की बुआई में सबसे खास ख्याल रखने की बात है कि हमारे सोयाबीन की कौन सी प्रजाति को चयन करना है और कैसी हमारी भूमि है, तो उसका अनुसार हम कैसी सोयाबीन की प्रजाति लेनी है। भाई बहनों, और सबसे पहला तो सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यो रेवे की भूमि, मतलब हमारी जमीन जो है उसका आधार पे हमारे सोयाबीन की जो है प्रजाति के चयन करना चाहिए। और हमारी जो जमीन है सोयाबीन का सारू उको पीएच मान 6.5 से 7.5 का बीच होना चाहिए। हल्की कदी मध्यम भूमि है तो इका में पोषक तत्व की कमी रहे, साथ ही जल धारण करना की क्षमता भी इकमें कम पाई जावे। ऐसी भूमि में अगेती से मध्यम अवधि की प्रजाति का बीज बोना चाहिए, जैसे JS 95-60 या JS 93-05 अन JS 20-34। ये सब ऐसी प्रजाति ना है जो कि हल्की मध्यम भूमि जो रहे, जिका में पोषक तत्व कम रहे और पानी जल धारण करने की क्षमता भी नहीं रहे, ऐसी में ये प्रजाति ना काम देवे है। ऐसे ही मध्यम से भारी भूमि कदी होए तो उका में बुआई का पहला जल निकासी की प्रबंधन कर देना जरूरी है। यदि प्रबंधन अच्छा से करांगा तो लंबी अवधि आना अच्छी फैलने वाली प्रजाति का बीज की बुआई हम करी सका। हाँ, जैसे कि JS 335, NRC 7, JS 97-52, JS 20-29, RVS 2001-04, JS 20-69, NRC 86। ये सब हम प्रजाति ना की बुआई जो है हम चाहवा तो कदी मध्यम से भारी भूमि रहे तो उका में हम करी सका। हाँ, और भी विभिन्न और खास ध्यान रखने की बात यह है कि हल्की से मध्यम भूमि में जब बुआई करा तो उका में कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, अना मध्यम से भारी भूमि में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर होनो जरूरी है। इका साथ यो भी हमारे निश्चित करनो है कि कदी हम एक ही प्रजाति की जो है पूरा जो क्षेत्र है हमारा पास, जितनी भी जमीन हमारा पास है उका में हमारे एक ही प्रजाति की बुआई नहीं करनो है। 2 से 3 प्रजाति की बुआई हमारे एक साथ एक खेत में अलग अलग स्थान पे करनो चाहिए, जो कि हमारा स्वरूप बहुत ही काम देवे है। भाई बहन, और कदी भी हम सबसे पहली बात यही रहे कि बुआई जो है वो कदी हम प्रजाति सही चयन करांगा, भूमि के अनुसार हम चयन करांगा तो स्वाभाविक है कि हमारे घनी आसानी से हम जो है बुआई करी सकांगा और अच्छा से अच्छी फसल ली सकांगा। ऐसे कैसे करना है तो तुम्हारी स्मिता बहन के अनुमति में दुवाणी के विराम, राम राम।
0: खेती की बातें में अभी आपने जाना सोयाबीन की प्रजाति का चयन किस प्रकार करें। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

ज्ञान और भक्ति मार्ग की मीमांसा करते हुए काकभुशुंडी ने जहां ज्ञान को दीपक की संज्ञा दी, वहां दूसरी ओर भक्ति को ऐसी मणि बताया जो स्वयं प्रकाशित है। इस मणि का जिस हृदय में निवास होता है, वो अपने आप अनन्य रूप से परम प्रकाशित हो जाता है। ये ऐसा धन है जिससे मोह रूपी दरिद्रता मिट जाती है। लोभ रूपी हवा उसे दीपक की भांति बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि तो स्वयं प्रकाश रूप है, जिसे दीपक की भांति किसी साधन से प्रज्वलित नहीं किया जाता। जिनके हृदय में भक्ति का निवास होता है, उनके समीप काम, क्रोध, लोभ और मोह नहीं आ सकते। भक्त के लिए विष भी अमृत के समान होता है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। अतः चतुर उन्हें जानना चाहिए जो इस अनुपम मणि को पाने का यत्न करते हैं, और इसे प्राप्त करना कष्टसाध्य नहीं होता। इसे प्राप्त करने की इच्छा करने वाले

ये था श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। स्वर भूपेंद्र सिंह के थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण दे देवें। सुबह 7:20 पर कार्यक्रम होगा इंदौर परिक्रमा। श्रोताओं, सदाभर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 7:35 पर।

सहसंक सम्राट विक्रमादित्य, ये रूपक हम आपको सुनवाएंगे सुबह 8:30 पर लोक संगीत में। सुमित्रा कौचले के गाए लोकगीतों का आनंद लीजिएगा सुबह 9:00 और स्वर्ण संगीत में रोशन भारती की गाई रचनाएं हम आपको सुनाएंगे 9:15 पर। शास्त्रीय संगीत में पंडित सुरेश शंकर अवस्थी का ख्याल गायन सुनिएगा, राग होगा विलास खान तोड़ी। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगी सुबह 10:00 और 10:05 से 11:00 तक आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। श्रोताओं, महिला कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 1:00। आरंभिक चर्चा होगी सेल्फ केयर क्यों जरूरी है, साथ ही आकाशवाणी के 90 वर्ष योजना में जानेंगे मुद्रा योजना के विषय में और आहार विशेषज्ञ सपना जैन से दुर्गेश नंदिनी की बातचीत हम आपको सुनाएंगे इसी कार्यक्रम में। साथ ही जानेंगे किचन टिप्स में महिलाओं के लिए विशेष हेल्थ टिप्स। हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में आपको बता दें, फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने का अनुप्रसारण होगा दिन में 11:00। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 12:00 से। संग्रहालय से कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा 12:30 पर। श्रोताओं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5:00 युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी के साथ। आरंभिक चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर। आज का क्रम में साप्ताहिक विज्ञान और खेल गतिविधियां हम इस विषय में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:45

और प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6 बजे। सुगम संगीत में कव्वालियों का आनंद लीजिएगा शाम 6:30 पर। लोक संगीत में चंद्र प्रकाश हीरालाल सोनवी के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:45 पर। किसान श्रोताओं कार्यक्रम खेती गृहस्थी होगा शाम 7:20 पर। आज की बात होगी किसान क्रेडिट कार्ड पर। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगा 8 बजे। दिल ने फिर याद किया ये कार्यक्रम होगा 8:15 पर। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत होगा 9:15 पर। और श्रोताओं आपके मनपसंद फरमाइशी गीत हम आपको सुनवाएंगे मनभान कार्यक्रम में रात 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत में विदुषी गंगूबाई हंगल का गाया राग यमन हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30। ये था विवरण आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: झंझावात चक्रवात विद्युत पातादिभिः अतिवृष्टि कारणात् न्यूनातिन्यूनम् एकादशोत्तर एकशतम् जनाः मृताः द्विशताधिकाः जनाः व्रणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मण्डलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुरा मण्डल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते शतं किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतं आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं षट्स्तोभकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्ध सप्तवादने लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की छह दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं।

0: व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों सिक्किम तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सच कहा, और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: पर सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, सुबह 10:05 से 11 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का प्रसारण होगा, जिसमें आप हमें कॉल करके अपने पसंद का गीत सुन सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे फोन नंबर नोट करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो फोन करना न भूलें आज सुबह 10:05 से 11 बजे तक। आपका मनपसंद सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पांच देशों की छह दिवसीय यात्रा पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर सिंहस्थ कृषि, सिंचाई और यूसीसी जैसे मुद्दों पर किया मंथन। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे के घायलों से मुख्यमंत्री ने जाना हाल। मामले में आरोपी संचालक गिरफ्तार, फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त। और मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास में आज तीव्र लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की छह दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पांच देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। यात्रा से पहले मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष यूएई भारत के कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत था, जिसने भारत की लगभग 11% आवश्यकता को पूरा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी गैस के साथ लगभग 45 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंध प्राप्त किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कई वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विकास कार्यों, आधारभूत संरचना, धार्मिक पर्यटन, कृषि, सिंचाई, शहरी विकास और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की इन बैठकों को मध्य प्रदेश के विकास एजेंडे और आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने श्री शाह से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में नक्सल उन्मूलन अभियान की जानकारी दी।
1: हमारे राज्य के अंदर के नक्सल जिले जो एक तरह से देश के अंदर मध्यप्रदेश का मंडला, बालाघाट, डिंडोरी का इलाका जो एक राज्य के नाते से नक्सल मुक्त हुआ, माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन में, माननीय गृहमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और उन्होंने हमारे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के नए कानूनों को लागू करने की जिस तरह से मैकेनिज्म पे मध्यप्रदेश सरकार काम कर रही है, उससे हमने संतोष व्यक्त किया।
0: वहीं केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से भेंट कर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों के हित में केंद्र सरकार से गेहूं खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की है।
1: प्रहलाद जोशी जी से मुलाकात हुई। हमारे लिए राज्य में गेहूं खरीदी को लेकर के देश में सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं की परचेसिंग अगर कहीं हुई है तो मध्यप्रदेश में हुई। 16 लाख मीट्रिक टन का हमारा टारगेट है। आज तक 75 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हम गेहूं जमा कर चुके हैं। ऐसे में 100 लाख से भी ऊपर जाने के कारण से हमने प्रहलाद जोशी जी से निवेदन किया कि वो हमारा टारगेट बढ़ाए ताकि हम और अधिक किसानों से गेहूं खरीद सके।
0: दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने एक सकारात्मक पहल करते हुए मेट्रो से सफर कर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के महत्व को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन में कमी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी मेट्रो बहुत उपयोगी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास जिले के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसों में घायल नागरिकों से भेंट कर उनके उपचार की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस हादसे से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक इस हादसे में 4 लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है। हादसे में 27 लोग घायल हुए थे, जिन्हें देवास और इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। देवास जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी पवन पाटीदार ने घायलों को लेकर जानकारी दी।
2: हमारे पास सुबह 3:30 बजे खबर आई थी कि कला के पास में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है। पास में जो स्थिति थी उसमें कम से कम हमारे पास 28 लोग आए थे, जिसमें से हमने 13 लोगों को यहाँ से रेफर कर दिया इंदौर के लिए, ताकि 12 लोग हमारे पास स्थिति नॉर्मल थी तो हमने एडमिट कर लिया। मतलब उनकी एक संख्या बढ़ी थी 4 बजे।
0: इस बीच पटाखा फैक्ट्री विस्फोट और आगजनी मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। फैक्ट्री मालिक अनिल मालवी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इधर संभागायुक्त आशीष सिंह ने टोंककला में संचालित आतिशबाजी विनिर्माण एवं विक्रय फैक्ट्री में हुई घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, विद्यालय शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक, सीबीएसई के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर आज शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का शुभारंभ करेंगी। भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसुमरिया और स्थानीय विधायक भगवान दास सबनानी उपस्थित रहेंगे। भोपाल, रायसेन और नर्मदापुरम जिलों के प्रतिभागी छात्र छात्राएं भी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। यह योजना प्रदेश के 20 चयनित जिलों में संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य ओबीसी वर्ग के प्रतिभावान युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य अर्धसैनिक बलों की भर्ती परीक्षाओं के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना है। योजना में प्रदेश भर से चयनित 4,000 प्रतिभागियों को जिला स्तर पर 45 दिनों का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने कल धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 8 विकेट पर 200 रन बनाए, जिसके जवाब में 201 रन का लक्ष्य मुंबई ने 6 विकेट और एक गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। राजनीति में शक्ति प्रदर्शन और वीआईपी संस्कृति पर बड़ा प्रहार करते हुए राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की है। उज्जैन से भोपाल लगभग 200 गाड़ियों के काफिले के साथ पदभार ग्रहण करने पहुंचे ठाकुर को मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इसके साथ ही मामले के निराकरण तक उनके सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों को छोड़कर पूरा प्रदेश हीट वेव यानी लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास में 15, 16 और 17 मई को तीव्र लू की चेतावनी जारी की है। वहीं नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, हरदा और झाबुआ में भी तीव्र लू चलेगी। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, सागर और रीवा संभाग के जिलों में 18 मई तक लू चलने की संभावना है। इसके पहले कल शाजापुर और छतरपुर के नौगांव में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों शहर प्रदेश के सबसे गर्म शहर रहे। वहीं 9 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा के शासकीय नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत आज से प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। आगरमालवा के सुसनेर आईटीआई में युवा संगम के तहत आज रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी के सांदीपनी विद्यालय प्रांगण अमरपुर में कल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सामूहिक विवाह समारोह में 166 वर वधु परिणय सूत्र में बंधे। मंडला के रामनगर में आज से 2 दिवसीय आदि उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम शामिल होंगे। गुना में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बरसाती नदी एवं सिद्ध की झिरिया क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चलाया गया और कलेक्टर शाजापुर ने आगामी त्योहारों के चलते प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर सिंहस्थ, कृषि, सिंचाई और यूसीसी जैसे मुद्दों पर किया मंथन। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे के घायलों से मुख्यमंत्री ने जाना हाल। मामले में आरोपी संचालक गिरफ्तार, फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त। और मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास में आज तीव्र लू चलने की चेतावनी जारी की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच कहा। इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
2: प्रस्तुति कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा।
3: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा।
4: क्या बात है, क्या बात है, इंदौर की क्या बात है।
3: इंदौर परिक्रमा।
5: नमस्कार श्रोताओं, इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम के साथ मैं मुकाम सिंह चौहान। श्रोताओं, इन दिनों मालवा निमाड़ प्रचंड गर्मी से झुलस रहा है। इंदौर में लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है और जहां दिन में तापमान ज्यादा होता है वहीं रातें भी गर्म हो रही है। वैसे तो जेठ महीने के आरंभ में ही गर्मी के तीखे तेवर हो जाते हैं, पर इस बार कुछ अधिक ही गर्म दिनों के साथ रातें भी गर्म हो रही है। इसी कारण दिन में बाजार सूने से लग रहे हैं और गर्मी का आलम यह है कि पक्षी भी पेड़ों पर दुबके बैठे हैं। इसीलिए शहर के कई पशु पक्षी प्रेमी निरंतर पशु पक्षियों के लिए पानी और खाद्यान्न की व्यवस्था करते हैं और प्रशासन भी अलर्ट है, क्योंकि यदि लू की चपेट में लोग आते हैं तो उनकी सुविधाओं के लिए अस्पताल तैयार हैं। लेकिन आप सभी को भी अपना बचाव स्वयं करना है। श्रोताओं, CBSE ने 12वीं के रिजल्ट बुधवार को घोषित कर दिए हैं। इसमें इंदौर के छात्रों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इंदौर के छात्रों ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि वे न सिर्फ पढ़ाई में अव्वल हैं, बल्कि देश में इंदौर का नाम रोशन कर रहे हैं। बुधवार को आए परिणाम में मध्य प्रदेश के 80,454 विद्यार्थी शामिल थे। इनमें अर्णव सिसोदिया PCM में 98.4% के साथ प्रथम स्थान पर रहे, वहीं अनुभूति अग्रवाल 99.2% के साथ बायो में प्रथम रही। अभिराज सिंह सेंगर ने आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में 98.6% अंक हासिल कर प्रथम स्थान हासिल, और युवराज सराफ ने कॉमर्स संकाय में 99% अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि के लिए इन बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में देश की जनता से ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए आह्वान के बाद इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। शहर के प्रथम नागरिक ने निर्णय लिया है कि वे अब सप्ताह में कम से कम एक दिन अपने निजी या सरकारी वाहन का त्याग कर सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग करेंगे। महापौर के इस कदम को शहर में पर्यावरण चेतना जगाने और यातायात के दबाव को कम करने की दिशा में एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए देशवासियों से इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग, लोक परिवहन के उपयोग और पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील की है। उन्हें इस बात पर गर्व है कि इंदौर, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री ने एक दौर कहा है, पिछले 3 वर्षों से नो कार डे के माध्यम से पूरे देश को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता आ रहा है और यह निर्णय उसी परंपरा को और मजबूती प्रदान करेगा। श्रोताओं, इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में हाल ही में नर्मदा चिंतन ज्ञान यज्ञ आयोजित हुआ। मंदिर परिसर में तपोनिष्ठ संत दादा गुरु भगवान के सानिध्य में नर्मदा चिंतन ज्ञान यज्ञ चला और हजारों भक्तों ने इसमें भाग लेकर संकल्प लिया। इस अवसर पर संत दादा गुरु ने कहा,
6: यशोदा मैया को निमित्त बना के वो माटी की सामर्थ्य को ठाकुर जी ने बताया कि माटी के एक कण में छिपी हुई वो अनंत शक्तियों का दर्शन कराया कि ये माटी का एक एक कण में छिपा इस ब्रह्मांड की वो शक्तियां माटी का मान करते हैं और माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताते हैं। मुख में माटी को रखकर मेरी गोविंद ने माटी का मान बढ़ा दिया और माटी की महिमा और माटी के महत्व को बता दिया और माटी हमारा अस्तित्व है ये सारे जगत को बता दिया। दुनिया में केवल हम हैं जो माटी से जुड़कर जीने की बात करते हैं, कारण मेरे परमात्मा ने आकर मुझे बता दिया, माटी से जोड़कर जीना मुझे सिखा दिया। और माटी की सामर्थ्य को मुझे बता दिया। आज हमारी जातियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी माटी तो एक है। दुनिया में हम ही हैं जिसने माटी की महत्वता को जाना कि ये माटी कितनी कीमती है, और माटी के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। जैसे कभी कोई मर जाता है, किसी का मृत्यु हो जाती है, और वो कहीं उस मृत्यु में जाता है, सब यात्रा में जाता है, और फिर उसके बाद कोई उसको मिलता है तो बोलते कहाँ गए थे, बोले मिट्टी। लेकिन माँ केवल जन्म ही नहीं देती, माँ वो शक्ति है जो जीवन भी देती है। जन्म भी दिया, जीवन भी दिया, और जीवन को कैसे हमें जीना है वो माँ ने ही बताया। एक माँ ही है जो जीना सिखाती है बच्चों को। केवल जन्म नहीं देती, केवल जीवन ही नहीं देती, वो माँ ही है जो बच्चों को जीवन सिखाती है। एक माँ ही है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती। जन्म भी दिया, जीवन भी दिया, जीना भी सिखाया, आत्मनिर्भर भी बनाया, और वो माँ ही है जिसने वो परमात्मा और ईश्वर से।
7: तो विंध्याचल पर्वत को पार करते हुए नर्मदा के तट पर आए और रुक्मी ने वहां श्री कृष्ण को पकड़ लिया। अब जैसे रुक्मी ने रोका तो उनका आपस में युद्ध, हमारा भाई है और विवाह मंगल कार्य कहलाता है, और मांगलिक कार्य में अगर वधू के भाई के साथ

0: श्रोताओं, इंदौर के दशहरा मैदान में 6 मई से 12 मई 2026 तक 7 दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ मालवा महोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। मालवा उत्सव का ये 25वां साल था और इसके संरक्षक इंदौर के सांसद शंकर लाल वानी है। इस महोत्सव में 21 राज्यों की झलक दिखाई दी, जिसमें 400 कलाकार और 450 से अधिक शिल्पकार शामिल हुए। इस महोत्सव की प्रमुख प्रस्तुतियों में गुजरात की सिद्धि धमाल, गरबा रास, भील समुदाय का भगोरिया नृत्य, तेलंगाना का घुस्साड़ी नृत्य, गोवा का कुनबी नृत्य, छत्तीसगढ़ का गेंडी नृत्य, महाराष्ट्र का धनगरी गाजा नृत्य और इसके साथ ही शास्त्रीय प्रस्तुतियों के अंतर्गत राम स्तुति, कालिया मर्दन, हनुमान चालीसा और ओडिशी नृत्य प्रमुख रहे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे और उन्होंने बताया,
1: ये मालवा महोत्सव और जिसका रजत जयंती वर्ष है, इसके प्रणेता माननीय सांसद श्रीमान शंकर ललवानी जी, सच में मेला

0: मेल मिलाप की जगह होती है, परस्पर आत्मीयता बढ़ाने की जगह होती है। और ऐसे में कितना अच्छा लगता है कि हमारे अलग अलग प्रांतों के अलग अलग कलाकार इस मालवा उत्सव में अपनी प्रस्तुति देते हुए आत्मीयता बढ़ाने के लिए आते हैं। इसलिए जोरदार अभिनंदन सभी कलाकारों के साथ। परमात्मा की कृपा है, वाहे गुरु का आशीर्वाद है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय शंकर भैया का अभिनंदन स्वागत। मेरी अपनी ओर से चूंकि रजत जयंती वर्ष है, वो रजत जयंती वर्ष में धूमधाम के साथ ये आयोजन हो रहा है, ऐसे में इस संस्था के लिए हमारे अपने मन से भी वास्तव में महाकाल की कृपा से जिसने अच्छे ढंग से ये पूरा आयोजन किया है, ऐसे में इस आयोजन की और 125वीं जयंती में हम सब मिले इस कामना के साथ मैं अपनी ओर से सबको बधाई देता हूं। और 5 लाख रुपया हमारे इस आयोजन के लिए संस्था को देने की घोषणा भी करते हैं। सारे कलाकारों के लिए मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। अभी यहाँ के पहले मैं मराठी जत्रा से आया हूँ और वो भी मैंगो आम की जत्रा। मैंगो आम भी खास मैंगो कौन सा, रत्नागिरी वाला हापुस आम। हापुस आम का अपना अलग आनंद है। ऐसे में हमारे मराठी समाज द्वारा ये जो अलग अलग सेवा के काम कर रहे हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। वहां ताई जी मिली थी, ताई जी के साथ पूरा समाज उपस्थित था। मैं अपनी ओर से दोनों आयोजनों के लिए भी शुभकामना दे रहा हूँ।
1: वो शानदार है, हमने झूले भी है, ऊंट वगैरह भी है, वो शानदार वगैरह मिनिमम प्राइस पर मिल जाते, रेंज बहुत बड़ी मिलती है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है हमारे मालवा उत्सव की, यहाँ पर मालवा की खुशबू आती है। नंबर दो, इंदौर का जो स्वभाव है, ये एक शौकीन शहर है, ये सबको अपना लेता है। तो चाहे गुजरात का स्टॉल हो, चाहे महाराष्ट्र का स्टॉल हो, इंदौर सबको अपनाता है, सबका स्वागत करता है। सबसे विशेष देखा वो है मैनेजमेंट, सुविधाएं बढ़ती चली जा रही है, ज्यादा स्मूथली आप घूम सकते हो, टेक्नोलॉजी का सरकार ने प्रयोग करा है, स्वच्छता की बात हुई है, सुहावनापन लगता है। तो दिनों दिन बदलाव आया, परिष्कृत हुआ है, ज्यादा बेहतर हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में बेहतरीन हो जाएगा।
2: मेरा नाम मौली बेचर है और मैं इंदौर से। हम लाइक
3: हम लोग बहुत अच्छा लगता है,
2: अच्छी लगती है, बहुत
3: जो व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, शॉप भी बहुत ज्यादा आई होगी यहाँ पर।

और श्रोताओं, अब बात आम के शौकीनों के लिए। इंदौर में 8 से 10 मई 2026 तक 3 दिवसीय इन ग्रामीण हाट बाजार में हुआ, और इस आयोजन की खास बात ये थी कि यहाँ महाराष्ट्र की रत्नागिरी और देवगढ़ के प्रसिद्ध हापुस अल्फांसो आमों की प्रदर्शनी और बिक्री की गई। 25 से ज्यादा आम उत्पादक किसान सीधे स्टॉल लगाकर अपने आमों की बिक्री

0: की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने स्टॉल देखे और किसानों से बात की। मुख्यमंत्री ने 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की। ये आयोजन मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।
1: 14 वर्षों से हम मैंगो जत्रा जो मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट की ओर से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जो भी हाफूस उत्पादक रहते हैं, जो खास किसान रहते हैं, उन्हीं को यहाँ पर बुलाया जाता है। रत्नागिरी और देवगढ़ दो जगह के यहाँ पे हाफूस आते हैं, और केवल हाफूस आम ही यहाँ पर आता है।
2: हमारे पास मैम अल्फेंसो है, बहुत अच्छा है, साइज पर डिपेंडेंट है आमों की प्राइस। अब ये सबसे छोटा है, ये 3 डजन में आपको 2,000 के लिए मिलेगा।
3: 1,200 रुपए
4: से डजन से लेके 500 रुपए डजन तक भाव है रत्नागिरी अल्फेंसो। सभी लोगों के पास अल्फेंसो ही है। हमारे इधर 99.99% अल्फेंसो ही वैरायटी आती, सबसे स्पेशल है। सब आम में भी सबसे ज्यादा टेस्टी, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा जिसको सुगंध है, स्वाद है, वो सबसे ज्यादा हमारा अल्फेंसो ही रत्नागिरी और देवगढ़ का। हम लोग 14 साल से आ रहे हैं। बहुत जबरदस्त आयोजन रहता है। ये जो इनकी जो टीम है, मराठी सोशल ग्रुप है, ये मैंगो जत्रा जो अरेंज करते हैं, वो लोग बहुत बढ़िया इंतजाम करते हैं, बढ़िया एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अच्छा ग्राहक मिलता है। और हम लोग 14 साल से इंदौर वासियों को माल दे रहे हैं, आम दे रहे हैं।
5: ये रत्नागिरी के ये 800 रुपए बता रहे हैं,
6: रेट डिपेंड रहता है। ये बड़ी साइज है वो 1,500 रुपए में है, उससे मिडल साइज है वो 1,200 रुपए में, उससे छोटा साइज है वो 800 रुपए में। ऐसे अलग अलग वैरायटीज का आपको सामान है।
7: आमों का राजा, फलों का राजा आम, और आम का राजा आपस। बहुत अच्छा है, भैया लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। काफी हर साल आते हैं, वेट करते हैं मैंगो जत्रा का, कि मैंगो जत्रा कब आएगा और हम यहाँ से यस। फलों का राजा आम, आपूस आम रत्नागिरी की फेमस है।
0: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।
9: सुनहरे पल।
8: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नीलेश जोशी का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस प्यारे से गीत से। इस गीत को गाया है मुकेश ने।

0: आनंद बख्शी की शब्द रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुमधुर संगीत, मुकेश और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में।
1: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
2: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।

0: मोहम्मद रफ़ी और साथियों के युगल सर में अभी आपने सुना फिर वही रात फिल्म का ये मस्ती भरा गीत। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी और संगीत राहुल देव बर्मन का।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म गीत।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: श्रोताओ, अब हम आपको सुनवाए जा रहे हैं चित्तौर फिल्म का गीत, जिसे गाया है यशुदास ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: यशुदास को अभी आप सुन रहे हैं। फिल्म का नाम था चितचोर, गीत और संगीत रविंद्र जैन का था।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
5: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
4: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
5: अरे काहे का मजा।
4: क्यों, क्या हुआ?
5: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
4: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
5: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
4: ये हुई ना बात।

0: योगेश की शब्द रचना, बप्पी लहरी का सुमधुर संगीत, यशुदास और आशा भोसले को अभी आपने सुना फिल्म अपने पराये में। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल अब यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार प्रभात और उसके बाद इंग्लिश न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
3: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी

0: तो 3.77 रूपये और डीजल का मूल्य 95.35 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार

0: विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्रिपरिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहां कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
1: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालेंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sander World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, "Energy remains a key pillar of the relationship." He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
5: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supply to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE saw Foreign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shanti Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a decarbonizing world. Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
4: On the occasion of the Prime Minister's 8th visit to the Emirates, Indian Ambassador to the UAE, Deepak Mittal, said the visit of the Prime Minister is highly opportune.
6: UAE has emerged as a very close third largest trade partner for India. Our bilateral trade has crossed $100 billion after we have signed Comprehensive Economic Partnership Agreement in 2022. The visit of the Prime Minister is very opportune, happening at a time when the region is going through some unprecedented times. Prime Minister has been in touch with the UAE leadership. So this is a moment when it will help and enable to express our solidarity.
4: Meanwhile, UAE's Minister of State for International Cooperation, Reem Binte Ibrahim Al-Hashmi, has said the government is looking forward to the occasion with great excitement. She said that Mr. Modi is a key figure of friendship, of long-standing partnership and a true treasure to the leadership and to the people of the UAE. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi, the Prime Minister said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. Earlier in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
7: There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways.
4: 3 rupees per liter each amid spike in global energy prices. Petrol price has risen from 94.77 rupees to 97.77 rupees per litre, while diesel prices have increased from 87.67 rupees to 90.67 rupees per litre in New Delhi. Similarly, petrol prices in Mumbai will now cost 106.68 rupees per litre, while diesel price has been hiked to 93.14 rupees per litre. In Kolkata, petrol price has been increased to 108.74 rupees per litre, while the diesel price will now be 95.13 rupees per litre. In Chennai, petrol price has been raised to 103.77 rupees per litre, and diesel price has been increased to 95.35 rupees per litre. The government has imposed a limit of 100 kgs on gold imports under the Advance Authorization Scheme, which allows jewellery exporters to import raw or input materials at zero duty. In a public notice, the Director General of Foreign Trade, DGFT, said, advance authorization for import of gold shall be issued, subject to a maximum permissible quantity of 100 kilograms. A report.
8: The DGFT has mandated a physical inspection of manufacturing facilities for all first-time applicants to verify their operational status and capacity. It added that any subsequent advance authorization for the import of gold shall be considered for issuance only upon fulfillment of at least 50% of the export obligation. The DGFT further said that the concerned regional authority of the directorate will submit a monthly report to the DGFT containing details regarding the issuance of advance authorization. Earlier, there was no limit on gold imports under the scheme. The advance authorization scheme allows the duty-free import of inputs that are incorporated into an export product. With Ankit and Akshit, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
4: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at TI News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on Air app. Welcome back, you're listening to Morning News. The Enforcement Directorate or ED has arrested Kolkata Police Deputy Commissioner Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. The ED questioned him at the CGO complex in Kolkata yesterday morning after he appeared before the agency. Biswas was arrested after being interrogated for more than 10 and a half hours. He will be produced before a court today. ED has summoned Biswas, former officer in charge of Kalighat Police Station, several times for questioning as part of its money laundering investigation into an alleged criminal-linked syndicate run by Shona Pappu alias Bishwajit Poddar. However, he had repeatedly skipped the summons. A high-level meeting was held at the residence of the Union Education Minister Dharmendra Pradhan yesterday evening to review preparations for the upcoming National Eligibility Cum Entrance Test or NEET examination. Detailed discussions were held on various aspects of conducting the NEET exam smoothly and efficiently. In Kerala, the new UDF government will be sworn in on Monday. More from our correspondent.
9: V.D. Satheesan will be sworn in as the Chief Minister of Kerala on Monday. UDF sources in Thiruvananthapuram informed that the entire ministry will be sworn in along with the Chief Minister at the same time. Intensive discussions are continuing among the constituent parties of the UDF regarding the new ministers and their portfolios. It may be noted that the decision on the chief minister was taken only after 10 days of continuous discussions in Thiruvananthapuram and New Delhi following the election results on May 4th. The Congress and other constituents of the UDF are trying to complete the discussions on the new ministry by tomorrow. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
4: In a major step towards strengthening India's indigenous defense and aerospace capabilities, Defense Minister Rajnath Singh will lay the foundation for Advanced Medium Combat Aircraft Program facility at Puttaparthi in Sri Sathya Sai district of Andhra Pradesh along with Chief Minister N. Chandrababu Naidu today.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
2: आकाशवाणी इंदौर प्रस्तुत करता है रूपक साहसांक सम्राट विक्रमादित्य, नियोजक सिद्धनाथ सोलंकी, आलेख सतीश दवे, मुख्य स्वर तपन मुखर्जी और अंजुश्री मुखर्जी, संपादन एवं प्रस्तुतकर्ता संजीव मालवीय।

0: प्राचीन भारतीय राजवंशों या उन राजाओं की बात करें जो इतिहास में किंवदंतियों, मिथकों, लोक वार्ताओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है, तो वो एकमात्र राजा है उज्जैन का प्रख्यात जननायक विक्रमादित्य, जो अपने ही समय में प्रख्यात हो गया था और आज तक उसकी वही ख्याति कायम है।
1: विक्रमादित्य का नाम लेते ही इतिहासकारों, पुरातत्वविदों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं, क्योंकि ये पुरुष अपने जीवन काल में इतना जनप्रिय हो चुका था कि परवर्ती राजाओं ने उसके जीवन शैली की नकल करना आरंभ कर दिया था।
0: कुछ राजाओं ने तो विक्रम के नाम को उपाधि की तरह अपनाकर इतिहासविदों की चिंता को बढ़ा दिया, लेकिन इन सबसे भी आदि विक्रमादित्य का व्यक्तित्व कम नहीं हुआ, बल्कि उसकी प्रख्याति बढ़ती गई।
1: उज्जैनी का विक्रम संवत प्रवर्तक सम्राट विक्रमादित्य का जन्म 57 ईस्वी पूर्व हुआ था। यूं तो कई पुस्तकों में विक्रमादित्य का परिचय मिलता है, लेकिन 1607 की फारसी पुस्तक तारीख फरिश्त सबसे महत्वपूर्ण है, जो राजा के विरल व्यक्तित्व को दर्शाता है।
0: इसके अनुसार विक्रमादित्य जाति का पंवार था, अच्छे स्वभाव का था। उसके घर में मिट्टी के प्याले और टाट के अलावा कुछ नहीं था। उसने अपने समय में उज्जैन बसाया और महाकालेश्वर देवालय भी बनवाया। वो शिव भक्त भी था।
1: आज के युग में ऐसे किसी राजा की कल्पना भी असंभव है जिसके निवास में मिट्टी के प्याले और टाट के सिवाय कुछ ना हो।
0: विक्रमादित्य को लेकर सबसे पुराना संदर्भ पहली सदी के कवि गुणादेय की पुस्तक बृहत कथा से मिलता है। हालांकि ये मूल ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है, परवर्ती रूपांतरों में भी मूल संदर्भ वही है।
1: 1000 वर्ष पुराने संस्कृत रूपांतरों में बुद्ध स्वामी का बृहत कथा श्लोक संग्रह, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी में और सोमदेव के कथा सरित सागर में दी गई सह कथाओं में विक्रमादित्य की अनेक कथाएं दी गई हैं।
0: कथा सरित सागर के 18वें लंबक की पहली तरंग में उज्जैनी के विक्रमादित्य का वर्णन है, जिसके अनुसार उज्जैन में महेंद्रादित्य नामक राजा था और उनकी रानी का नाम सौम्या दर्शना था और इस राजा की कोई संतान नहीं थी। शिव की कृपा से उन्हें वीर पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम विक्रमादित्य रखा गया।

0: द भिल्ल भी बताया गया है और भर्तृहरि उनका भाई।
1: विदेशी आक्रमणों को वीरता से हराने वाला ये सम्राट अद्वितीय था। शकों को हराकर शकारी और साहसांक उपाधियां प्राप्त की थी।
0: चंद्रगुप्त द्वितीय जो चौथी शताब्दी में राजा था, उसने भी शकों को हराकर आदि विक्रमादित्य के कार्यों को दोहरा कर उसका विरुद्र यानी उसकी उपाधि ही अपना ली थी। वो स्वयं विक्रमादित्य नाम लिखवाने लगा और इसके बाद हर वो राजा जो खुद को महान समझने लगता, उसने सिंह विक्रम, चक्र विक्रम, अजित विक्रम आदि नामों से स्वयं को विभूषित किया।
1: वातापी और कल्याणी के चालुक्य ने तो विक्रमादित्य के नाम को पीढ़ियों तक जोड़े रखा। इस परंपरा का आखिरी राजा हेमू था, जिसने 16वीं शताब्दी में उपाधि अपने नाम के साथ लगवाई थी।
0: संवत प्रवर्तक महाराजा विक्रमादित्य एक प्रतापी सम्राट थे। उनके शौर्य की गाथाएं प्रसिद्ध हैं। शकों और हूणों को पराजित करने वाला सम्राट जो प्रकांड पंडित भी रहा था, उसका विद्या का अनुयायी होना स्वाभाविक था।
1: विक्रमादित्य के शासन काल में कलाओं और विद्या को पूर्ण विकसित होने का अवसर मिला।
0: विक्रमादित्य के दरबार में हर विषय के प्रकांड विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इस बारे में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृत एवं पुरातत्व अध्ययन शाला विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुष्मिता पांडे कहती हैं,
2: ये सबको पता है कि ज्योतिर्विदा भरण नामक ग्रंथ से विक्रमादित्य की राज्यसभा में 9 रत्न ज्ञात होते हैं, जैसे धन्वंतरी, शकुनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटखरपर, कालिदास, वराहमिहिर एवं वररुचि। आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी परंपरा से आयुर्वेद के प्रणेता माने जाते हैं। सपना भी संभवतः जैन आचार्य रहे होंगे। अमर सिंह के अमरकोश के बिना तो प्राचीन काल की समाज आर्थिक व्यवस्था जानना बहुत ही असंभव है। संस्कृत के उद्भट विद्वान पंडित क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय ने भाषा के आधार पर अभी पूर्णतः सिद्ध कर दिया था कि कालिदास गुप्त काल के नहीं हो सकते हैं। अब यदि हम मालवीय काग्नि मित्र को बहुत ध्यान से पढ़ें तो यही अनुभव होता है कि कालिदास संभवतः अग्निमित्र के काल के बाद के लगते हैं। यह बाद का काल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व या विक्रमादित्य का ही ठीक लगता है। वराहमिहिर जहाँ गंध युक्ति के विषय में केश रंजन की विधियाँ देते हैं, वहाँ इतने महत्वपूर्ण वस्तु मदयंती या मेहंदी का नाम नहीं लेते हैं। जबकि नवनीतकम जो कि कुषाण कालीन ग्रंथ माना गया है, इसके प्रयोग के विषय में बतलाता है। इस संदर्भ में वराहमिहिर पर भी पुनः शोध किया जा सकता है। अच्छा, हम यह कह सकते हैं कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व या विक्रमादित्य का काल भारतीय संस्कृति का एक गौरवपूर्ण युग था, जिसमें साहित्य, आयुर्वेद, समाज आर्थिक आदि सभी क्षेत्र में उन्नति थी, इसमें कोई संशय नहीं।
1: अभी तक पुरातत्वविद विक्रमादित्य के संदर्भ में प्रमाण नहीं मिलने का जिक्र करते थे, लेकिन नवीनतम शोधों में मंदसौर के निकट अमलेश्वर से डॉक्टर की बी वाकणकर को एक स्तंभ चौकी लेख मिला था, जिस पर ईसवी पूर्व की ब्राह्मी लिपि में विक्रमादित्य के द्वारा बनाए गए जलाशय के निर्माण के बारे में बताया गया है।
0: यही नहीं, विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित को गढ़काली का उज्जैन से एक लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें भी ब्राह्मी लिपि में विक्रम लिखा हुआ है।
1: अब कई मुद्राएं और सील के प्राप्त होने के बाद इस बात की शंका निर्मूल हो गई है कि विक्रमादित्य नाम का कोई राजा भी नहीं था। यही बात स्वयं पुरातत्व संग्रहालय विक्रम विश्वविद्यालय के प्रभारी डॉक्टर रमण सोलंकी भी कहते हैं।
3: प्राचीन काल में विक्रमादित्य का जो अस्तित्व था, जो वर्तमान में भी दिखाई देता है, किंतु कहानियों और किस्सों में और किंवदंतियों में ही दिखाई देता है। परंतु वर्तमान में इन कहानियों, किंवदंतियों और किस्सों के आधार पर पुरातात्विक प्रमाण प्रकाश में आए हैं। अश्विनी शोध संस्थान महतपुर में है, जिसकी मुद्राओं को खकेरा गया, उसमें जब मुद्राओं को पहचाना गया तो उसमें विक्रमादित्य की एक से अधिक ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई। उसके बाद एक स्वर्ण मुद्रा भी प्राप्त हुई, जिस पर स्पष्ट रूप से प्राचीन लिपि यानी कि ब्राह्मी लिपि, और ब्राह्मी लिपि यानी कि ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी की लिपि है, जिस पे लिखा हुआ है राजा विक्रमादित्य उज्जैनी, और ऐसी दुर्लभ मुद्रा प्रथम बार प्राप्त हुई है। और ताम्र मुद्राओं में विक्रमादित्य खड़ा हुआ है, हाथ में सूर्य दंड लिए हुए हैं, और उसपे विक्रम लिखा हुआ शब्द स्पष्ट रूप से प्रथम शताब्दी ईस्वी की लिपि में देखने को मिलता है। ऐसी मुद्राएं हमें यहां प्राप्त हुई। इसके साथ में मरण सिल्स प्राप्त हुई हैं, जिन पर उस पर अनेक शब्द, उसकी जो पर्वतेंद्र जैसी उपाधियां हैं, शकारी जैसी उपाधियां हैं, ये सब प्राचीन लिपि में लिखी हमें प्राप्त हो रही हैं। सिलों की कंडीशंस ये है कि एक से अधिक मात्रा में, यानी कि 50 से अधिक मात्रा

0: हमें मृण सिल्स प्राप्त हो रही हैं और ये सारी सिल्स क्षिप्रा नदी के तट क्षेत्र से प्राप्त हो रही हैं। अब तो यह हुआ कि स्थापत्य कला में भी विक्रमादित्य दिखाई देने लगे। अभी कुछ दिनों से जो सर्वेक्षण किया है उन सर्वेक्षणों में जो उज्जैन परिक्षेत्र में प्राचीन प्रतिमाएं रखी हुई हैं जिन्हें यह कहा जाता था कि शुंग काल की है, उन पर जब देखा गया तो उस पर प्राचीन लिपि में ब्राह्म लिपि में भी हमें लेख प्राप्त होते हैं, जैसे कि सांदीपनि आश्रम में खड़ा नंदी है उस पर विक्रम शब्द देखने को मिलता है।
1: ज्योतिर्विदाभरण नामक एक ज्योतिष की पुस्तक है। माना जाता है कि ये प्राचीन ग्रंथ कली संवत 3068 यानी विक्रम संवत 33 में रचा गया था।
2: कुछ विद्वान इसके रचना काल को विवादग्रस्त मानते हैं। इसके अनुसार शकों पर विजय प्राप्त करके विक्रमादित्य ने वैदिक विधान और दान की परंपरा स्थापित की थी।
1: कम्बोज, गौड़, आंध्र, मलय, सौराष्ट्र, गुर्जर में उसकी यशोगाथा फैली थी। उसके अधीन 108 परमवीर मंडलेश थे। उनकी सेना में 3 करोड़ पैदल, 10 करोड़ अश्व, 24,300 हाथी और 4 लाख नौकाएं थी। ये विशाल सेना शक्ति का सदुपयोग करती थी, शकों, हूणों और तुर्कों की तरह बर्बरता का नहीं।
3: उज्जैनी के वीर सैनिकों, कल शाम तक शक सेना क्षिप्रा नदी तक आ पहुंचेगी और जहां तक मेरा विचार है वे लोग रात को ही नदी पार करने की कोशिश करेंगे। अभी शिप्रा पर नाव का पुल है, शक सेना के पहुंचने से पहले ही हमारे सैनिक नाव को खोलकर बहाव की ओर नीचे बहा ले जाए और 5 कोस की दूरी पर उन्हीं नावों से नया पुल तैयार कर ले। 10,000 घुड़सवार पुल बनने से पहले ही वहां नदी पार करने के लिए तैयार रहें।
4: विजय हमारी होगी। जय महाकाल।
5: महाकाल महाराज की जय।
2: विक्रमादित्य का युग सिर्फ प्रायोजित इतिहासकारों का स्वर्ण युग नहीं था, बल्कि जनता के मन में समाया हुआ सच्चा स्वर्ण युग था।
1: इसी कारण उसकी कथाएं बिना किसी रोक टोक के हर वर्ग में फैली हुई है। विक्रमादित्य शोधपीठ संस्थान उज्जैन के निदेशक डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित विक्रमादित्य के सैन्य संचालन और शूरवीरता के बारे में बतलाते हैं।
6: विक्रमादित्य अत्यंत ही वीर, साहसी और सैन्य कुशलता से संपन्न था। यही कारण है कि पूरे देश में उनके वीरता की छत्रछाया में कई राजा आ गए थे। ग्रंथ बताते हैं उनकी जो सेना है वो उज्जैन के आसपास के 12 योजन तक क्षेत्र में फैली हुई थी। सैन्य छावनी 12 योजन मतलब होता है 100 किलोमीटर, इतना लंबा चौड़ा उसका सैन्य क्षेत्र था। ये ग्रंथ बतलाए जाते हैं, उसमें हाथी, घोड़े, पैदल, रथ और सब तरह के हथियार हुआ करते थे और उन सब के संचालन का प्रमुख सेनापति स्वयं था और सह सेनापति कई थे। उनकी वीरता की धाक सभी जानते हैं कि वो शकारी राजा था। विदेशी शकों को पराजित करके उसने भारत से बाहर खदेड़ा था।
1: विक्रमादित्य की वीरता के कारण उसे साहसांग की उपाधि मिली थी। ये सिद्ध होता है राजा भोज के पिता सिंधुराज की प्रशस्ति में पद्मगुप्त परिमल रचित महाकाव्य नवसाहसांग चरित से। यह लेखकीय ईमानदारियों का एक परिचायक है। इसमें सिंधुराज को नवसाहसांग कहा गया है। यदि पूर्व में साहसांग उपाधि नहीं होती तो नवसाहसांग लिखने की जरूरत नहीं होती।
2: राजा भोज विक्रमादित्य के पराक्रम से प्रभावित थे। उन्होंने विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठना चाहा। सिंहासन की 32 पुतलियों ने अपने सम्राट की न्यायप्रियता, दानशीलता, वीरता आदि के उदाहरण देकर राजा भोज से पूछा था, क्या वे अपने आप को उस राजा के बराबर मानते हैं?
1: ना का उत्तर पाने के बाद वे पुतलियां सिंहासन लेकर स्वर्ग उड़ जाती हैं, जहां से वो सिंहासन आया था। श्री दशपुर प्राच्य शोध संस्थान मंदसौर के निदेशक श्री कैलाश पांडे इस विषय में अपने विचार रखते हुए कहते हैं,
7: एक बार इंद्र की सभा में जो विवाद हुआ उस विवाद को सुलझाने के लिए पृथ्वी लोक से विक्रमादित्य स्वर्ग को गए थे और लौटते समय उन्हें यह सिंहासन भेंट किया गया। इस सिंहासन पर जो 32 पुतलियां थी वे वास्तव में पार्वती जी की सहेलियां थी, लेकिन किसी कारणवश पार्वती जी ने उन्हें श्रापित कर दिया था कि तुम जाकर के इंद्र के सिंहासन में जाकर जुड़ो। ये सिंहासन विक्रमादित्य को जब प्राप्त हुआ तो उन्हें न्याय के प्रतिपादन हेतु इस सिंहासन को प्रदान किया गया था। विक्रमादित्य के बाद जब इस सिंहासन पर बैठने वाला कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं रहा तब इसे गाड़ दिया गया। बाद में राजा भोज के काल में

जब यह सिंहासन किसी ब्राह्मण को एक टीले के अंदर गड़ा हुआ प्राप्त हुआ और जब वह उस ब्राह्मण उस सिंहासन पर बैठता था तो उसके विचार एकदम उदार हो जाते थे। उसने यह बात जाकर राजा भोज से कही और राजा भोज ने जब उस सिंहासन को खुदवाया तो उस पर उत्कीर्ण 32 पुतलियों ने एक के बाद एक प्रश्न पूछे और भोज से कहा कि अगर तुम्हें इतनी योग्यता हो तो तुम इस सिंहासन पर बैठो। और वास्तव में भोज अपने अंदर इतनी योग्यता प्राप्त नहीं कर पाया और अंत में वो सिंहासन पे पुतलियां उड़ाकर स्वर्ग को वापस लेती गई। सिंहासन 32 या सिंहासन त्रिंशिका मूलतः सिद्धसेन के द्वारा लिखित गई थी, अब वह अनुपलब्ध है। इसी पुस्तक को जैन कवि राजवल्लभ ने पढ़ा था और उसके आधार पर पुनः उन्होंने सिंहासन 32 नामक ग्रंथ की रचना की। 18वीं शताब्दी में गुजरात के प्रख्यात कवि सामल भट्ट ने इस ग्रंथ को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत

0: उज्जैनी के दो विक्रमादित्यों के विवाद का सबसे अच्छा समाधान भविष्य पुराण के एक श्लोक से मालूम पड़ता है।
1: इस श्लोक में उस चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रशंसा की गई है जिसे चार शती का राजा माना गया है तथा विक्रमादित्य की उपाधि वाला सम्राट बताया गया है।
0: अधिकतर विद्वान इसे ही विक्रमादित्य सिद्ध करने का प्रयास करते रहे हैं। इस श्लोक की एक पंक्ति कहती है,
1: विक्रमादित्य इत्येष भुवनेषु रथां गतः, अर्थात विक्रमादित्य के समान उसकी सेवा पंडित करते थे।
0: यदि पूर्व के विक्रमादित्य का परिचय नहीं होता तो चंद्रगुप्त ये उपाधि ग्रहण कैसे करता, और उस समय भी आदि विक्रमादित्य की शौर्य गाथा इतनी प्रसिद्धि पा चुकी थी कि शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को ये नाम रखना उचित लगा होगा।
1: सम्राट विक्रमादित्य के एक भाई भर्तृहरि थे जिन्होंने रानी के शंकास्पद चरित्र के कारण वैराग्य ग्रहण कर लिया था।
0: दोनों भाइयों में निश्चित ही उदारता की पराकाष्ठा रही होगी, इसलिए एक वैरागी हो गया, दूसरा सम्राट होकर भी वीतरागी ही रहा। विक्रमादित्य के न्याय प्रियता और दान के चर्चे जग जाहिर थे। ज्योतिषाचार्य पंडित श्याम नारायण व्यास बताते हैं,
2: न्याय प्रियता तो उनके वहीं से देखने में आती है कि जब इनके पिता ने इन्हें राज्याधिकार देने का चाहा तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई मैं मध्य लड़का हूँ, बड़े भाई को जो है सर्वप्रथम अधिकार है कि वह राजा बने, और ऐसा कहकर के उन्होंने राज्याधिकार छोड़ दिया। साथ ही न्याय के विषय में इतने प्रिय हैं कि प्रजा जो है इनसे इतनी संतुष्ट थी कि हमेशा इनको राजाधिराज और इनके ही राज्य में रहना चाहती थी। टीले वाली घटना से सभी लोग परिचित हैं। दूसरा, इनकी न्याय प्रियता के लिए विचार करते हैं तो उसमें वेताल पच्चीसी नाम की एक जो है बड़ी पुस्तक है जिसमें वेताल के माध्यम से कथाकारों ने 25 कहानियां इनके न्याय प्रियता के विषय में बताई है। उन सबों में राजा किस प्रकार से न्याय करता है, उसका न्याय कितना जो है जटिल होते हुए भी कितने सहज रूप से उसको निपटा देता है, ये सब बातें उसमें स्पष्ट है।
3: सुन बेताल, जिसने हड्डियां रखी उसकी वो बेटी हुई, जीवित करने वाला धर्म पिता हुआ, और राख पर झोपड़ी बनाकर रहने वाले की वो स्त्री हुई।
4: वाह, कितना सुंदर न्याय किया है विक्रम तूने, पर तू शर्त भूल गया। मैंने कहा था ना कि तू बोला और मैं चला।
3: अरे भाग कर जाएगा कहाँ, मैं तुझे अभी पकड़ता हूँ। अरे यहाँ कैसे हाथ नहीं आएगा मेरे।
1: आदि विक्रमादित्य के 3 सदी पहले एक चक्रवर्ती सम्राट और था, सम्राट अशोक, और 4 सदी बाद एक सम्राट और हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने उसका नाम तक ग्रहण कर लिया था। फिर क्या कारण था कि आदि विक्रमादित्य के यश ने काल की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए दोनों राजाओं को पीछे छोड़ दिया? उसका एक महत्वपूर्ण कारण है विक्रमादित्य की कला प्रियता।
0: साहित्य चाहे राज महलों में रचा गया होगा, लेकिन वो गलियों से होता हुआ जन सामान्य के बीच पहुंच गया और जनमानस में फैल गया विशाल सागर की तरह।
1: कालिदास की रचनाएं यदि राज प्रासादों में अभिनीत होती थी तो भास व सौमिल्य जैसे नाटककार

0: जनता के बीच थे। वो समाज के विभिन्न वर्गों का खुलेपन से परिचय देता है।
1: कुछ विद्वान शूद्रक और विक्रमादित्य को एक मानने का भ्रम भी करने लगे थे, लेकिन शोध के बाद ये संशय समाप्त हो गया।
0: विक्रमादित्य के समय राजधानी उज्जैनी थी, व्यापारियों एवं नगर की रक्षा का भार राज्य का ही था।
1: राजा स्वयं भेष बदलकर रात में नगर भ्रमण करता था। अपराधी को कठोर दंड और चोरों को प्राण दंड दिया जाता था।
2: हमसे भूल हुई है राजन, हमें क्षमा करें, क्षमा करें, हम पर दया करें राजन।
3: जो दया देता है उसे दया मिलती है। तुम निर्दयी हो, तुम्हें छोड़ा नहीं जा सकता।
2: क्षमा करें राजन, दया करें स्वामी, हमें मुक्त कर दे।
3: नहीं, तुम केवल युद्ध बंदी नहीं हो, तुम दुराचारी, अत्याचारी और क्रूर हो। तुमने बच्चों बूढ़ों के साथ निर्दयता की है, तुमने उन असहाय लोगों को निर्दयता से मारा है, स्त्रियों के साथ तुमने दुराचार किया है। तुम्हें छोड़कर देश के प्रति मैं न्याय नहीं कर सकूंगा। उतने पर फिर तुम नए सिरे से वही क्रूर खरोस बन जाओगे, वही शोड़ाश बन जाओगे। सांप छूट कर भी डसना नहीं छोड़ता। तुम दया के पात्र नहीं हो, देश तुम्हें दंडित देखना चाहता है। वो भी तुरंत। तुम्हारे दंड में विलंब भी देश के साथ न्याय नहीं होगा। सेनापति, इन सभी क्रूर विदेशी युद्ध बंदियों को हाथी के पैरों के तले कुचल दिया जाए, ताकि फिर कोई विदेशी इस भारत भूमि की ओर देखने का साहस न कर सके।
0: राज्य शासन संचालन के लिए आय का छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था,
1: इसीलिए राजा को षष्ठांश वृत्ति कहा जाता था। राज विरोधियों, दंडित या निर्वासित की संपदा राजसात कर ली जाती थी।
0: प्रबंध कोश के अनुसार विक्रमादित्य के आदर्श राम थे और उनके आदर्शों पर ही राज्य प्रबंध किया जाता था।
1: उज्जैनी का व्यापार विश्व के कई देशों से था। विक्रमादित्य के समय ये व्यापार ज्यादा विकसित हुआ। विक्रमादित्य के समय व्यापार व्यवसाय पर कावेरी शोध संस्थान उज्जैन के निदेशक डॉक्टर श्याम सुंदर निगम कहते हैं,
4: परंपरागत व्यापार मार्ग जो था वो उज्जैन को मिलाते हुए चार दिशाओं में जाता था। एक तरफ वो दक्षिण में पैठन जाता था, जिसको प्रतिष्ठानपुर भी कहते हैं, वहाँ से विदेश व्यापार होता था। ये विदेशी व्यापार एक दूसरे रास्ते होता हुआ भृगुकच्छ तक जाता था, जो संसार का सबसे पुराना बंदरगाह था। भृगुकच्छ से एक इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर था, उज्जैन का बहुत सा सामान विदेशों को जाता था। यहाँ से मथुरा भी एक मार्ग जाता था, वो मार्ग अधिकतर सैनिक उपयोग में आता था और उससे विदेशी व्यापार होता था, वो भी संपन्न होता था। एक दूसरा रास्ता यहाँ से विदिशा होते हुए कौशाम्बी जाता था और वहाँ से पटना, कन्नौज आदि क्षेत्रों को जो मार्ग जाता था उससे जुड़ जाता था। उज्जैन और मालवा धनधान्य संपन्न रहा था, हमेशा सरप्लस प्रोडक्ट यहाँ पैदा होते थे और वे प्रोडक्ट्स जो हैं वो कई तरह के कुटीर उद्योग भी होते थे, बड़े उद्योग भी बन रहे थे। इस कारण से कच्चा माल पक्का माल में परिवर्तित होता था और देश और विदेश के व्यापार के लिए वो अच्छा सुलभ साधन था।
0: मेघदूत में जिस तरह की उज्जैनी का वर्णन है वो आज के महानगरों की तरह प्रतीत होता है।
1: विथिकाओं में जलते दीपक आकाश में बिजलियों की तरह चमकते लगते हैं और यहाँ की ललनाओं का सौंदर्य अप्रतिम है।
0: महाकालेश्वर की आरती में नगाड़ों के शब्द मानो बादल की गरज हो, इसलिए कालिदास का यक्ष मेघ से याचना करता है कि चाहे तुम्हें थोड़ा घूम कर जाना पड़े, परंतु स्वर्ग के टुकड़े उज्जैन से होकर अवश्य जाओ।
1: उज्जैनी की इस सौंदर्य की कल्पना वही कवि कर सकता था जिसे ऐसी दृष्टि प्राप्त हो।
0: विक्रमादित्य के दरबार में ऐसे प्रकांड विद्वान थे, स्वयं सम्राट भी एक अच्छे कवि हृदय और विद्वान थे, इसी कारण साहित्य ने उन्हें कालातीत बना दिया। मध्यकाल में विक्रमादित्य के साम्राज्य के वैभव पर प्रकाश डालते हुए नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ के निदेशक डॉक्टर मनोहर सिंह राणावत कहते हैं,
5: राज करते हुए, धन करते हुए प्रादेशिक विभाग, राज्य कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, विदेश नीति, सामाजिक संगठन, समाज की आचार व्यवस्था, स्त्री की स्थिति, धार्मिक परिस्थितियां और उनमें संतुलन, आर्थिक दशा, व्यापार एवं उद्योग, कृषि विनिमय आदि, ऐसा कोई पक्ष नहीं।

0: जिसकी समुचित व्यवस्था नहीं की गई हो। यही नहीं, स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत, नाट्य, काव्य, भाषा, लिपि आदि का भी उस समय समुचित विकास हुआ था। विक्रम काल और विक्रम व्यक्तित्व की छाप आज भी भारतीय हृदयों पर स्पष्ट दिखाई देती है।
1: आज भी उज्जैन में गढ़कालिका और हरसिद्धि के दर्शन के समय यही कहा जाता है कि ये विक्रमादित्य की आराध्या देवी थी।
2: विक्रमादित्य स्वयं भी कवि हृदय थे। श्रीधर दास द्वारा रचित सदुक्ति कर्णमृतम में सहसांग विक्रमादित्य के नाम से प्रख्यात पद्य प्राप्त होता है, जिसमें चकवा चकवी को लेकर बहुत ही संवेदना वाले भाव प्रकट किए गए हैं।
1: ऐसे ही सुभाषितावली में विक्रमादित्य के नाम से भी रचना प्राप्त होती है। कहा यह भी जाता है कि उसने गंधमादन नामक काव्य की रचना की थी। राजा विक्रमादित्य ने सनातन धर्म के प्रचार के लिए प्रचारकों को अरब आदि देशों में भेजा था।
2: इसका एक संदर्भ हजरत मोहम्मद से 165 वर्ष पहले हुए जारहम बिन तोई कवि ने स्वर्णाक्षरों से लिखा था कि वे धन्य हैं जो राजा विक्रम के राज्यकाल में उत्पन्न हुए, जो बड़ा दानी, धर्मात्मा और प्रजापालक था। ऐसे समय हमारा अरब भोग विलास में लिप्त था।
1: ये संदर्भ एक ऐसे राजा की प्रशंसा कर रहे हैं जिसे हम नकारना चाहते हैं, यहाँ तक कि उसके द्वारा प्रवर्त संवत को नकारते रहे हैं।
2: लेकिन फिर भी जनता के दिल पर राज करने वाले असली स्वर्ण युग के सम्राट विक्रमादित्य की ख्याति कभी भुलाई नहीं जा सकती। उनके शासन काल से ही उज्जैनी काल गणना का केंद्र बना और विक्रम संवत का आरंभ हुआ। साहित्यकार श्री राम परिहार बताते हैं,
3: राजा विक्रमादित्य ने संवत्सर अपने नाम से चलाया, जिसको हम विक्रमाब्द या विक्रम संवत कहते हैं। ऐसी मान्यता है और ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं कि विक्रमादित्य जब गद्दी पर बैठे तब से उन्होंने अपने शासन काल की शुरुआत दिनों से काल गणना का एक नया आयाम भारतीय कालबोध में जोड़ दिया। यह भी मान्यता है कि चैत्र वर्ष प्रतिपदा के दिन ही उनका राज्याभिषेक हुआ। अपने नाम के साथ उन्होंने काल की गणना और भारतीय समय को एक नया संबोधन विक्रम संवत के नाम से दिया।
4: दासता से मुक्ति के उपलक्ष में, स्वतंत्रता के उपलक्ष में, मालव गणराज्य की स्थापना के अवसर पर काल गणना का नया संवत आरंभ किया जाता है। कृत संवत है ये, मालव संवत,
5: और यही हमारे अधिनायक के नाम से विक्रम संवत भी कहलाता रहे।
4: आज मुक्ति दिवस है, समस्त बंदी मुक्त कर दिए जाए और हमारी गणशक्ति को उद्घोषित करती नई मुद्राएं प्रचलित की जाए, उन पर मालवा नाम जया, मालव गणस्य जया लिखा जाए। प्रत्येक नगर में सरस्वती भवन बनाया जाए जो कला और संस्कृति के प्रमुख केंद्र हो। अवंती जनपद का नाम अब मालव जनपद हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे रूपक साहसांक सम्राट विक्रमादित्य, नियोजक सिद्धनाथ सोलंकी, आलेख सतीश दवे, मुख्य स्वर तपन मुखर्जी और अंजुश्री मुखर्जी का था, संपादन और प्रस्तुतकर्ता थे संजीव मालवीय।

0: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।
1: प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुमित्रा कोचले के गाए मालवी लोकगीतों को।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं लोकगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुमित्रा कोचले के गाए मालवीय लोकगीतों को। लीजिए सुनिए इन्हीं के स्वर में अगली लोक रचना।

श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुमित्रा कोचले गाए मालवी लोकगीतों को।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुना रहे थे सुमित्रा कचोले के गाए मालवी लोकगीतों को। अब यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रोशन भारती गाई गजलें।

तुमको चाहा तो खता क्या है बता दो मुझको। रोशन भारती की यह गज़ल अभी आपने सुनी। श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रोशन भारती की गाई गज़लें।

0: याद से दिल बहलाओ ना, आ जाओ अब आ जाओ ना। हसरत जयपुरी की रचना अभी आपने सुनी, जिसे गाया था रोशन भारती ने। श्रोताओं, सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे रोशन भारती की गाई गज़लें। अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुना रहे हैं

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुरेंद्र शंकर अवस्थी का ख्याल गायन, राग था बिलास खानी तोड़ी। अभी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगी।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बालाघाट जिले में राष्ट्रीय जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण का कार्य 1 मई से प्रारंभ किया गया, जो 30 मई तक चलेगा। मकान सूचीकरण के लिए जिले में 2985 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें से 2180 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में मकान सूचीकरण पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रकार जिले में मकान का सूचीकरण 73% तक पूरा हो चुका है। जिला जनगणना अधिकारी एवं अपर कलेक्टर डीपी वर्मन ने बताया कि नगरपालिका मलाजखंड द्वारा 14 मई को ही मकान सूचीकरण का 100% कार्य पूर्ण कर लिया गया और बालाघाट जिले में 14 मई तक 73% मकान सूचीकरण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 13 मई को नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों के खातों में 1500-1500 रुपए की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खातों में 36वीं किस्त के रूप में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई, जिनमें बालाघाट जिले की 3,44,240 लाडली बहनों के खातों में 50,11,37,100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बालाघाट जिले में मलेरिया उन्मूलन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस की थीम मलेरिया समाप्ति के लिए संकल्पित अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा रही। इसी क्रम में जिला मुख्यालय बालाघाट में शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मलेरिया की रोकथाम और उन्मूलन के लिए सामूहिक संकल्प लिया। महिला एवं बाल विकास शिक्षा तथा पंचायत विभाग के सहयोग से जिले भर में जन जागरूकता अभियान संचालित किया गया। इस दौरान बैनर, पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से मलेरिया से बचाव, रोकथाम और समय पर उपचार संबंधी जानकारियां आमजनों तक पहुंचाई गईं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में संचालित जैव विविधता संरक्षण के अगले अध्याय के रूप में पिछले दिनों जंगली भैंसे की पुनर्स्थापना योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कान्हा टाइगर रिजर्व में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम से लाए जंगली भैंसों की पुनर्स्थापना के लिए उन्हें बालाघाट जिले के सूपखार क्षेत्र में सॉफ्ट रिलीज किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश के लिए यह दिन ऐतिहासिक है। लगभग 100 वर्ष के बाद प्रदेश की धरती पर जंगली भैंस का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्य हो रहा है। बालाघाट जिले के जंगल में छोड़े गए जंगली भैंसों में से 3 मादा और 1 नर शामिल है। जिले में टाइप 1 डायबिटीज T1D से प्रभावित बच्चों और मरीजों की बेहतर देखभाल के उद्देश्य से जिला चिकित्सालय बालाघाट में एक सराहनीय पहल शुरू की गई है। जिला अस्पताल प्रशासन के द्वारा मुस्कान OPD में प्रत्येक शुक्रवार को T1D फॉलो अप क्लिनिक संचालित किया जा रहा है, जहां मरीजों को अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क उपचार, विशेषज्ञ परामर्श, मधुमेह शिक्षा तथा इंसुलिन उपलब्ध कराई जा रही है। ये क्लिनिक प्रत्येक शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होता है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने 8 मई को क्लिनिक का निरीक्षण कर वहां उपचार प्राप्त कर रहे बच्चों एवं चिकित्सकों से चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने टाइप 1 डायबिटीज से प्रभावित बच्चों को निशुल्क ग्लूकोमीटर एवं इंसुलिन का वितरण भी किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 9 मई 2026 को जिला न्यायालय बालाघाट सहित जिले के कुल 24 न्यायिक खंडपीठों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में कुल 1085 प्रकरण विचारार्थ रखे गए, जिनमें से 1009 प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। प्री लिटिगेशन के 835 प्रकरणों में से 780 प्रकरणों का निराकरण कर 1,60,91,443 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। वहीं न्यायालयों में लंबित 250 प्रकरणों में 229 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिससे 1,57,47,930 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। इस प्रकार कुल 3,18,39,373 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। खेल और युवा कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में संचालित आरोह 2026 महाअभियान के अंतर्गत जिले में 1 मई से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बालाघाट के मुल्ला स्टेडियम मैदान, कराटे इंडोर हॉल, म्यूनिसिपल ग्राउंड, शहीद चंद्रशेखर आजाद हॉकी फीडर सेंटर सहित जिला एवं विकासखंड मुख्यालयों पर नए स्वरूप में खेल शिविर संचालित किए जा रहे हैं। इस शिविर के दौरान खेल प्रशिक्षण के साथ जुम्बा एक्सरसाइज, योगाभ्यास, आत्मरक्षा प्रशिक्षण तथा नेतृत्व क्षमता विकसित करने जैसी गतिविधियां भी कराई जा रही हैं। इसके अलावा FM रेडियो आकाशवाणी बालाघाट के माध्यम से भी खेल शिविर की गतिविधियों का प्रसारण किया जा रहा है। बालाघाट जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे।

0: यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नीलेश जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, हम आपको हमारे फोन नंबर्स बता दें। हमारे फोन नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731।
1: हेलो,
0: चलिए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो हेलो।
2: हाँ नमस्कार सर।
0: नमस्कार, MH हॉटलाइन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं।
2: मैं ग्राम बालोदा लक्का जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ सर।
0: जी कन्हैयालाल जी, बहुत बहुत स्वागत। बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: फिल्म क्रोधी का सुना दीजिए, वो वाला मैं गा के बताऊँ क्या?
0: जरूर जरूर, स्वागत सर।

0: हंसी टूट गई तो चादर भी छाऊंगा, चादर का जाल फरियादर जी बुलाऊंगा, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। ये
1: क्या बात है, क्या बात है, बड़ा सुंदर आपने गाया। ये आनंद बख्शी की शब्द रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुमधुर संगीत, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के युगल स्वर। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत। मैं नीलेश जोशी बात कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया
1: जी, धन्यवाद जी, है ना।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो
3: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: सबसे अलग और सबसे न्यारे हो आप।
2: क्या बात है,
3: तारीफ कभी खत्म नहीं होती है। कितने प्यारे हो आप। आज पता चला कि कुछ लोग हमसे क्यों जलते हैं, क्योंकि दोस्त तो आखिर हमारे हो आप।
2: क्या बात है, क्या बात है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। चलिए नाम बताएं अपना, वैसे मैं पहचान गया, इंदौर पालदाना का इंदौर से।
3: जी, मोहम्मद रफी मंसूरी
2: जी, स्वागत। बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज।
3: फिल्म का नाम है खुदा कसम
2: जी।
3: और खुदा गाने के बोले ये आपने क्या कह दिया।
2: जी जरूर, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, है ना। आपकी फरमाइश हमेशा कुछ अलग रहती है, नियमित श्रोता हैं आप, है ना। मन भवन हो या विविध भारती का चॉइस टाइम कार्यक्रम, आपके नियमित पत्र हमें मिलते हैं। कैसा लगता है आपको,
3: इस तरह से लाना चाहिए जो बहुत दिनों से बचते नहीं हो या कम सुनाई देते हो।
2: जी जरूर, वाकई है ना। तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का गीत। मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल सर ने। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोनिन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। चलिए बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो हेलो
4: हेलो,
3: नमस्कार।
4: नमस्ते
3: नमस्ते, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं।
4: जी, मैं ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
3: जी प्रेम सिंह सिसोदिया जी, कार्यक्रम में स्वागत है। नियमित श्रोता हैं आप हमारे।
4: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। गर्मी काफी है ज्यादा हमारे यहाँ पे।
3: गर्मी पूरे भारत में ही काफी ज्यादा है, है ना? और हम सब गर्मी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन इस गर्मी में सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी
4: सावधानी रखना,
3: तापमान अधिकतम चल रहा है। जी
4: जी बिल्कुल, सावधानी रखना जरूरी है। घर से बाहर नहीं निकले, जरूरी काम हो तो पानी साथ में ले जाए, उसके साथ में कैप पहने और मतलब चश्मा लगाए, हेलमेट लगा कर कहीं गाड़ी पे जाए।
3: जी।
4: और मतलब ऐसे हो कि शाम के समय निकले या थोड़ा सुबह जल्दी निकल जाए।
3: जी, दोपहर के समय को अवॉइड करें, है ना? क्योंकि हमारी सुरक्षा ही हमारे हाथ में है, हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है, और जानबूझकर बीमार न पड़े सावधानी रखें। चलिए, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
4: जी सर, फिल्म का नाम है सेहरा और गाने के बोले पंख होते तो उड़ा तेरे।
3: क्या बात है। कोई खास वजह इस गीत को सुनने की?
4: जी बिल्कुल सर, खास वजह ये है कि जिस समय पर ये गाना पहले आया,
3: जी
4: मतलब इंडस्ट्री में, तो उस समय पर मतलब साधन कम थे, संसाधन कम थे, लोगों को आने जाने में थोड़ी असुविधा होती थी। तो इस समय पर ये गाना काफी लोकप्रिय हुआ था, और मतलब इसमें जो अभिनेत्री ने डांस किया था ना, वो भी काफी मतलब खूबसूरती से उन्होंने डांस किया था, तो उस समय पे से लगा कि अब तक ये गाना काफी लोकप्रिय हो रहा है।
3: सही बात है। 1963 में बनी है फिल्म है सेहरा। जी बताएं।
4: जी, इस गाने को जब भी सुना जाए ना, काफी अच्छा लगता है और मतलब पुरानी यादें ताजा हो जाती है।
3: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अपनी यादों को ताजा कीजिए। हसस जयपुरी की गीत रचना है ना, हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सेहरा फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। कॉल करने के लिए बहुत बहुत

0: श्रोताओ, सेहरा फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नीलेश जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना।
1: धर्मपुरी जिलाधार से शेख फहीम मोहम्मद।
0: जी जी जी, कैसे हैं सर?
1: हेलो,
0: कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे सर?
0: बस एकदम बढ़िया। बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: संजय खान और नूतन अभिनीत फिल्म है महाराजा, इसका एक गीत है लता जी के आज में, तुमसे बिछड़ के चैन का हम पाएंगे।
0: जी जी जी, लता मंगेशकर ने गाया है इस गीत को।
1: जी
0: हाँ हाँ, जरूर हम आपकी पसंद जरूर पूरी करेंगे। और बताएं, पिछले कॉल में गर्मी के विषय में बात हुई थी, आज
1: जी सर
0: बात करते हैं इस फिल्म के विषय में।
1: जी सर,
0: ये गीत क्यों पसंद किया आपने?
1: सर बहुत अच्छा गीत और शुरू से ही पसंद है, रेयर सॉन्ग हमें।
0: जी, आपकी पसंद।
1: अभी तो जनगणना से फ्री हुआ सर।
0: जी,
1: दो गांव दिए थे सुपरविजन के लिए और 7 प्रकरण थे मेरे हाथ के नीचे।
0: जी जी जी,
1: तो काम पूर्ण हो चुका हमारे इधर,
0: काम का
1: कल नक्शे जमा करना है।
0: जरूर।
1: तो ये प्रकरण उनके ब्लॉकों के नक्शे बना देंगे, फिर मुझे एग्जैक्ट नक्शा बनाना पूरे ग्राम का।
0: जी जी जी,
1: तो फिर वो 30 मई को जमा करना।
0: चलिए, तो अपने कार्य का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं, उसे एंजॉय करें और सुनिए।
1: जल्दी काम भी कर ले और अभी छुट्टी का आनंद भी मिल जाएगा, 15 दिन की छुट्टी बची अब।
0: जी जी जी,
1: फिर 1 जून से स्कूल शुरू हो जाएगी।
0: हाँ हाँ, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओ, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। इस कार्यक्रम में आप हमें कॉल कर अपने पसंद का गीत सुन सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो कॉल कीजिए। चलिए बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो हेलो।
4: हाँ भैया नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
3: वेरी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम MH हॉटलाइन। बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
4: परिचय बता देते हैं
3: जी। पहले परिचय बता दीजिए।
4: योगे

0: जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी, जांगड़े साहब,
0: और जी
1: बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जी।
0: धन्यवाद।
1: बताए, पसंद है आपने?
0: आज अपने
1: हेलो
0: टाइटल सॉन्ग
1: जी, कभी खुशी कभी गम फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं आप, है ना? बड़ी ही पारिवारिक फिल्म, रिश्तों की महत्ता को समझाने वाली बताने वाली ये फिल्म है जिसका गीत आपने पसंद किया है ना?
0: जी भैया, उस दौर की फिल्में काफी मतलब मार्मिक रहती थी भैया, और हमेशा एक जीवन से जुड़ाव, परिवार से जुड़ाव,
1: जी
0: इन
1: जी
0: सब चीजों को देखते थे, समझते थे।
1: सही बात है साहब, रिश्तों को कैसे निभाया जाए ये संदेश देती थी, है ना? संयुक्त
0: जी
1: परिवार का संदेश देने वाली ये फिल्म, समीर की गीत
0: जी
1: रचना है साहब, जतिन ललित का संगीत,
0: जी
1: लता मंगेशकर के स्वर में हम आपको सुनाए जा रहे हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।

0: कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग अभी आपने सुना, जिसे गाया था लता मंगेशकर और साथियों ने। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, नाम बताएं अपना।
1: दुबे के बगीचे से महेश राय कुमार
0: जी। महेश राय कुमार जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया, आप सुनाओ सर।
0: मैं बढ़िया हूँ एकदम, है ना, आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं
1: सर? वो संगम फिल्म का गाना है, ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम,
0: दो जिस्म मगर
1: एक जान है हम।
0: जी जी जी, बड़ी अच्छी फिल्म है, पुराने समय की है ना, और आपकी पसंद ज्यादातर पुराने गीतों पर ही रहती है।
1: जी जी सर,
0: है ना
1: जी। अभी भावेश शाहरुख का आपके उधर कार्यक्रम भी है सर?
0: जरूर है ना, कार्यक्रम होने जा रहा है, विधिवत आपको आमंत्रण मिलेगा, लेकिन आज से मैं भी आमंत्रित कर रहा हूँ, पधारें, स्वागत है हमारा अपना कार्यक्रम, है ना। शैलेंद्र के बोल लीजिए, सुनिए संगम फिल्म का ये प्यारा सा गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओ, संगम फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्ते, कार्यक्रम MH हॉटलाइन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर MP से सूर्य प्रताप यादव बोल रहा हूँ।
0: सूर्य प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे
1: आज? मुझे फिल्म का नाम है 20 साल बाद।
0: 20 साल बाद फिल्म का कौन सा गीत?
1: हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे,
0: लोग हमें याद करेंगे।
1: हाँ
0: बिल्कुल।
1: एक्चुअली क्या हुआ था कि ये गाना मैंने परसों सुना था, लेकिन वो परसों समय की कमी के कारण मैंने सुन नहीं पाया था पूरा।
0: जी जी चलिए, तो आज आपकी फरमाइश जरूर पूरी होगी, है ना? आनंद बख्शी की शब्द रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के युगल स्वरों में ये गीत है, है ना?
1: जी,
0: और आप
1: बिल्कुल
0: भी
1: बिल्कुल।
0: रेडियो से, आकाशवाणी इंदौर से इतना प्यार करें कि हम सब आपको जरूर याद करें। लीजिए सुनिए
1: बिल्कुल, मैं
0: जी।
1: आकाशवाणी इंदौर से तो लगभग 2015-16 से जुड़ा हुआ हूँ।
0: लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत

अनुराधा पोरवार और मोहम्मद अजीज को अभी आपने सुना फिल्म 20 साल बाद में। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। बात करते हैं हमारे अगले श्रोता।

0: से। हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार।
1: हाँ हेलो,
0: कार्यक्रम एम एच
1: नमस्कार।
0: हॉटलाइन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ सर नमस्कार।
0: अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: मैं खातेगांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा हूँ जी। सर
0: जी? गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत।
1: ये मेरे को गाना सुनना है सर, वो आपने सर्च कर ही लिया है।
0: जी
1: और आज खुशी की बात ये रही कि सर आज मेरी शादी की 50वीं वर्षगांठ है।
0: क्या बात है सर, तो बहुत बहुत
1: बधाई
0: शुभकामनाएं,
1: सर।
0: है ना। मंगलमय दिन हो, खूब।
1: हाँ सर लड्डू भेज रहा हूँ सर मैं।
0: जरूर जरूर साहब, हम भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भेज रहे हैं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति करते रहें, है
1: चलो
0: ना। आपकी पसंद गूंज उठी शहनाई फिल्म
1: हाँ सर
0: जी, है ना। तो जीवन में आपके प्रिया का साथ सदैव बना रहे, भरत व्यास की शब्द रचना है, बसंत देसाई का संगीतबद्ध किया हुआ। पुनः एक बार बधाइयों के साथ लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। बात करते हैं हमारे आज के अंतिम श्रोता से। हेलो
1: जी सर, नमस्कार। सर
0: नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। अपना नाम बताएं।
1: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। सर
0: जी, पसंद बताएं।
1: सर जी, आज ये अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जी का जन्मदिन है।
0: जरूर,
1: उसी उपलक्ष्य में गीत है उनका, बहुत ही पॉपुलर गीत है, फिल्म का नाम है बेटा
0: जी।
1: इसमें गीत है धक धक करने लगा।
0: जरूर है ना, तो माधुरी दीक्षित का जन्मदिन आप इस गीत के साथ मनाना चाह रहे हैं।

0: आज के
1: जी जी
0: कार्यक्रम के आप हमारे अंतिम श्रोता हैं, अंतिम कॉल हम आपका अटेंड कर रहे हैं, इसलिए लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम MH हॉटलाइन को आप तक सुव्यवस्थित ढंग से पहुंचाने में हमें तकनीकी रूप से सहयोग मिला आदेश सिंह चौहान और वानखड़े जी का।

0: श्रोताओं, अब कार्यक्रम समाप्त करने की नीलेश जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फुनेन कार्यक्रम MH हॉटलाइन मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का यह इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगा।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। श्रोताओं, हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल के बाहर के श्रोता STD कोड लगा सकते हैं 0755। हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे, यदि आपका फोन कार्यक्रम में हफ्ते भर के अंदर लगा है तो कृपया ना लगाएं और हमारे नए श्रोताओं को मौका

0: और अब हम देखते हैं कि हमारे पहले श्रोता कौन हैं। हेलो, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में, आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार, क्या हाल है?
1: बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, महीने साल बन गए ऐसा लग रहा है मुझे तो।
0: क्या बात है, क्या बात है। देखिए, वो क्या होता है, दिल से दिल की राह होती है ना।
1: जी,
0: जी,
1: ग्राम सनोतिया जिला गुना
0: अरे
1: मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेलवाला।
0: बांगी लाल जी, क्या हाल चाल है?
1: हाल चाल आपकी दुआ से बढ़िया है और सब आनंद है, और मैं इस बार से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया। सर जी फिल्म का नाम रहेगा शहनाई।
0: शहनाई,
1: जी पुरानी
0: अरे वाह, क्या
1: वाली
0: पुरानी वाली शहनाई।
1: बात रहे।
0: चलिए, तो आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर
0: और
1: जी कुछ
0: हम,
1: मित्रों को याद कर
0: हाँ
1: सकता
0: बिल्कुल
1: हूँ।
0: कर लीजिए।
1: दिनकर सिंह जी है चित्रकूट धाम से, और फूलचंद पाल जी है मनकारी से, प्रेमदास बाबा जी हैं, बेटा सिंह यादव जी है, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, इन सभी को सर जी ये गाना डेडिकेट रहा है।
2: न झटको जुल्फ से पा

0: कार्यक्रम फोन करेंगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: जीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।

0: कार्यक्रम फोन करेंगे इस समय में आपका स्वागत है। आपने कॉल किया है, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए।
1: सर मैं शिवानी मेरा बात कर रही नीमच से।
0: अच्छा शिवानी, कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: सर मूवी का नाम है जीने की रहार, गाने के बोले आने से उसके आए बाहर।
0: नीमच में गर्मी वगैरह कैसी पड़ रही है?
1: सर बहुत गर्मी है यहाँ तो।
0: और ये है कि इतनी गर्मी में आप कौन सा गाना सुनना चाह रही हैं?
1: जीने की रहा।
0: नहीं नहीं, गाने के बोल क्या हैं?
1: गाने के बोल हैं आने से उसके आए बाहर।
0: हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतनी गर्मी में किसी के आने से
1: बारिश हो जाए सर तो अच्छा है।
0: अच्छा चलिए सही बात है
1: सर, गर्मी तो बहुत है और यहाँ तो लाइटें भी चली गई है।
0: अभी चली गई या बहुत देर से गई है?
1: नहीं सर सुबह से गई है यहाँ तो आज।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: तो गर्मी के बगैर कैसा लगता है, मजा आता है गर्मी
1: नहीं
0: का?
1: सर मजा तो नहीं ना आता है।
0: नहीं तो देखिए मजा तो ये देखिए ये तो अगर पहले बहुत पहले की बात करें तो लाइट नहीं हुआ करती तो भी लोग एंजॉय किया करते थे।
1: हाँ सर किया करते थे, लेकिन आज के जनरेशन में सर लाइट नहीं हो तो क्या एंजॉय, क्योंकि फोन वगैरह चार्ज नहीं देंगे तो फिर
0: फोन के बिना तो आजकल जीवन अधूरा है,
1: जिंदगी नहीं अभी तो।
0: ये बात भी सही है। चलिए ठीक है, तो आपने गाना भी बता दिया और सारी चीजें बता दी, तो हम अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपको गाना सुनवा दें।
1: जी सर, थैंक यू।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रही हैं?
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए सबसे पहले तो।
1: जी मैं इंदौर से बोल रही हूँ।
0: इंदौर से तो बोल रही हैं आप, नाम भी तो होगा आपका कुछ।
1: जी है ना, जीनत परवीन, कोहिनूर कॉलोनी से।
0: जी जीनत परवीन, अच्छा ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनेंगी?
1: गाना प्रेम रोग का।
0: प्रेम रोग का कौन सा? मैं हूँ प्रेम रोगी
1: जी। कुछ नहीं जब रोग ये लग जाता।
0: हाँ, बहुत अच्छा गाना है ये, सुरेश वाडकर की आवाज है
1: जी।
0: रेडियो सुनती हैं आप?
1: रेडियो चलता ही रहता है।
0: अच्छा रेडियो चलता रहता, देखिए चलते रहता है तो इस वजह से आप पूरे प्रोग्राम सुनती होंगी। तो आकाशवाणी इंदौर सुनती हैं या आकाशवाणी मध्य प्रदेश सुनती हैं या आकाशवाणी भोपाल सुनती हैं, क्या सुनती हैं आप?
1: सब सुनती हूँ, सब पे लगा लेती हूँ।
0: अच्छा क्या बात है।
1: इंदौर भोपाल लखनऊ।
0: नई तकनीक का यही फायदा है कि हम घर बैठकर पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं
1: जी,
0: है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: कार्यक्रम फोन करेंगे सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं नमस्ते, मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: क्या बात है प्रेम साहब, क्या बात है
1: जी, कैसे हैं सर आप?
0: अरे बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ और आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस आपसे बात करता रहूं।
0: अरे वाह, क्या बात है क्या बात है, हमारे भी दिल चाह रहा है कि हम आपसे बात करते रहें
1: जी।
0: तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मुझे कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: जी सर, फिल्म का नाम है कुली नंबर वन।
0: कुली नंबर वन,
1: हाँ जी, उसका है ना वो जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना।
0: क्या बात है क्या बात है, जब दिल न लगे। हाँ, तो अभी आपका दिल नहीं लग रहा?
1: जी, हमारा दिल तो हमेशा लगा रहता है, आकाशवाणी सुनते रहते हैं। और जब सबसे ज्यादा हमें लोकप्रिय कार्यक्रम लगता है आकाशवाणी भोपाल का, कोई मतलब फोन करेगी सुने।
0: अभी ये आकाशवाणी भोपाल नहीं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: जी
0: अच्छा, और बताएं बाकी कैसे, क्या हाल चाल है वहाँ आपके उज्जैन में, महाकाल की नगरी है, अभी गर्मियों के क्या हाल
1: सभी है? अच्छे हैं, अभी गर्मी काफी हो गई है और अभी 2028 में सिंहस्थ लगेगा ना।
0: हाँ,
1: तो उसकी काफी तैयारियां हो चुकी हैं, रास्ते काफी चौड़े कर दिए गए हैं, मंदिर के आसपास में काफी जगह कर दी गई है और मतलब एरोप्लेन की भी व्यवस्था कर दी गई है और रेलवे स्टेशन पे भी मतलब है ना ऐसे कैमरे लगा दिए गए हैं और ताकि यात्रियों को आने जाने वाले को कोई असुविधा ना हो।
0: अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने गाना भी बता दिया मुझे और हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए भी

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: सर नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मोहम्मद सलमान बोल रहा हूँ, शहडोल एमपी से।
0: मोहम्मद सलमान, मुझे एकदम से लगा कि सलमान खान तो नहीं बोल रहे।
1: अरे नहीं सर, और सुना ये कैसे हैं सर आप?
0: बस बिल्कुल ठीक ठाक। आपने जगह का नाम क्या बताया?
1: सर हम शहडोल से बोल रहे हैं।
0: तो शहडोल का नाम ऐसा क्यों पड़ा कि शहडोल?
1: शहडोल शहडोल कहे तो सर क्या कहते हैं तो फिर क्या बहुत क्या कहते, पुराना शहर है सर और इसका नाम शुरू से यही है सर।
0: अच्छा यही है तो, मतलब अपन का कोई योगदान नहीं है, पहले ही रख दिया इसका नाम।
1: जी जी जी
0: चलो ठीक है, मैंने कहा शायद कुछ इतिहास होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना।
1: हाँ
0: चलिए, अच्छा बताइए मुझे कि कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: मेरे को सर गाना सुनवा दीजिए सर, फिल्म का नाम है अमिताभ बच्चन की फिल्म है, फिल्म का नाम है सर फिर क्या कहते कुली।
0: कुली, क्या बात है कुली।
1: और गाने के बोल हैं क्या मुबारक हो तुमको ये हज का महीना।
0: अरे क्या बात है।
1: तो हज में क्या कहते अम्मी और अब्बू हमारे गए हैं सर, तो फिर क्या कहती है तो फिर ये गाना सुनना चाहते हैं सर।
0: अरे वाह क्या बात है। और देखिए कि हज पे गए हैं और
1: जी
0: आपको, और आपका फोन भी लग गया है, तो मतलब ये कि जा चुके हैं या जाने वाले हैं?
1: तो फिर क्या कहते जा चुके हैं सर,
0: अच्छा
1: हज में जा चुके हैं।
0: अच्छा चलिए, तो आप सुनिएगा गाना और अपने दोस्तों को भी सुनवाइएगा ये गाना।
1: जी सर
0: आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी सर शुक्रिया सर।

0: कार्यक्रम में फोन करेंगी। सुने में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते,
1: बोबी रायकवार बात कर रहा हूँ सर, कोटा से।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सब बढ़िया सर, यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है।
0: क्या बात कर रहे हो
1: सर, राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ रही है।
0: राजस्थान, हाँ वैसे भी क्या है, राजस्थान रेगिस्तान लगा हुआ है वहाँ। हाँ जी, तो गर्मी तो होगी। और अभी टेम्परेचर कितना होगा?
1: सर यहाँ पर 42 है अभी तो, और दिन में और बढ़ जाएगा सर।
0: अच्छा, दिन में और बढ़ जाएगा।
1: हाँ सर,
0: ओहो, तो घर से
1: कल
0: बाहर
1: ही हो
0: निकलना
1: रहा
0: तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा ना।
1: है। हाँ सर, बहुत।
0: तो फिर क्या करते हैं जब ज्यादा गर्मी होती है? तो घर में रहते हैं।
1: सर ज्यादा गर्मी होती है तो फिर कूलर चलाते हैं।
0: अच्छा, कूलर चला लेते हैं, चलो ये भी अच्छा है। अच्छा बताओ, कौन सा गाना सुनोगे?
1: मैंने प्यार किया का कहे तो उसे सजना।
0: अच्छा, मैंने प्यार किया है, कुछ इसमें यही गाने क्यों पसंद है?
1: सर पुराने गाने ही पसंद है।
0: अच्छा, तो कहो क्या गाने के बोल क्या हैं?
1: कहे तो उसे सजना।
0: चलिए, आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो, फोन करेगी सुन में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: सर नमस्कार, मैं जितेंद्र पंडोले बात कर रहा हूँ।
0: जितेंद्र पंडोले। जितेंद्र जी
1: जी
0: कहाँ
1: सर,
0: से
1: मैं
0: बोल
1: आपका
0: रहे
1: मैदान
0: हैं?
1: जिला छिंदवाड़ा से। जी
0: छिंदवाड़ा से।
1: सर,
0: बहुत ही अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप क्या करते हैं?
1: सर मैं अभी फिलहाल तो PhD कर रहा हूँ,
0: अरे वाह,
1: रिसर्च स्कॉलर हूँ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में, और साथ ही साथ पढ़ा भी रहा हूँ सर UTT डिपार्टमेंट में।
0: अच्छा, मतलब पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा काम है।
1: जी जी जी जी सर,
0: और यही बात होती है कि देखिए, स्टूडेंट लाइफ में अगर आप कुछ काम शुरू कर देते हैं, जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: लोग
1: जी
0: ऐसे
1: सर,
0: होते हैं कि पढ़ाई के समय कुछ नहीं करते, फिर उनके लिए डबल स्ट्रगल होता है। तो मेरा मानना है कि जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब से आप अपना कुछ भी काम छोटा मोटा शुरू कर दीजिए, और जब आपकी पढ़ाई होगी तब तक आप बहुत आगे निकल जाते हैं। अच्छा,
1: जी
0: ये तो
1: जी
0: हो
1: जी सर।
0: गई
1: सर
0: वैसी बात। आप बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: मैं गाना सुनना चाहूंगा, मूवी

0: का नाम तो पता नहीं,
1: हाँ
0: बट गाना है
1: गाना याद नहीं आ रहा।
0: ये, हाँ ये रात भीगी भीगी,
1: अच्छा ये रात भीगी भीगी। हाँ
0: आपकी
1: हाँ
0: आवाज भी बहुत मधुर लगती है जावेद सर, आपको मैं तो हरदम सुनते रहता हूँ जब
1: क्या
0: जब भी
1: बात है
0: आपकी
1: क्या बात
0: छुट्टी
1: है।
0: लगती होगी।
1: हाँ तो हमें भी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, और जब हमारे श्रोताओं का फोन आता है ना, हमें ऐसा लगता है
0: जी
1: कि हम इनसे बात करते रहें, लेकिन समय की कुछ पाबंदी होती है कि हम उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाते।
0: जी जी जी
1: चलिए
0: जी
1: मगर
0: जी जी
1: आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, आप ज़रूर सुनिएगा।
0: जी जी सर, धन्यवाद सर।

0: कार्यक्रम फोन करेंगे सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: जी? नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: जी, संतोष कुमार राव बात कर रहा था सर।

0: मध्य प्रदेश से।
1: संतोष जी, क्या हाल चाल है?
0: बहुत ही अच्छे हाल समाचार सर, आपकी आवाजें सुनते हैं। नमस्कार, भोपाल में इतनी ऊर्जा का संचार आप करवाते हैं, बहुत ही ज्यादा मन प्रसन्न हो जाता है सर।
1: जिस तरह से आपको खुशी होती है ना, उससे ज्यादा हमें खुशी होती है कि हमारे श्रोताओं से हमारी बात हो रही है, क्योंकि हम आपको देख नहीं सकते, लेकिन उसके बाद में भी अगर आप हमें सुन रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और हम इंजॉय करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कॉल करते हैं।
0: बिल्कुल सर, सुकून भरे पल निकाल लेते हैं हम लोग इस तरीके से, जिस तरीके से आकाशवाणी भोपाल, नमस्कार भोपाल, गीत सागर और फोन इन कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को लेकर के आता है, जिसमें हमें ऊर्जा का संचार करवाता है, साथ ही ज्ञान की जो ताकत होती है उसे भी प्रवाहित करवाता है सर। ऐसे कार्यक्रमों को सुनना और गुनना बहुत ही अच्छा लगता है सर।
1: चलिए, अब आप हमें ये बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: जी सर, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है सर, फिल्म का नाम है पाकीज़ा।
1: पाकीज़ा, चलो दिलदार चलो।
0: नहीं सर, इसका बहुत ही प्यारा सा गाना सर।
1: कौन सा बताओ?

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें लागू हो गई हैं। इसराइल और लेबनान के अधिकारियों के बीच वॉशिंगटन में तीसरे दौर की शांति वार्ता जारी है। अभी तक इसमें किसी महत्वपूर्ण प्रगति की खबर नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में समिति का गठन किया गया है। प्रदेश सरकार सभी वर्गों और संबंधित पक्षों से चुनाव सुझाव प्राप्त करेगी। इसके लिए संभाग और जिला स्तर पर दल भेजे जाएंगे। फर्जी विश्वविद्यालयों और अवैध शिक्षण संस्थानों के जाल से विद्यार्थियों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उज्जैन से भोपाल अपने काफिले के साथ पदभार ग्रहण करने पहुंचे मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इसके साथ ही मामले के निराकरण तक उनके सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार निरस्त कर दिए गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं देवरी भाटरपारा से गनुला रजक, के आर साहू, अश्विनी शर्मा वर्मा, गणेश मिस्त्री। इसी गीत को सुनना चाह है अमित, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवा पारसमणि और संदीप पाटिल। आप सभी ने सुनना चाहा है सड़क फिल्म का ये नगमा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं आए दिन बहार की फिल्म का नगमा। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की। सुनने की ख्वाहिशमंद अमलेश्वर से डोमन, सुमन, मिथलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। धनतेरी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक और झाविंद्र कुमार। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं झारखंड से उत्तम कुमार, श्वेता और ताशु, पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया। आप सभी ने सुनना चाहा है अभिलाषा फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सुरों में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है, तर्ज बनाई है आर जी बर्मन ने।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या?
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: इस समय आप हैं हमारे साथ।
1: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
6: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
5: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
6: वही दोपहर 1 बजे।
5: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रहना।
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
0: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
0: अरे काहे का मजा।
3: क्यों, क्या हुआ?
0: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
0: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात। युवाओं के जोश, उमंग और

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक पंचतंत्र का दूसरा भाग।

0: सुधीजन को मेरा बारंबार प्रणाम। पंचतंत्र की कथाएं सचमुच मोहित करने वाली होती हैं। पिछली कथा में मैंने बताया, दमनक ने संजीवक से वचन लिया कि राजा से मित्रता करके वो दमनक को भूल ना जाए, नहीं तो दंतिल ने गौरव को अपमानित करके जो भूल की थी वही हालत संजीवक की होगी। और दमनक ने संजीवक को दंतिल की कथा कुछ यूं सुनाई।
1: वर्धमान नाम का एक नगर था, वहाँ एक दंतिल नामक आभूषणों का व्यापारी था। वो राजा का विशेष कृपा पात्र था। कहा जाता था उसके समान चतुर व्यक्ति शहर में नहीं था। एक बार की बात है, गौरम नामक व्यक्ति जो राज दरबार में सेवक था, वो दंतिल से अपमानित हो गया।
2: समझता क्या है वो दंतिल? महाराज का बड़ा मुंह चढ़ा है ना, सबके सामने मुझे अपमानित करके उसने अच्छा नहीं किया। इस भांडपति दंतिल को राजा की कृपा से वंचित ना करा दूं तो मेरा नाम भी गौरव में नहीं। परंतु कैसे उसकी कुछ भी क्षति करना मेरे बस में नहीं है। क्या करूं क्या?
3: क्या हुआ? इतनी देर रात किस पर इतने क्रोधित हो रहे हो? आज तक तुम्हें ऐसे अपशब्द बोलते मैंने कभी नहीं सुना। देख रही हूँ कल रात से ही परेशान से दिखाई दे रहे हो।
2: नहीं भगवान, जब दिल दुखता है तभी हाय निकलती है। दंतिल आजकल आसमान में उड़ने लगा है।
3: दंतिल? कौन दंतिल? वही व्यवसायी।
2: अरे छोड़ो, बड़ा आया व्यवसायी, अपने आप को महाराज का सगा वाला समझने लगा है।
3: क्यों, क्या हो गया? अरे ऐसा क्या कर दिया उसने?
2: ये कुछ मत पूछो। मैं उस रात को उस दंतिल की बेटी की विवाह समारोह में गया था ना।
3: हाँ?
2: पूरा राज परिवार भी वहाँ पर उपस्थित था। मैं महाराज के साथ ही था। मुझे वहाँ पर महाराज के पास बैठा देखकर उसने मुझे बहुत अपमानित किया और धक्के देकर विवाह स्थल से निकाल दिया।
3: क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। परंतु आप शांत रहिए, अपने जीव को दुखाइए मत। शुभ कार्य में किसी निर्धन का श्राप लेकर वो भी सुखी नहीं रहेगा। सुनिए, चलिए सो जाइए, बहुत रात हो गई है।
2: नींद किसे आएगी? मेरे तो सीने में आग जल रही है। जब तक उससे इस अपमान का प्रतिशोध नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। क्या करूं? हाँ, एक ही उपाय है। अपने आप को महाराज के बहुत निकट समझता है ना, क्यों ना उसके विरुद्ध महाराज के कान भर दूं। फिर जो करना है वो महाराज स्वयं ही करेंगे।
4: अरे गौरव
5: जी,
4: आज सूर्य उदय के पूर्व ही तुम्हारा काम शुरू हो गया और मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई।
5: क्या करूं महाराज, एक घटना देखकर रात भर नींद ही नहीं आई
4: है,
5: इस कारण जल्दी ही काम पर आ गया।
4: ऐसी कौन सी घटना देख ली तुमने?
5: कैसे कहूं महाराज, मैं तो साहस ही नहीं जुटा पा रहा हूं।
4: निर्भय होकर कहो।
5: क्षमा चाहता हूं महाराज, उस दंतिल की दृष्टता तो देखिए, उसका साहस। नाना महाराज, मैं ना कह पाऊंगा।
4: देखो, जो बात शुरू की है उसे पूरा करो, मेरा आदेश है।
5: उसका साहस इतना बढ़ गया है कि वो महारानी का आलिंगन करने लगा।
4: क्या बक रहे हो गौरव, होश में तो हो। महारानी का आलिंगन? दंतिल?
5: अपराध क्षमा करें महाराज, जुआ खेलते हुए रात नशे में मुझे नींद नहीं आई। मैंने अभी अभी जो कुछ भी कहा हो सकता है उसी का असर हो।
4: दोष, बिना विचारे इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अभी यहां से निकल जाओ।
5: जो आ गया महाराज मैं चला।
4: कहीं ऐसा तो नहीं ये गौरम सत ही कह रहा हो, दंतिल के साथ साथ ये भी तो अंतापुर में बेरोक टोक जाता था। महारानी की दंतिल के प्रति किंचित आ सकती हो? तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवा न जानन्ति कुतः मनुष्य। नहीं, आज के बाद दंतिल का राजभवन में प्रवेश बंद बंद बंद बंद बंद बंद।
6: दंतिल जी, आपका राजभवन में प्रवेश निषेध हो गया है।
7: अरे ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं मैं महाराज का विशेष कृपा पात्र हूँ।
6: परंतु महाराज ने स्वयं ही ये आदेश दिया है।
7: हूँ, मैंने तो सपने में भी राजा अथवा उनके किसी प्रियजन का अनिष्ट नहीं किया, फिर महाराज मुझसे अप्रसन्न क्यों हो गए?
5: अरे भाई द्वारपाल
6: जी,
5: सावधान रहना, ये श्रीमान दंतिल जी हैं, राजा के विशेष कृपा पात्र हैं। इन्हें राजा की ओर से पुरस्कार अथवा दंड पाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इन्हें रोकने से आप लोग भी मेरी तरह अपमानित हो सकते हैं।
7: लगता है ये सारी चाल गोरम्भ की ही है। अरे भाई गोरम्भ, भाई गोरम्भ, मुझे अपने किए पर पश्चाताप है। आप कृपया उस अपमान को भूलकर मुझे क्षमा कर दें।
5: आपने मुझसे क्षमा मांगकर मेरे मन का कलुष मिटा दिया। आपने सबके सामने क्षमा मांगकर मुझे बहुत सम्मानित किया है। अब आप मेरे बुद्धि कौशल एवं राजा के अनुग्रह को देखिए।
7: आप धन्य हैं, आप धन्य हैं।
5: महाराज की जय हो। आप सर्वज्ञ हैं, परंतु शौच स्नान आदि क्रिया के समय ककड़ी खाना उचित नहीं है महाराज।
4: गौरम, कैसी अनर्गल बात कर रहे हो? क्या तुमने मुझे ऐसा करते हुए देखा है?
5: देव, जुआ खेलने में व्यस्त रहने के कारण मैं रात भर जागता रहा हूँ। नींद के नशे में मेरे मुख से कुछ निकल गया हो तो मुझे क्षमा करें महाराज।
4: मैंने जन्म से आज तक कभी ऐसा कार्य नहीं किया। इसने अर्ध निद्रा में जिस प्रकार की ये बात कही, संभवतः दंतिल की कहानी भी झूठी हो। मैंने व्यर्थ ही उसे अपमानित किया। मैं आज ही उसे बुलाकर उचित सम्मान देकर पूर्ववत नियुक्त कर दूंगा।
0: इस कहानी को सुनाकर दमनक ने संजीवक को बता दिया कि जो गर्व के कारण राजभृत्यों का अनादर करता है उसकी हालत दंतिल जैसी होती है। संजीवक से वचन लेकर उसने पिंगलक से संजीवक की मित्रता करवा दी। दोनों की मित्रता इतनी गाढ़ी हो गई कि पिंगलक अब पूरी तरह संजीवक के वश में हो गया। संजीवक और पिंगलक की मित्रता देखकर पूरी जानवरों की सेना दुखी हो गई। अब न राजा उनका ध्यान रखते थे ना ही भोजन की व्यवस्था करते। सारा दिन केवल संजीवक के साथ विचरण करते रहते। भोजन के अभाव में सभी की स्थिति दयनीय हो गई थी।
8: ऐसे कैसे जीवन कटेगा दमनक? सिंहराज तो अपना अरण्य धन तक भूल गए हैं। भूख के कारण सभी की दशा दयनीय हो गई है।
9: हाँ करकट, कहते हैं ना, सूखा पेड़ कितना ही विशाल क्यों ना हो पक्षी दूर चले जाते हैं। उसी प्रकार सेवक कितने दिनों तक बिना जीविका के प्रतीक्षा करते रहेंगे।
8: मुझे तो लगता है हमारा मंत्री पद पुनः पाने का सपना सपना ही रह जाएगा। तुम्हारा क्या विचार है?
9: अरे करकट, राजा की दृष्टि में इस समय हम नगण्य हैं, परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम राजा को सारी परिस्थितियों से अवगत करा दें।
8: दमनाक, ये सब तुम्हारा ही तो किया धरा है।
9: आपका कथन ठीक है, ये सब मेरा ही दोष है। मैं स्वयं ही इसका जिम्मेदार हूँ, जैसे आषाढ़ भूत कलिका और जुलाहे की स्त्री।

0: कैसे?
1: सुनो, किसी निर्जन स्थान में सन्यासियों का एक मठ था। वहां देव शर्मा नाम का एक सन्यासी निवास करता था। मठ में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे से उसके पास ढेर सारा धन एकत्र हो गया।
2: इस धन की पोटली को इधर उधर रखना ठीक नहीं। मैं इसे अपने कक्ष में ही रखता हूं। ये अच्छा जंजाल मेरे सिर पर आ गया। वैसे भी धन सदैव मनुष्य के लिए कष्टप्रद ही होता है। कौन कौन है वहां? अंदर आओ भाई।
3: प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम आषाढ़भूति है। भगवान, मेरा नमन स्वीकार करें।
2: आयुष्मान भव,
3: यह संसार आसार है, मुझे दीक्षा देकर अनुग्रहित करें भगवान।
2: वत्स, तुम युवावस्था में ही जीवन से विरक्त हो गए हो। तुम धन्य हो। मैं दीक्षा रूपी अनुग्रह तो कर ही दूंगा, परंतु रात्रि के समय तुम मठ में प्रवेश नहीं करना। द्वार पर बनी घास की कुटिया में शयन करना।
3: आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है भगवान।
2: वत्स, आषाढ़भूति, पूजा की तैयारी हो गई?
3: जी गुरुदेव, आप पूजन प्रारंभ करें।
2: ओम,
3: पता नहीं कितने दिन इस बुड्ढे की सेवा करना पड़ेगी। मन में आता है किसी दिन इसकी हत्या कर डालूं और धन लेकर चंपत हो जाऊं।
2: ओम भूर्भुवः स्वः तत्स्।

0: एक दिन पंडित देव शर्मा ने आषाढ़ भूति से कहा कि उनका एक शिष्य उन्हें निमंत्रण देकर गया था कि उसके घर गृह प्रवेश में आना है। वो चाहते हैं कि आषाढ़ भूति भी उनके साथ चले। मार्ग में
1: दिन चढ़ाया, वत्स, मैं स्नानादि से निवृत्त होकर आता हूँ, थक गया हूँ। सामने ही जलाशय है, तुम यही मेरी प्रतीक्षा करो, मेरे लौटने तक मेरी इस पोटली की रक्षा करो।
2: जो आज्ञा गुरुदेव।
1: ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः।
2: इसी क्षण की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था गुरुदेव। आप स्नान कीजिए और मैं तो चला ये पोटली लेकर।
1: वत्स, अब तुम जाकर। वत्स, वत्स कहाँ हो? आषाढ़ भूति, आषाढ़, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो भाग नहीं सकता। हाय हाय, मैं लूट गया। अरे आषाढ़ भूति, मुझे लूट कर कहाँ चला गया, कहाँ चला गया रे, कहाँ चला गया?
0: और इस प्रकार विलाप करते हुए देव शर्मा आषाढ़ भूति के पद चिन्हों को ढूंढते हुए सूर्यास्त के समय एक गांव में पहुंच गया। उस गांव में एक जुलाहा अपनी स्त्री के साथ समीप के नगर में जा रहा था। सूर्यास्त काल में द्वार पर आए अतिथि का सत्कार करने वाला देवत्व को प्राप्त करता है। ऐसा सोचकर स्त्री को आतिथ्य के लिए छोड़कर वो जुलाहा स्वयं चला गया। परंतु पति के जाते ही वो सज धज कर अपने प्रेमी देवदत्त से मिलने चल पड़ी। रास्ते में पति को देखकर घर वापस आ गई। परंतु उसके पति को संदेह हो गया।
3: अरे पापिन, तू आभूषणों से लदकर अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी? तेरे बारे में बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूं मैं। आज अपनी आंखों से देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। आज मैं तुझे उचित दंड दूंगा। ये ले, ये ले, ये ठीक रहेगा। अब मैं तुझे इस खंबे से बांध दूंगा। अब भाग तू।
4: अरे ये तो सो गया, अब मैं क्या करूं? देवदत्त के पास कैसे जाऊं? ये कलिका तो इधर ही आ रही है। सखी कलिका, कलिका सुनो।
5: अरे सखी, अरे देवदत्त वहां तुम्हारी बाट जो रहा है, तुरंत जाओ।
4: लेकिन मेरी दशा तो देखो, मैं कैसे जा सकती हूँ? सुनो, तुम जाकर उससे कह देना कि आज रात्रि में उससे मेरी भेंट होना संभव नहीं है।
5: नहीं, ये उचित नहीं, तुमने उसे वचन दिया था। अरे वो बाट जो रहा है।
4: अगर ऐसी बात है तुम ही बताओ सखी, कि इस कठिन बंधन में रहकर मैं कैसे वहां जा सकती हूँ? और ये मेरा पापी पति भी तो यहीं पड़ा है।
5: अरे सखी, शराब के नशे में बेहोश ये सूर्योदय के बाद ही जागेगा। ऐसा करो, मुझे अपने स्थान पर बांधकर तुरंत ही देवदत्त से मिलाओ।
4: हाँ हाँ हाँ सखी, यही ठीक रहेगा। तुम जो कहती हो मैं वही करूंगी।
5: रात्रि का तीसरा प्रहर शुरू हो गया। सखी को अब तक आ जाना चाहिए था। अरे
4: अरे अरे कहीं ये नींद से जाग न जाए।
3: अरे अरे पापिष्ठा कुलटा, यदि आज से ही तू पर पुरुष गमन नहीं छोड़ते तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। बोल, बोलती क्यों नहीं? बोल।
4: कुछ बोलू तो ये मेरी आवाज पहचान लेगा, मैं चुप ही रहूंगी, मैं चुप ही।
3: अरे बोल, तू बोलती क्यों नहीं? बोल, तू बोलेगी कि नहीं बोलेगी? हाँ नहीं बोलेगी? रुक रुक, अबे रुक, मैं तेरे शस्त्र से तेरे नाक काट दूंगा। अबे ले, ले।

0: देव शर्मा तो इस पूरी घटना को देख रहा था। धन चोरी होने के कारण उसे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। वो जुलाहे की पत्नी की उल्टा प्रवृत्ति को देख रहा था। प्रेमी से मिलने के बाद रात के अंतिम प्रहर में जब जुलाहे की पत्नी घर वापस आई, तब
1: सखी कलिका, तुम सकुशल तो हो ना? कहीं मेरे जाने के बाद ये पापी उठा तो नहीं था?
2: तुम आ गई, नासिका को छोड़कर बाकी मैं सकुशल हूँ।
1: क्या
2: तुम शीघ्र मुझे इस बंधन से मुक्त करो, जिससे इस पापात्मा के देखने के पूर्व ही मैं अपने घर चली जाऊँ। मेरे पति भी लौटते होंगे, मुझे शीघ्र ही घर पहुँचना होगा।
1: हाँ सखी अवश्य। परंतु सखी, तुम अपने पति से नासिका के घाव के विषय में क्या कहोगी?
2: देखती हूँ, कोई ना कोई उपाय तो निकल ही आएगा। अब देर मत करो, आओ आओ, मैं तुम्हें बांधूं।
1: हाँ,
2: लो बांधो।
3: क्यों पर पुरुष गामने, अब भी कुछ बोलेगी या नहीं? आए, नाक तो मैंने काट दी, क्या कान भी काट कर और कठोर दंड दूं? बोल।
4: अरे मूर्ख पापी, मेरे जैसी सती नारी को कौन अपमानित कर सकता है?

0: खड़े आए मुझ पर संदेह करने वाले, समस्त लोकपाल मेरी बात ध्यान से सुने। यदि मेरे मन में भी सतीत्व है और मैंने कभी स्वप्न में भी पराए मर्द की कामना नहीं की है, तो देवता गण मेरी नासिका को पहले जैसा अक्षत बना दें। और यदि मेरे कहे वचन में तनिक भी मिथ्या हो, तो ईश्वर मुझे जलाकर राख बना दें।
1: अरे जा जा, बड़ी देखी है तेरे जैसी सती, जरा चेहरे से हाथ तो हटा है।
0: देख दुष्ट, देख मेरे सतीत्व के प्रभाव से मेरी नाक पूर्ववत ठीक हो गई है।
1: ये कैसे हो सकता है, नीचे खून अभी तक पड़ा हुआ है। मैंने खुद प्रहार किया था। नहीं नहीं नहीं नहीं, ये कैसे संभव है। तो क्या मेरी पत्नी सचमुच निर्दोष है, मैंने व्यर्थ ही पाप मोल लिया। गांव वालों की बातों में आकर मैंने सीता जैसी पत्नी पर संदेह करके घोर अन्याय किया है। देवी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो देवी। आओ आओ बैठो, यहाँ बैठो। ईश्वर मुझे पश्चाताप का मौका दे, ईश्वर मुझे पश्चाताप का मौका दे। बैठो बैठो।
0: हाँ अब ठीक है।
2: हे प्रभु, ये स्त्रियां तो असुरों की भांति माया जानती हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सन्यासी हूं, संसार के इस माया जाल से दूर। उफ।
3: मुझे तुरंत ही घर पहुंचना होगा। मेरी नासिका से जो खून बह रहा है उसका क्या करूं? अभी से मेरे स्वामी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। सखी को बचाने के चक्कर में मैं ही फंस गई। क्यों घर आ गया, अब क्या करूं?
4: प्रिय प्रिय प्रिय प्रिय, सुनो, आज बड़ा विलंब हो गया है, सूरज चढ़ाया है। मैं वो मुझे राज दरबार में बाल काटने और दाढ़ी बनाने के लिए शीघ्र पहुंचना है। तुम एक काम करो, मेरे औजारों की पेटी जल्दी दे जाओ तो मैं चला जाऊं जल्दी।
3: ये मौका अच्छा है। मैं धारदार उस तरह उसकी ओर जोर से फेंकती हूँ। अगर वो मेरी ओर उसे वापस फेंक देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ये ले पकड़।
4: अरे अरे, ये कौन सा तरीका है? मैं तुझे इतना प्रेम करता हूँ, इस कारण तेरा साहस अत्यधिक बढ़ गया है। अपने स्वामी के लिए कोई सम्मान नहीं है। ठीक है ठीक है, तुझे उचित दंड देना होगा।
3: नहीं,
4: ले ये उस्तरा।
5: मैं मर गई। कोई है इस पापी ने बिना किसी अपराध के ही मुझ जैसी पतिव्रता नारी की नारी।

0: न्यायालय की कार्रवाई प्रारंभ की जाए।
1: श्रीमान, इस नापित ने बिना किसी अपराध के ही अपनी स्त्री का अंग भंग कर दिया है, अतः इसे उचित दंड दें।
0: नापित, तुमने अपनी पत्नी पर प्रहार क्यों किया? क्या इसने परपुरुष गमन किया था या चोरी की थी? इसका अपराध क्या है, बोलो। तुम चुप क्यों हो? तुम्हारा मौन तुम्हें अपराधी साबित करता है। सिपाहियों का कथन भी ठीक जान पड़ता है। तुम दोषी हो। इस निर्दोष स्त्री पर प्रहार करके तुमने घोर अपराध किया है, अतः तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा।
2: महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।
0: कौन हो तुम जो इस समय अदालत की कार्रवाई में दखल दे रहे हो?
2: मैं सन्यासी हूँ। मेरा नाम देव शर्मा है। ये बेचारा नापित अन्यायपूर्वक मारा जा रहा है। ये निरपराध है। मेरी बात आप ध्यानपूर्वक सुने।
3: और फिर देव शर्मा ने सविस्तार दोनों वृत्तांत को सुनाया। उसकी बात को सुनकर न्यायपाल ने नापित को मुक्त कर दिया और कलिका को दंड स्वरूप कान काटने का आदेश दिया। देव शर्मा ये सब देखकर अपने धन की चोरी को भूलकर पुनः मठ में लौट गया। दमनक की ये कथा सुनकर करकट संतुष्ट हुआ या नहीं, या दमनक को कोई और कथा सुनानी पड़ी, ये जानने के लिए कीजिए अगले सप्ताह का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की दूसरी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। इससे पहले हुई परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी और सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही थी। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें लागू हो गई हैं। प्रदेश में शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत राज्य के चयनित 4,000 प्रतिभागियों को आज से जिला स्तर पर 45 दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार सभी वर्गों और संबंधित पक्षों से सुझाव प्राप्त करेगी। इसके लिए संभाग और जिला स्तर पर दल भेजे जाएंगे। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों को छोड़कर पूरा प्रदेश लू के चपेट में है। मौसम विभाग ने आज से 3 दिनों तक इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, हरदा, झाबुआ जिले के लिए तीव्र लू की चेतावनी जारी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मेरी वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

कार्यक्रम महिला सभा में स्वागत है सखियों आपका। आपके साथ हूँ मैं दुर्गेश नंदिनी। नमस्कार। खुद को समझना सीखा तो जिंदगी आसान हो गई। खुद को समझना सीखा तो जिंदगी आसान हो गई। अब किसी की जरूरत नहीं मुझे खुश रहने के लिए, क्योंकि खुद से दोस्ती करने के बाद हर शाम सुहानी हो गई। सखियों, ये पंक्तियाँ इस ओर इशारा कर रही हैं कि आप स्वयं की परवाह करना सीखें। जी हाँ, सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। तनाव को कम करने में, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के साथ ही आत्मविश्वास, भावनात्मक संतुलन को बढ़ाने में ये बहुत मददगार साबित होती है। सेल्फ केयर स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसंरक्षण है। इसलिए नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक भोजन करें और अपनी पसंद के काम के लिए समय निकालें। बस आप सदैव सकारात्मक, प्रसन्न और स्वस्थ रहेंगी और अपने परिवार की देखभाल भली प्रकार से कर पाएंगी। जी हाँ सखियों, हर साल 15 मई को हम विश्व परिवार दिवस मनाते हैं और इसका उद्देश्य परिवारों के प्रति प्रेम, सम्मान और उनके प्रेम को रेखांकित करना है। इस वर्ष की थीम है परिवार असमानताएं और बाल कल्याण। यह विषय परिवारों पर बढ़ती असमानता के प्रभाव, बाल गरीबी को कम करने और स्वस्थ विकास के लिए नीतिगत निवेश पर केंद्रित है। साथ ही सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी इसका उद्देश्य है। और अब सुन लेते हैं एक प्यारा सा मीठा सा गीत।

जी हाँ सखियों, घर परिवार गुलजार रहे यही हम कामना करते हैं। और अब बात करते हैं आपकी प्रिय रेडियो की, आकाशवाणी की। जी हाँ सखियों, हमारी प्रिय आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो ने 8 जून 1936 को अपनी स्थापना के बाद से 2026 में 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण किए हैं। वर्तमान में ये डिजिटल रेडियो, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और मोबाइल ऐप्स के जरिए दुनिया भर में मौजूद है। आपके प्रिय साथी ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्र निर्माण, सांस्कृतिक संरक्षण और आपदा प्रबंधन में भरोसे की गूंज के रूप में कार्य किया है। जी हाँ सखियों, आकाशवाणी ने 90 सालों से जनता की सेवा और मनोरंजन के साथ साथ विकसित भारत 2047 के विजन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जारी रखी है। और अब आप के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, जी हाँ हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। आप कैसे इसका लाभ उठा सकती हैं, ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ सखियों, छोटे कारोबारियों के लिए बिना गारंटी रुपए 20 लाख तक का लोन उपलब्ध कराती है ये योजना। ये योजना गैर कृषि, गैर कारपोरेट छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करती है। जी हाँ, बैंक, NBFC या उद्यमी मित्रा वेबसाइट के माध्यम से 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई प्रोसेसिंग फीस, गारंटी की आवश्यकता नहीं है। बैंक के नियमों के अनुसार आमतौर पर ब्याज दर 9% से 12% या अधिक हो सकती है। और पात्रता की बात करें तो सखियों, आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 18 से 65 वर्ष के मध्य हो, नया या मौजूदा छोटा व्यवसाय अनिवार्य है। और आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, पैन कार्ड, व्यवसाय का पता और प्रमाण पत्र के साथ पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है। आवेदन आप PSB Loans in 59 Minutes पोर्टल या नजदीकी बैंक शाखा CPSU प्राइवेट ग्रामीण बैंक में कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए मुद्रा की आधिकारिक वेबसाइट www.mudra.org.in देख सकती हैं। और अब सुन लेते हैं एक और प्यारा सा मधुर सा गीत।

0: जी हाँ सखियों, रेडियो बज रहा है, आप भी सुन रहे हैं, हम आपसे बातें कर रहे हैं और अब ध्यान से सुनिए। जी हाँ, अब आप शामिल हो रही हैं हमारे साथ भेंटवार्ता में। विषय है कैसा हो किशोरी बालिकाओं का आहार। जानकारी दे रही हैं आहार विशेषज्ञ सपना जैन। सखियों, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था होती है, ये हम सभी जानते हैं, किंतु प्रश्न ये उठता है कि इस अवस्था में आहार नियोजन कैसा हो, यानी संतुलित आहार कैसा हो। वर्तमान में बदलती जीवन शैली ने किशोर होती युवतियों के स्वास्थ्य को खासा प्रभावित किया है। खानपान के बदलाव ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को भी न्योता दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आहार विशेषज्ञ श्रीमती सपना जैन को। हमारी बातचीत का विषय है किशोर होती लड़कियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। नमस्कार सपना जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार दुर्गेश जी।
0: सपना जी, सर्वप्रथम तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किशोर वय लड़कियों में क्या क्या शारीरिक समस्याएं होती हैं।
1: जी, किशोर होती लड़कियों में कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे खून की कमी होती है, जरूरी पोषक तत्वों की कमी, मोटापा, हार्मोनल परेशानियां, पीसीओडी, डिप्रेशन। तो आज के जमाने की जो हमारी जीवन शैली है और वो भोजन प्रणाली से भी जुड़ी है।
0: जी,
1: तो भोजन और जीवन शैली अभी बहुत विरोधाभास में चल रही है, उसकी वजह से किशोर वय लड़कियों में कई समस्याएं पैदा हो गई। अब जैसे स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस है, हार्मोन्स का स्ट्रेस है, महावारी शुरू होने का स्ट्रेस है, फैमिली से दूर जाने, करियर का स्ट्रेस है, उस वजह से उनके समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, समस्याओं से तो हम अवगत हो चुके हैं सपना जी। किशोर वय लड़कियों में कई प्रकार की पोषण संबंधी कमियां हो जाती हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वे कौन सी हैं और किस तरह से होती है।
1: जी दुर्गेश जी, आजकल की असंतुलित दिनचर्या की वजह से, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कई सारी समस्याएं किशोर वय लड़कियों में पैदा हो रही है, उनमें प्रमुख है आयरन की कमी। महावारी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से आयरन की कमी हो जाती है। आयरन के साथ कैल्शियम, विटामिन, सारे पोषक तत्व कम हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, ध्यान न देना, लैंगिक भेदभाव या अतिरिक्त बीमारी, मौसम संबंधी बीमारियों की वजह से भोजन पर ध्यान न दे पाना, ये कारण की वजह से उनमें पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इसके अलावा माता या पिता में से किसी को कोई बीमारी या घर में ज्यादा बच्चे होना, उस वजह से भी पोषक तत्व उनके कम हो जाते हैं, जिससे आगे आने वाले भविष्य में या संतान उत्पत्ति में उनको दिक्कत होती है।
0: ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सपना जी। और चूंकि महावारी की बात हो रही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि महावारी के दौरान, यानी जब शुरू होती है, तब कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, और साथ ही आप यहाँ पर यह भी बताएं कि इस दौरान जो हमारी किशोर वय होती लड़कियां हैं, उन्हें भोजन कैसा करना चाहिए।
1: जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महावारी शुरू होने पर शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, जैसे स्तनों में बदलाव, उनका विकास, शरीर में फुलावट या शरीर का भरना, त्वचा संबंधी परेशानियां, कभी कभी पीरियड्स के पहले हल्का सफेद रंग का स्त्राव भी होने लगता है। शर्म के मारे कई लड़कियां बता भी नहीं पाती। इन हार्मोन्स के कारण जब बदलते हैं, तो दो तरह के हार्मोन्स इनमें पाए जाते हैं स्त्रियों में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन।

0: टेस्टोस्टेरोन, ये उनमें बढ़ने लगते हैं। इनके संतुलन से गर्भाशय का विकास भी होता है और जो संतान उत्पत्ति में सहायक है। कभी कभी महावारी के दौरान सिर दर्द भी होता है, थकान होती है, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग होना, ये भी देखने में आता है। तो इस समय आहार पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो बाकी के 28 दिन साइकिल के अलावा जब वो पोषण लेती हैं, उसके अलावा अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। जब मासिक धर्म शुरू होता है तब से ही लड़कियों को अपने आहार में आयरन युक्त भोजन और उसके साथ विटामिन की भी पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि शरीर में आयरन का अवशोषण विटामिन सी के साथ ही उचित मात्रा में होता है। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मूंगफली, चना, खड़े मूंग, लौकी, चुकंदर, संतरा, नींबू, आंवला, जामफल, गाजर भी अपने भोजन में शामिल करना चाहिए।
1: तो कुल मिलाकर आपने ये बताया कि जो भोजन है तो जो किशोर वय की जो लड़कियां हैं उनको अपनी डाइट में इन खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए।
0: जी,
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रही हैं सपना जी। एक और सवाल हमारे मन में आ रहा है कि जो आजकल की टीन एज ग्रुप की लड़कियां हैं उनमें मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह है?
0: जी, एक्चुअली क्या होता है, आजकल जो खान पान हो गया है, अब करियर संबंधी दिक्कतें, कोचिंग क्लासेस, दिन भर की एक व्यस्त दिनचर्या इनकी हो गई है, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि भविष्य के लिए प्लानिंग अभी से शुरू कर देते हैं माता पिता, तो इनको ये पता नहीं होता है कि हमें दिन भर में कितना कैलोरी, क्योंकि सभी लोग इससे अवगत नहीं है। लेकिन एक रेशो अगर मैं आपको बताऊं तो किशोर वय लड़की को एक दिन में लगभग 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जिसमें 25% फैट, 50 ग्राम प्रोटीन और 10 से 16 ग्राम कार्ब होने चाहिए एक्स्ट्रा। तो क्या होता है, विटामिन्स भी बहुत जरूरी है, जैसा मैंने आपको बताया। कई लड़कियां खेलकूद में भी दिलचस्पी लेती है, नृत्य जैसी ज्यादातर गतिविधियों में शामिल होती है, तो उनको इससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
1: जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रही है सपना जी। तो बात हम यहाँ पर आपसे ये कर रहे थे, मोटापा जो तेजी से,
0: तो वो ये नहीं समझ पाती कि उनको क्या खाना है। अब क्या होता है, भोजन जो घर पे बना है वो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि वो जब बाहर निकलती हैं, 4 से 5 बजे शाम को वो बाहर हैं, या भोजन के बाद सब दोस्तों के साथ मिलकर बाहर चले गए, घूम रहे हैं, आजकल टीनेजर्स लड़कियां बाहर रहती हैं, तो जो सब खा लेते हैं वो उनको पता नहीं होता। और जंक फूड बहुत अभी चल रहा है बाजार में, बिल्कुल क्रांति हो गई है जंक फूड की।
1: जी बिल्कुल, आपने सही,
0: तो आपने देखा वो स्वाद तो बहुत है उसमें, लेकिन वो शरीर के लिए नुकसानदेह है।
1: जी, जी जी,
0: और देर रात तक जागना ये भी मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो इसमें पोषक तत्व कहीं नहीं होते इन सब चीजों में जो जंक फूड वो ले रही हैं, वो सिर्फ स्वाद है, बाकी वो अतिरिक्त फैट है, जैसे पाम ऑयल नुकसान करता है, मैदा नुकसान करता है, है ना। मैं किसी विशेष तौर पे किसी का भ्रामक प्रचार नहीं कर रही कि मैं उसको नुकसान है तो मैं उसको नीचे गिराऊं, पर उनको समझ होनी चाहिए कि जो घर पे बना भोजन है वो साफ सुथरा है, माँ के हाथ का बना हुआ है, बैलेंस्ड है, सबसे बड़ी बात, तो उसकी उचित मात्रा अगर वो घर से लेके निकल और अपने टिफिन में भी घर का बना हुआ भोजन लेती हैं, तो उनको भूख नहीं लगेगी और वो अनावश्यक भोजन से बच जाएंगी। छोटे छोटे बॉक्सेस उन्हें हमेशा अपने साथ रखने चाहिए, जिसमें गुड़, मूंगफली, गुड़, तिल, चना, मखाने, अंकुरित अनाज, मठरियां, ये हमारा देसी भोजन है जो कभी नुकसान नहीं करता और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इसके साथ टिश्यू रिपेयर भी होता है, प्रोटीन भी मिलता है, शरीर को पर्याप्त प्रोटीन मिलने के बाद भूख कम लगती है और सारे टिश्यू रिपेयर होते हैं तो शरीर को उचित मात्रा में पोषण मिल जाता है। और डाइट ऐसा नहीं होता है कि आज आपने ले लिया या 3 दिन ले लिया, डाइट कर लिया, अच्छे से भोजन कर लिया तो उसका रिजल्ट मिलेगा। कई बबार इन लोगों को धैर्य नहीं होता कि हमने 3-4 दिन तो बहुत कम खा लिया या बैलेंस खा लिया, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ये गलत है। कोई भी एक डाइट जब आप करते हैं, कोई अच्छा भोजन करते हैं, तो उसका रिजल्ट आने में 7 दिन लगते हैं।
1: जी जी,
0: तब फिर अगले 7 दिन आप उसको अपनी आदत में शामिल करते हैं, फिर 15 दिन बाद वो आपकी रूटीन में शामिल होने लगता है और 15 दिन के बाद शरीर में उसके अच्छे असर दिखने लगते हैं।
1: ये तो बात हो गई कि किस तरह का भोजन हो। एक और सवाल मन में आ रहा है कि इस उम्र में क्या क्या डिजीज हो सकती है, ये भी बताएं।
0: जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टीनेजर किशोर वय लड़कियों के लिए, और उन्हें चिंता भी करनी चाहिए इसके लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खून की कमी, पोषण की कमी, कुपोषण जिसे कहते हैं, वो तो है ही, मोटापा भी है और उसके साइड इफेक्ट्स जो है वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन आजकल आम है। किशोर वय लड़कियों में मोटापे की वजह से कई साइड इफेक्ट्स होने लगे हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज आजकल तेजी से फैल रही है हमारे देश में, और इस बीमारी की रोकथाम के लिए भी गहन चिंतन की आवश्यकता है। हर शहर में छोटी उम्र में होने वाली इस डायबिटीज के लिए जागरूकता शिविर अवश्य होने चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो टाइप 1 डायबिटीज से होने वाली आने वाली संतान के लिए शारीरिक और मानसिक खतरा भी हो सकता है। तो चूंकि मोटापा है तो डायबिटीज होना स्वाभाविक है, तो उनको इसके लिए अवेयर करना घर से ही शुरू कर देना चाहिए। जब भी इस तरह के जागरूकता शिविर प्रोग्राम चलते हैं सरकार की तरफ से, हर छोटे शहर गाँव में चल रहे हैं, आप अवश्य जाएं, अपनी माता को भेजें या घर के किसी बड़े सदस्य को भेजें, और वहां पर जो भी वो समझाते हैं

0: को नोट डाउन करें ताकि लड़कियों में मोटापा, डायबिटीज या थायराइड जैसी समस्याएं देखने को न मिले। एक थाली भर जो हमारी हिंदुस्तानी थाली होती है, सभी रंग पाए जाते हैं
1: जी जी,
0: उसमें सारे मिनरल्स और विटामिन्स और प्रोटीन होते हैं। एक थाली में चपाती, दाल, हरी सब्जियां, सलाद, दही, चावल, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यही भोजन हमारे देश का जो भोजन है, ये हमारे शरीर के लिए वरदान है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा सपना जी, विषय से संबंधित आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: सखियो, आहार विशेषज्ञ सपना जैन जी से अभी हमने बहुत अच्छी जानकारी ली, निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी। और आपको एक और प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

सखियों, तितली सा मन उड़ रहा है, बिल्कुल उड़ रहा है, खुशखबरी चारों ओर है। और एक और खुशखबरी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे मी टाइम के माध्यम से। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भित्ति चित्र और म्यूरल आर्ट्स की। सखियों, महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता, आत्म अभिव्यक्ति और सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम है, जी हाँ, ये पारंपरिक कला। जैसे मधुबनी मांडना को आधुनिक रूप देकर महिलाएं जो हैं वो घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाकर आजीविका का साधन बना रही हैं। जी हाँ सखियों, ग्रामीण और शहरी महिलाएं मधुबनी, वर्ली और दूसरे भित्ति चित्र बनाकर अपने हुनर से आजीविका कमा रही हैं। वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। सखियों, भित्ति चित्र के केवल सजावट नहीं बल्कि नारी शक्ति, समानता और सामाजिक मुद्दों पर संदेश देने का जरिया भी है। स्वयं सहायता समूह और एनजीओज इन महिला कलाकारों को काम देकर उन्हें बाजार से जोड़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपनी पारंपरिक कला को दीवारों पर सजाकर संस्कृति को जीवंत रख रही हैं और इसे एक पेशेवर रूप दे रही हैं। इस आर्ट के जरिए महिलाएं न केवल अपना घर चला रही हैं बल्कि समाज में खुद को अभिव्यक्त कर मानसिक रूप से सशक्त बन सम्मानजनक स्थान भी प्राप्त कर रही हैं। तो सोच क्या रही हैं, यदि आपके पास भी ये हुनर है तो इसका सदुपयोग करें। और एक बहुत ही अच्छी जानकारी हम आपको देते हैं। जी हाँ सखियों, इन दिनों घरों की छत, बालकनी, खिड़कियों पर हरी, जी हाँ, जालीदार चादर लगी हुई है, जगह जगह नजर आ रही है। सही कहा ना मैंने? जी हाँ, ये एक बहुत ही कारगर और किफायती देसी जुगाड़ है जो गर्मियों में घर को तेज धूप, लू और अत्यधिक गर्मी से बचाकर ठंडा रखती है। हरी जाली सूरज की तीखी रोशनी को सीधे घर के अंदर नहीं आने देती, इससे घर का तापमान काफी कम बना रहता है। सखियों, वैज्ञानिक रूप से हरा रंग अन्य गहरे रंगों की तुलना में कम गर्मी अवशोषित करता है और ये धूप की गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देता है। सखियों, जब घर प्राकृतिक रूप से ठंडा रहेगा तो कूलर एसी कम चलाने पड़ेंगे। यदि छत पर गार्डन है तो ये हरी जाली पौधों को झुलसाने वाली धूप से बचाती है। कुल मिलाकर सखियों, गर्मी में ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। तो बस इससे आप दोस्ती कर लीजिए। और आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

सखियों, आप घर परिवार की धुरी हैं तो आपके लिए कुछ विशेष हेल्थ टिप्स लेकर आए हैं। जी हाँ सखियों, महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं। परिवार के सभी सदस्य उसकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। ऐसे में महिलाओं को अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा सके। इसके लिए उन्हें नियमित स्वास्थ्य जाँच परीक्षण

चाहिए। पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद, व्यायाम के साथ ही दिन भर में पर्याप्त पानी का सेवन करना चाहिए, जो त्वचा और चयापचय के लिए बहुत जरूरी है। रोजाना 30 मिनट का व्यायाम करें, इससे हृदय स्वास्थ्य और हड्डियां जो है उनको मजबूती मिलती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान करें। रक्त की कमी से बचने के लिए हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, साबुत अनाज, अंकुरित अनाज को शामिल करें और फाइबर युक्त भोजन से तो दोस्ती कर लें। जी हां सखियों, दीर्घकालीन स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। हमें पता है आप अपने परिवार से बहुत प्रेम हैं और उनके खातिर आप अपना ध्यान रखेंगे और इन बातों पर अमल करेंगे। और देखिए, समय इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। हम आपको बता दें, इस रोचक मधुर कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। अब दुर्गेश नंदिनी को दें अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोपाल से प्रसारित किया जाएगा, प्रतीक्षा करें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए चंद्रभूषण पाठक के स्वर में ये बधावा।

छक्की लाल प्रजापति व साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुशाग्र सक्सेना की गाई गजलें।

0: कुशाग्र सक्सेना की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
2: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: पर सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: इस समय आप हैं हमारे साथ।
1: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनिए। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में बोल साहिर के हैं और संगीत है खयाम का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए मजरूह का लिखा और राजेश रोशन का संगीत से सजाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा सहयोग और व्यापार पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हो रही है, इसलिए यह बैठक अहम मानी जा रही है। यूएई के एक वरिष्ठ मंत्री ने प्रधानमंत्री को अपने देश में बेहद सम्मानित नेता बताया।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले साल से परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में होगी। श्री मंत्री ने कहा कि NTA में बड़ी सुधार जरूरी है ताकि भविष्य में धांधली ना हो। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी मेधावी छात्र शिक्षा माफिया की साजिश की वजह से अपने हक से वंचित रह सके।
2: नीट UG का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया, 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। समाज को अपील करना चाहता हूँ, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, आप ही सरकार आप ही के साथ है, आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूँ, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते थे।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और असरदार वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए सभी साझेदारों के साथ काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में बदलाव की सख्त जरूरत है। उनका कहना था कि नई व्यवस्था में विकासशील देशों और उभरते बाजारों की बात सुनी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज उज्जैन में रामघाट पहुंचकर सड़क चौड़ीकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी काम तेजी और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्य उज्जैन को लंबे समय तक फायदा पहुंचाएंगे। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड जवानों के बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ

0: मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके लिए समिति का गठन हो चुका है और उसकी पहली बैठक भी संपन्न हो गई है। श्री यादव ने बताया कि सरकार सभी वर्गों और समाजों से सुझाव लेकर आगे की राह तय करेगी। प्रदेश में आज से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 की शुरुआत हो गई है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने भोपाल के समन्वय भवन में इसका शुभारंभ किया। इस योजना के तहत ओबीसी वर्ग के 4000 युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। देवास के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल दिल्ली से सीधे इंदौर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने चोइथराम एमवाय और अमलतास अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को निःशुल्क इलाज देने के निर्देश दिए। कल सुबह हुए इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई थी। आईपीएल में कल मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। वहीं आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ में होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के अधिकांश हिस्से इन दिनों भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 4 दिनों तक गर्मी का अलर्ट जारी किया है। आगर मालवा में श्रम विभाग द्वारा कल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम योगी मानधन योजना के पंजीयन किए गए। झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति की बैठक हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
1: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो NTA ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि NTA में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल

0: धन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म साजन से। आवाज अनुराधा पौडवाल की है, गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म साजन का ये गीत।

बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमड़े, वैष्णवी, चंचल और अर्जुन, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म फूल और कांटे का अलका याग्निक और कुमार सानू का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में लीजिए अब सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ों में फिल्म रोज़ा का गीत। बोल पी के मिश्रा के हैं और संगीत है एआर रहमान का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता ने।

पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप राजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सुनना चाहते हैं फिल्म मन का उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में गाया हुआ गीत। गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीत से सजाया है संजीव दर्शन ने। लीजिए सुनिए।

ग्राम फ्रांसीसी से राजकुमार डुड्डी, सरजीत सिंह, प्रमोद कुमार, हांसी शहर से राजू बबीता, सुभाष योगी बब्बू डब्बू, दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म कसूर का ये गीत। आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की हैं, बोल समीर के हैं और इसे संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। लीजिए सुनिए।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा सहयोग पर, व्यापार पर चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले साल से परीक्षा कम्प्यूटर आधारित यानी CBT मोड में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और असरदार वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए सभी साझेदारों के साथ काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में बदलाव की सख्त जरूरत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में रामघाट पहुंचकर सड़क चौड़ीकरण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी काम तेजी और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके लिए समिति का गठन हो चुका है, उसकी पहली बैठक भी सम्पन्न हो गई है। प्रदेश में आज से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 की शुरुआत हो गई है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने भोपाल के समन्वय भवन में इसका शुभारंभ किया। प्रदेश के अधिकांश हिस्से इन दिनों भीषण लू की चपेट में है। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 4 दिन तक गर्मी का अलर्ट जारी किया है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:00। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा सुनिएगा शाम 7:21 पर। आज इसमें आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीत और आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। रात 8:00 सुनिएगा सुर्खियों में कार्यक्रम खेल जगत के अंतर्गत। रात 9:30 पर आप सुनेंगे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे देवेंद्र खुराना। रात 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी आप सुनेंगे रात 10:30 पर। इसके अंतर्गत सुनिएगा पंडित गोपाल शंकर मिश्रा का राग जयंत मल्हार में सितार वादन। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे अपने विविध कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी इंदौर है। शाम के 5 बजे ही हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आज क्या क्या विशेष टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तो राज, बताओ आज पहला टॉपिक क्या होने वाला है।
1: दोस्तों, जिस परिवार की छत्र छाया में हम बढ़कर पलकर बड़े होते हैं, तो आज उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानने का दिन भी है और उन सबको सेलिब्रेट कर परिवार के जो जन होते हैं उनको भी जानने का आज विशेष दिन है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। दूसरी बात, आज है शुक्रवार, तो आज हम आपसे बात करते हैं विज्ञान के बारे में। तो हम आपके लिए लाए हैं ढेर सारे रोचक इंसिडेंसेस जो अभी हुए हैं हमारे अंतरिक्ष में। और इसी के साथ मैं तो हूँ ही आपकी रेडियो दोस्त माधवी और ये है आपका रेडियो दोस्त
1: राज।
0: अब कार्यक्रम की शुरुआत में, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपसे पूछते हैं दो प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है,
1: दोस्तों हमारे सबसे निकट का तारा कौन सा है।
0: और जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि
1: चांद पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाता है। हम एक बार पुनः दोहरा देते हैं, हमारे सबसे निकट का तारा कौन सा है, और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि चांद पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाता है। उम्मीद है कि इन दोनों प्रश्नों को आप अंत तक खोज कर रखेंगे और सही उत्तर भी ढूंढ ही लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम की अगले गीत की ओर, उससे सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया, आज का दिन परिवार के लिए बहुत खास है। और वो खास इसीलिए है क्योंकि आज हम मनाएंगे एक बहुत ही यूनिक लेकिन बहुत अहम दिन।
1: दोस्तों, सच कहूं तो माधवी, मुझे लगता है कि अक्सर अपने सपनों, काम और भाग दौड़ में हम इतना खो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि हमारी असली ताकत तो हमारा परिवार ही है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो तुम राज, परिवार है तो सब कुछ है। अगर परिवार है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई है। आज सुबह जब मैं सबको साथ बैठकर चाय पीते हुए देख रही थी ना, तो अचानक मुझे ये महसूस हुआ कि परिवार से खूबसूरत चीज़ शायद इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती।
1: बिल्कुल ठीक। और शायद यही भावना हमको याद दिलाती है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, ताकि हम लोगों के बीच में बैठें और हमारे बुजुर्गों से बात करें, छोटे बड़े को स्नेह दें और जितनी भी पुरानी शरारतें हैं उनको याद रखें।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो। तो दोस्तों, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, यानी कि परिवार दिवस। और इसे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग समझें कि परिवार सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं है, बल्कि भावनाओं का घर भी है।
1: बिल्कुल ठीक। जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है, तब हर एक जगह उसे ऐसा महसूस होता है कि कहाँ बैठा जाए, कहाँ किससे बात की जाए, और बिना शर्त के, बिना किसी झिझक के, तो मुझे लगता है वो एक परिवार ही होता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे याद है बचपन में जब मैं उदास होती थी, मम्मी बिना कुछ पूछे बस मेरे पास बैठ जाती थी। कभी-कभी शब्दों से ज़्यादा सुकून मिलना बहुत ज़रूरी।

0: संस्कार भी हम में पल बढ़ जाते हैं।
1: और सच कहूँ तो सबसे सुंदर बात तो ये लगती है मुझे हिंदू संस्कृति में कि माता पिता को भगवान के समान माना जाता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि भावनाएं भी हैं।
0: हाँ, सही कहा तुमने। और परिवार हमें ये सिखाता है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि अपने प्रेम और विश्वास से बनते हैं।
1: आजकल लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत अपने परिवार की ही होती है।
0: बिल्कुल ठीक। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, घर लौटकर अगर अपने लोग मुस्कुराकर पूछ लें दिन कैसा था, कुछ सब कुछ ठीक तो है ना, तो सारी थकान खत्म सी हो जाती है।
1: और परिवार सिर्फ खुशी में साथ नहीं होता बल्कि मुश्किल के समय में भी सबसे पहले कोई खड़ा होता है, तो वो हमारा परिवार होता है।
0: यही तो है परिवार की खूबसूरती, वहां प्यार साबित नहीं करना पड़ता, बस महसूस सा हो जाता है।
1: कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम अपने माता पिता को थैंक यू बहुत कम कहते हैं। शायद हम ये सोच लेते हैं कि जो ये कर रहे हैं वो तो नॉर्मल है, या हमने बचपन से इस चीज़ को देखा है कि हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ करते हैं, तो हमने उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना चालू कर दिया है। जबकि हमारी हर छोटी से छोटी खुशी के पीछे उनका कितना बड़ा योगदान होता है वो तो हम सब जानते ही हैं।
0: मुझे लगता है कि इन बातों को सभी को, जितने युवा हैं उन सभी को कभी कभी बैठकर गहराई से सोचना चाहिए कि कितना ये सब कितना महत्वपूर्ण है, और उन्होंने अपने कई सारे सपने हमारे लिए त्याग से दिए हैं ताकि हम उस सपनों को अचीव कर सकें।
1: और राज, मुझे लगता है इसीलिए इंटरनेशनल फैमिली डे सिर्फ एक दिन नहीं है बल्कि अपने परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा अवसर है।
0: बिल्कुल ठीक। हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए साथियों, और उनसे खुलकर बात करनी चाहिए, और उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि हमारे लिए वे कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं।
1: क्योंकि आखिर में जीवन की सबसे कीमती यादें परिवार के साथ बिताए गए वही छोटे छोटे पल होते हैं
0: और
1: जो
0: शायद
1: बाद
0: मुझे
1: में
0: लगता है
1: चल
0: कि
1: के बहुत बड़े हो जाते
0: हाँ,
1: हैं।
0: और मुझे शायद लगता है कि हम कितने भी संबंध बना लें, सच्ची दौलत तो हमारे परिवार ही है। क्योंकि जब कठिन समय आता है ना माधवी हमारे जीवन में, तो जब दो हमारे जो दोस्त हैं, कई सारे कलीग्स हैं, जब सब जगह के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि माता पिता या फिर अंकल आंटी भुआ फूफा, मतलब एक बिल्कुल सहारा बनकर हमारे जीवन में खड़े से हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही है। मैं तो पर्सनली सच में अपने परिवार के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। हर परिस्थिति में उन्होंने मुझे बहुत संभाला है, समझाया है और बिना शर्त बहुत सारा प्यार दिया है।
0: और मैं भी, और शायद हम सभी, और शायद मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि ऐसा परिवार जहां आप जैसे हैं वैसे स्वीकार के लिए कर लिए जाएं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं परिवर्तन यानी कि बदलाव के बारे में। तो राज, क्या तुम्हें लगता है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज अगर कुछ है तो वो बदलाव को स्वीकार करना है?
5: हाँ, इंसान अपनी आदतों, लोगों और माहौल से इतना जुड़ जाता है कि जब अचानक कोई बड़ा बदलाव हमारे जीवन में होता है तो सब कुछ अस्थिर सा लगने लग जाता है।
4: हाँ, ऐसा लगता है ना, जैसे नई जगह जाना, नया घर, किसी अपने से दूर हो जाना, नई नौकरी ले लेना, अचानक जिम्मेदारियों का बढ़ जाना, ये सब अंदर से बहुत कुछ बदल के रख देता है।
5: हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। और सबसे बड़ी बात ये है माधवी, कि बाहर से लोग सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान बहुत कुछ महसूस कर रहा होता है उस समय।
4: बिल्कुल सही कहा तुमने। बदलाव के समय अक्सर लोगों को डर लगता है, अकेलापन होता है और अनसर्टेनिटी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि वो पहले जैसी जिंदगी को मिस कर रहे हैं।
5: क्योंकि इंसान नेचुरली कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। जब जिंदगी अचानक नई दिशा में जाने लगती है तो मन उसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता।
4: और कभी कभी लोग खुद को दोष देने लगते हैं कि शायद वे इतने स्ट्रांग नहीं हैं, जबकि असल में बदलाव को अपनाने में समय लगना बिल्कुल सामान्य सी बात है।
5: हाँ बिल्कुल, और हर इंसान चेंज को अलग तरीके से हैंडल करता है। कुछ लोग जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं और कुछ लोग को थोड़ा समय लगता है और धीरे धीरे परिवर्तन फिर हो ही जाता है।
4: मुझे लगता है कि ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरत सपोर्ट की होती है। अगर आसपास के लोग समझदारी और प्यार के साथ आपका साथ दें तो इंसान धीरे धीरे खुद को संभाल ही लेता है।
5: हाँ, वो कई बार किसी को एडवाइस से ज्यादा यह सुनने की जरूरत होती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर पल तुम्हारे साथ बिल्कुल कांधे से कांधा मिलाकर साथ देता रहूंगा।
4: सच में, जब कोई बिना जज किए हमारी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता है और साथ में हमें कंफर्टेबल फील कराता है तो दिल थोड़ा सा हल्का हो जाता है।
5: हाँ, और लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हर बदलाव तुरंत खुशी नहीं देता, कभी कभी अच्छी चीजों के साथ इमोशनल स्ट्रगल आता ही आता है।
4: जैसे किसी का सपना पूरा हो जाए लेकिन उसी के साथ उसे अपना घर, अपने लोग या पुरानी जिंदगी छोड़नी पड़े, जो कि कई तौर पे रोजमर्रा की जिंदगी में देखा जाता है कि कई बच्चों का सपना होता है बाहर जाके विदेश में पढ़ने का। उनका वो सपना पूरा हो भी जाता है लेकिन उसके साथ साथ जो चुनौतियां आती है वो ये होती हैं कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़नी पड़ेगी। तो खुशी के साथ साथ सैडनेस का होना स्वाभाविक ही है।
5: इसलिए बदलाव से गुजर रहे इंसान को बार बार तुम्हें खुश होना चाहिए कहने की बजाय उनकी भावनाओं को समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है इस समय।
4: और छोटी छोटी चीजें भी बहुत मदद करती हैं, जैसे उनसे खुलकर बात करना, उनको हल्का फील कराना, उनके हाल चाल को पूछना, उन्हें अकेला महसूस ना होने देना। ये ऐसे देखा जाए तो काफी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है।
5: बिल्कुल ठीक, क्योंकि चेंज के समय इंसान को यह एहसास होना चाहिए कि वो अकेला बिल्कुल नहीं है।
4: मुझे लगता है कि खुद को समय देना भी बहुत जरूरी है। हर चीज एक दिन में नॉर्मल नहीं होती, कई चीजों को बहुत समय लगता है और उस समय के साथ आपको अपने आप को जोड़ना पड़ेगा।
5: ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, धीरे धीरे नई जगह, नए लोग और नई परिस्थितियां भी अपने से लगने ही लग जाती हैं।
4: और शायद जिंदगी का सच भी यही है, बदलाव हमेशा आसान नहीं होता लेकिन वही हमें और मजबूत बनाता है।
5: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और कभी कभी जिन बदलावों से हम सबसे ज्यादा डर जाते हैं या फिर डरने लग जाते हैं, वही आगे चलकर हमें जीवन के सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं।
4: इसलिए हमें खुद के साथ थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और दूसरों को उस इंसान के साथ थोड़ा ज्यादा और प्रेम और काइंडनेस रखनी चाहिए।
5: क्योंकि दोस्तों, किसी की जिंदगी में चल रही लड़ाई हमेशा बाहर से दिखाई देती है, भीतर से बिल्कुल नहीं।
4: और शायद प्यार और अपनापन ही वो एक चाबी है जो हर बदलाव को थोड़ा आसान बनाने में मदद करती है।
5: हाँ, और जब अपने लोग साथ हो तो नई शुरुआत इतनी डरावनी बिल्कुल नहीं लगती।
4: बदलाव जीवन का हिस्सा है, समय, धैर्य, प्रेम और अपनों का साथ हर मुश्किल बदलाव को आसान बना देता है।

0: तो दोस्तों, बाहर धूप और गर्मी कितनी पड़ रही है ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन राज, आज का विषय गर्मी नहीं है, आज का विषय है गर्मी की छुट्टियाँ। तो गर्मी की छुट्टियों का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या याद आती है? मुझे तो बचपन याद आता है।
1: मुझे लगता है देर तक सोते रहना। खैर, वो देर तक बातें करना, सोते रहना, सुबह बिना अलार्म के उठना, आम खाना और कजिन के साथ पूरा दिन मस्ती करना, गर्मियों का अलग ही एक मजा होता है।
0: और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि इस मौसम में परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिल जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि दिन बहुत बड़ा है और अंदर बैठकर सुकून से समय बिताया जा सकता है।
1: मुझे लगता है कि समर सिर्फ छुट्टियां का एक नाम नहीं है, बल्कि यादें बनाने का भी एक बेहतर मौसम है।
0: जैसे फैमिली ट्रिप्स, पहाड़ों पे जाना, किसी शांत सी जगह पर वेकेशन प्लान करना, या फिर अपने गांव जाकर दादा दादी के पास समय बिताना, या किसी दूर दराज के रिलेटिव से मिलने चले जाना।
1: मुझे तो सबसे अच्छा यही लगेगा कि हम गांव जाएं और नदी तालाबों में छलांग मारकर खूब वाटर पार्क की जगह तालाब में मजा लें, आम की केरी खाएं और इमली तोड़ें पत्थर मारकर, जो कि आज के दौर में बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। और रोड ट्रिप भी कर सकते हैं, कार में गाने चलाना चाहिए, रास्ते में चाय और स्नैक्स के लिए रुकना चाहिए। वो छोटी छोटी चीज़ें ही बाद में सबसे खूबसूरत यादें बन जाती है।
0: सच में। और जो लोग बाहर नहीं जा पाते, वो घर पर ही फैमिली टाइम को बहुत स्पेशल बना सकते हैं। जैसे मूवी नाइट्स प्लान करना, फन गेम्स खेलना, बहुत सारी नई नई डिशेस साथ में मिलकर बनाना, ये सब में बहुत मज़ा आता है।
1: और जब से इंटरनेट आया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा आया, जब से हम सब फैमिली मेंबर जो बैठकर कभी शाम में या फिर खाना खाने के बाद छत पर कुछ बातें करते थे, सारे मेंबर्स इकट्ठे हो से जाते थे और 1-2 घंटा बिल्कुल छत पर या फिर घर के आंगन में बात करते थे, वो बिल्कुल समय थोड़ा ख़त्म सा होता जा रहा है। तो मुझे लगता है टेरेस पर रात में बैठ कर बातें करना, साथ में खाना बनाना या फिर खाना खाना, और पुराने फोटो एल्बम्स को देखना, फैमिली मूवी नाइट्स रखना, ये आज के दौर में भी आज भी जरूरी है।
0: मुझे तो भाई गर्मियों में आम रस, शिकंजी, ठंडी लस्सी और सबसे इम्पोर्टेंट आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है।
1: और फिर सब कहते हैं कि कल से हेल्थी खाना भी शुरू करेंगे, इन सब के बावजूद।
0: और गर्मियों में लोग खुद को फ्रेश रखने के लिए स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक्स पे भी जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ही चीज़ें हैं जो गर्मियों में आपको एक्टिव कर सकती हैं। सुबह और शाम के समय में बाहर निकलें और दिन में निकलना अवॉइड करें।
1: और कई लोग इस समय नई हॉबीज भी शुरू कर देते हैं, जैसे पेंटिंग बनाना, खाना बनाना सीखना, गिटार सीखना, या फिर गार्डनिंग या फिर कुकिंग, कुछ भी हो सकता है वो।
0: मुझे लगता है समर्स सेल्फ ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि थोड़ी शांति मिलती है और इंसान अपने लिए समय निकाल पाता है।
1: सही कहा, कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं, कुछ योगा करते हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ छोटी छोटी आउटिंग प्लान करते हैं।

0: और बच्चों के लिए तो समर कैंप्स बहुत फन होते हैं। जैसे जब मैं बच्ची थी, मैं तो वेट करती की थी कि समर कैंप कब लगेगा और इन्जॉयमेंट कब हो पाएगा। वहाँ उन्हें नए दोस्त मिलते हैं और खासकर नई नई चीज़ें जो पहले कभी नहीं सुनी वो सीखने को मिलती हैं।
1: सच में मुझे याद है माधवी, बचपन में हम शाम होते ही बाहर खेलने भाग जाते थे, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, हाइड एंड सीक। तब मोबाइल फोन्स का इतना क्रेज बिल्कुल नहीं था जो अब है।
0: हाँ, और शायद इसीलिए वो समर्स ज़्यादा यादगार लगते थे क्योंकि उनमें लोग ज़्यादा थे और स्क्रीन्स कम।
1: वो बिल्कुल, मुझे लगता है कि गर्मियों को खास बनाने के लिए बड़े प्लान्स नहीं बल्कि अपने उस अपनों का साथ और उनके साथ बैठकर बतियाना, यही जरूरी हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। कभी कभी सिर्फ फैमिली के साथ बैठकर हंसना, बातें करना और बिना किसी जल्दी के समय बिताना बहुत खुशी दे जाता है।
1: बिल्कुल, और आज आज इंटरनेशनल फैमिली डे भी है, तो हम हमारे सभी साथियों से यही दरख्वास्त करेंगे कि वो स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम कर दें, करें पर कम कर दें, और दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ बैठें, कजन्स के साथ बैठें और मीठी मीठी बातें करें। तुम क्या कहती हो?
0: बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। लेट नाइट कॉन्वर्जेशंस, फैमिली के साथ बाहर जाना, सनसेट देखना, बैठे बैठे अचानक से आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाना, यही तो वो सारी मेमोरीज हैं जो हमें हमारे परिवार के पास ले जाती हैं।
1: और मुझे लगता है कि समर्स हमें जिंदगी को थोड़ा स्लोली एंजॉय करना सिखाता है। क्या क्या कहते हो तुम इस बारे में?
0: बिल्कुल, क्योंकि साल भर की भाग दौड़ में हम खुद को और अपने लोगों को समय देना भूल जाते हैं, तो इसीलिए हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि समर्स में कुछ ऐसी यादें बनाई जाए जो सालों बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कान दे जाए।
1: हाँ, क्योंकि साथियों आखिर में हमें जगह नहीं बल्कि लोगों के साथ बिताए हुए पल हमेशा याद रहते हैं।
0: अब राज, मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी सिर्फ मौसम नहीं है बल्कि अपनों के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों की यादों को संजो के रखने का सबसे प्यारा एहसास है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि इन समर्स को बहुत इन्जॉय कीजिए, गर्मियों में बाहर मत निकलिए, अंदर रहिए अपने घरों में, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और परिवार के साथ समय बिताइए।
1: बिल्कुल।

0: दोस्तों, जहाँ चाह होती है वहाँ राह खुद ब खुद बन जाती है। आज की हमारी खास प्रस्तुति एक ऐसी ही युवा खिलाड़ी पर आधारित है जिसने अपने जुनून, मेहनत और दृढ़ संकल्प से असंभव को संभव कर दिखाया है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की भिवानी जिले के छोटे से गांव धनाना की बेटी, भारतीय सेना में हवलदार पद पर कार्यरत और देश की उभरती हुई मुक्केबाज साक्षी चौधरी ढांडा की।
1: श्रोताओं, हाल ही में पटियाला में आयोजित चयन ट्रायल में साक्षी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर किया है। ये उपलब्धि इसलिए और भी खास बन जाती है क्योंकि उन्होंने 50 किलोग्राम भार वर्ग में देश की जानी मानी मुक्केबाज निखत जरीन और रेलवे की मजबूत खिलाड़ी मीनाक्षी हुड्डा को हरा कर अपनी जगह बनाई है।
0: अब साक्षी 2026 में स्कॉटलैंड में ग्लासगो शहर में होने वाली राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके साथ ये प्रतियोगिता 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी, जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी शामिल होंगे।
1: अगर हम साक्षी की उपलब्धियों पर नजर डालें तो उनका सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। वर्ष 2025 में कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। वे 2 बार यूथ वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं।
0: साथियों, इसके अलावा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। घरेलू स्तर पर 8 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं वे।
1: और इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।
0: दोस्तों, हर सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है। साक्षी का सफर भी कुछ ऐसा ही रहा है। उन्होंने साल 2012 में द्रोणाचार्य अवार्डी कोच जगदीश के मार्गदर्शन में मुक्केबाजी की शुरुआत की थी।
1: एक छोटे से गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन साक्षी ने अपने हौसले को कभी कमजोर नहीं होने दिया।
0: साक्षी ने वर्ष 2015 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उसी के साथ 2017 और 2018 में 18 में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगातार गोल्ड जीतकर अपनी अलग पहचान बनाई
1: और 2021 में एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी हासिल किया।
0: श्रोताओं, साक्षी का जीवन सिर्फ रिंग तक सीमित नहीं है। वे एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। उनके पिता मनोज कुमार खेती करते हैं और माँ शीला देवी गृहिणी हैं और उनके छोटे भाई भारतीय सेना में मेजर हैं। तो आइए हम सभी उनकी उपलब्धि पर खुशियाँ मनाएं और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं भी दें।

0: दोस्तों, ये थी आज की खेल जगत की कुछ मुख्य खबरें। अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का, पर आप सभी को याद है कि हमने प्रोग्राम के शुरुआत में आपसे दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे थे। उम्मीद है आपने उन दोनों प्रश्नों को खोज लिया होगा। अगर नहीं भी खोजा है तो आइए हम उनके सही उत्तर बता देते हैं। साथियों, हमारा आज का पहला प्रश्न था, हमारे सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो उसका सही उत्तर है सन। सन पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है।
1: दोस्तों, आज का हमारा जो दूसरा सवाल था वो ये था कि चांद पृथ्वी को पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाता है। तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि ये चांद को लगभग 25, 26 और 27 27 दिन लगते हैं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इन सवालों के जवाब ढूंढ लिए होंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त माधवी।
0: और मैं हूं आपका होस्ट संतोष राज।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी इंदौर है। फिल्म संगीत लीजिए, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं जुल्मी फिल्म का गीत, कुमार सानू आशा भोसले की आवाज में, गुंशल बावरा का लिखा ये गीत है।

अनोखी अदा, यह है फिल्म का नाम। आवाज किशोर कुमार की। शब्दकार हैं मजरूह, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फिर वही दिल लाया हूं। इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। इसे लिखा है मजरूह ने, धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

0: ख्यालों की मलिका।
1: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
3: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
3: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
3: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
3: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
3: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
3: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
3: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
3: जी, और हाँ श्रोताओ, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
3: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई न कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
3: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
3: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
3: जैसे
2: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
3: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
2: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
3: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
2: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है, और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
4: अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं था था कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थातू बुलाती हूँ। कभी कभी थातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थातू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाता खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
5: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
4: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थातू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थातू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थातू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
5: अब सो जाओ।
4: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई?
4: हाँ
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
2: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
2: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
5: सैनिक

0: भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
1: जी सुबेदार साहब।
0: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
1: जी सुबेदार साहब।
0: बोले सोनिहा
1: सत श्री अकाल।
2: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
3: तेजा सिंह, और चाय तो बना दे यार, सवेर होगी।
4: ऐसा
0: ओए वो फायर आ रहा है।

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के लहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह। आज सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
5: वंस अपॉन अ टाइम, नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, देयर वाज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। although he wasn't very big, he was strong. And he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin.
6: So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited.
5: On that day, the sun shone bright, and all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands, they raced hand in hand, but nobody took Hari's hand. Nobody went near him.
6: Hari was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake, and a bar of chocolate. He would eat it all by himself. He wouldn't offer anything to anyone. Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him.
7: Good morning. I am so pleased to meet a boy like you.
6: Hari turned around and stared in fright. Whatever do you think he saw? Hari saw a monster crab walking sideways out of the pool. His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. He held out his front claw to Hari. Hari put out his hand to shake the crab's claw. But to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled.
7: "Here is my good cousin,"
6: said the crab pleasantly. And to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain. Then he stared at the pool in surprise, for out come sandy-colored shrimps and prawns, more crabs, and another large lobster, and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching. "Don't you like it?" said all the creatures in surprise. "Why, we were told you would love to see us because you were a champion pincher and picker yourself. Come, come, join in the fun." Hari leapt to his feet, crying loudly. His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. Hari saw that they had forgotten him for a time. So he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. "They only did to me what I keep doing to the other children," he thought. "But how it hurt, and how I hated those crabs and lobsters. I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well shan't pinch or prick anymore."
4: तो श्रोताओं, अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर होता है समाप्त। तो अब अपने मित्र अजीत को
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग।
10: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग, ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए चंचल भारती और साथियों की आवाज में ये कव्वाली।

चंचल भारती और साथियों की आवाज में गाई इस कव्वाली के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है। लोक संगीत लीजिए। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में सुनिए चंद्र प्रकाश हीरालाल सोनवे की आवाज में ये लोक रचना है।

चंद्र प्रकाश हीरलाल सोनवे की आवाज में ही सुनिए एक और नेमाड़ी लोक रचना। गंगा।

लोक संगीत में आप सुन रहे हैं निमाड़ी लोक रचनाएं। आइए हम आपको सुनवाते हैं चंद्र प्रकाश हीरलाल सोनवे और साथियों की आवाज में ही एक और निमाड़ी लोक रचना।

0: चंद्र प्रकाश हिरलाल सोनवे की आवाज में गाई इस मालवी क्षमा कीजिए निमाड़ी लोक रचना के साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है, 7 बजा चाहते हैं समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये बातचीत पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विनम्र का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन के सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद के लिए तैयार है। श्री अराक्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मॉनसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सबसे पहले केरलम में आता है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युईची शिमोगामी को 21-12, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी इंदौर है। प्रस्तुत है आज के सभा के शेष कार्यक्रम और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज की सभा के शेष कार्यक्रम।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 बजे सुनिएगा विदुषी गंगूबाई दंगल का गाया राग यमन। रात 9:30 बजे श्रोताओं आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम होगा मन भावन। 8:15 बजे हम आपको सुनवाएंगे दिल ने फिर याद किया। सुर्खियों में ये कार्यक्रम

खेती गृहस्थी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:20 से। इसमें आज सुनिएगा जायद और ग्रीष्मकालीन फसलों पर अंतिम पटेल से सुनीता पंडित की बातचीत। अंतिम पटेल जो कि एक प्रगतिशील कृषक हैं। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम, और अब लीजिए सुनिए कल के मुख्य कार्यक्रम।

संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात 9:30 बजे राष्ट्रीय चित्र पत्रिका चित्र भारती दिल्ली से रिले की जाएगी। सुर्खियों में, यह कार्यक्रम रात 8 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा।

दिल ने फिर याद किया। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 8:15 बजे। शाम 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम में सुनिएगा परिरक्षित फल सब्जियों का उपयोग एवं टिकाऊपन। इस विषय पर डॉक्टर अंकित पांडे की वार्ता सुनिएगा। इसी कार्यक्रम में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द फसलों में प्रमुख रोग एवं कीट समेकित प्रबंधन, इस विषय पर बातचीत होगी डॉक्टर बबली पादप रोग विशेषज्ञ से।

0: शाम 6 बजे सुनिएगा विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। इसमें कल आप सुनेंगे क्रांतिकारी उपकरण ड्रोन तकनीक का कृषि में योगदान। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे जयश्री गुप्ता की गाई रचनाएं आप सुन सकते हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में कालूराम बामनिया और साथियों की गाई लोक रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे। प्रसारण समय होगा शाम 6:45 पर। हर रोज की तरह युवावाणी कार्यक्रम का प्रसारण समय शाम 5 बजे से। सुबह 10:05 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा MH हॉटलाइन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सितार पर बजाया राग ललित होगा। कलाकार होंगे आयुष मोरोने। समय सुबह 9:30 से। सुबह 9 बजे लोक संगीत के कार्यक्रम में कल के कलाकार होंगे प्रीति भार्गव और साथी। सुगम संगीत में सुबह 9:15 कलाकार होंगी नीलम साहनी। ये थे श्रोताओं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी
1: सुर्खियों में

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के विदेश दौरे पर यूएई के साथ

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे पर आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने पीएम के विमान को सुरक्षा घेरा दिया। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ साथ $5 अरब के निवेश पर सहमति बनी। एलपीजी आपूर्ति, पेट्रोलियम रिजर्व और गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयरिंग क्लस्टर बनाने के समझौते भी हुए। श्री मोदी ने कहा कि भारत हर हाल में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। धार की भोजशाला को लेकर आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भोजशाला को हिंदू मंदिर घोषित कर दिया है। पूरी जानकारी दे रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे।
1: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला और न्यायाधीश आलोक अवस्थी की युगल पीठ ने धार भोजशाला परिसर मामले में कहा कि संरचना का धार्मिक स्वरूप एक मंदिर का है और मुसलमान मस्जिद की वैकल्पिक भूमि के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐतिहासिक, साहित्यिक और पुरातात्विक संदर्भों से सिद्ध होता है कि यह स्थल संस्कृत शिक्षा का केंद्र था और यहां देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर भी मौजूद था। न्यायालय ने अपने इस फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भोजशाला परिसर के 98 दिनों के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और उच्चतम न्यायालय के अयोध्या मामले में फैसले को भी आधार बनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1958 एक्ट के तहत इस धरोहर की संपत्ति का समग्र प्रशासन और प्रबंधन ASI के हाथ में ही रहेगा। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर।
0: उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने धार के भोजशाला पर आए हाईकोर्ट के फैसले पर कहा है कि भोजशाला का निर्माण महान राजा भोज ने अपने कार्यकाल में किया था और ये सर्वविदित सत्य है। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है, मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूं। वहीं धार जिला प्रशासन द्वारा भी भोजशाला स्मारक को लेकर आए निर्णय को देखते हुए शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ADPO भर्ती से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई जबलपुर में एक साथ करने का फैसला किया है। इंदौर और ग्वालियर की पीठों में लंबित याचिकाएं अब जबलपुर ट्रांसफर होंगी। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती विज्ञापन में 40 साल की उम्र सीमा को चुनौती दी है। अगली सुनवाई जून के आखिरी हफ्ते में होगी। पेट्रोल और डीजल के दाम आज से 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। करीब 2 साल बाद ईंधन की कीमतों में ये बढ़ोतरी की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि जब दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल 20 से 100% तक महंगा हुआ है, तब भारत ने सिर्फ 3.2 और 3.4% की मामूली बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि सरकारी तेल कंपनियों ने हफ्तों तक घाटा सहकर आम लोगों को महंगाई से बचाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में रामघाट पहुंचकर सड़क चौड़ीकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को काम तेजी और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्य उज्जैन को लंबे समय तक फायदा पहुंचाएंगे। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड जवानों के बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया। 250 जवानों को डीप डाइविंग और अंडर वाटर रेस्क्यू समेत 15 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है।
2: हमारे कामों को करते हुए जनता की सुविधाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हम सब इन सारी चीजों को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने इस सारे निर्माण कार्य का दूरगामी दृष्टि से लंबे समय तक शहर को भी लाभ मिले, दर्शनार्थी, श्रद्धालु। ये ऐतिहासिक नगरी भी है, पौराणिक नगरी। ऐसे में मुझे इस बात का भी संतोष है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, यहाँ की जनता भी, प्रशासन भी सब मिलकर भावना से लगे, श्रद्धा से लगे। सरकार का मुखिया होने के नाते से इसका अभिनंदन भी करता हूँ और उज्जैन का विधायक होने से अपने आप पे हमारी अपनी कामों के प्रति गर्व और गौरव का अनुभूति भी होती
3: है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि NEET UG 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले साल से यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में होगी। मंत्री ने कहा है कि NTA में बड़े सुधार जरूरी है ताकि भविष्य में धांधली न हो। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती

कोई भी मेधावी छात्र शिक्षा माफिया की साजिश की वजह से अपने हक से वंचित रहे। प्रदेश में 75 लाख मेट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हो चुकी है। बंपर पैदावार को देखते हुए केंद्र सरकार ने खरीदी लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख मेट्रिक टन कर दिया है। इस सीजन में रिकॉर्ड 19 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में आज 2 और मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया। इसके साथ ही यहां खुले जंगल में विचरण करने वाले चीतों की संख्या 16 हो गई है। ये दोनों फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में से एक हैं। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर की थी। उन्होंने खुद नामीबिया से लाए गए पहले 8 चीतों को छोड़ा था। चीता परियोजना के फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि सभी चीते स्वस्थ हैं और जंगल में अच्छी तरह ढल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। अब भोपाल में होने वाली सभी बैठकें ऑनलाइन मोड में होंगी। दूर दराज से आने वाले अधिकारी कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन बैठकों में शामिल होंगे। इसके साथ ही विभागीय जांच और पेशियां भी अब ऑनलाइन ही होंगी। भोपाल में श्यामला हिल्स स्थित मानस भवन में भोपाल मुद्रा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये एक राष्ट्रीय स्तर की मुद्रा प्रदर्शनी है। 17 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक लोग दुर्लभ और प्राचीन सिक्के देख सकते हैं। उज्जैन जिले के नलखेड़ा गांव के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निकिता शर्मा ने 9 गंभीर कुपोषित बच्चों को स्वस्थ कर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने IIT मुंबई की टीम से 5 दिन की विशेष ट्रेनिंग लेकर ये काम शुरू किया। निकिता रोज घर घर जाकर माताओं को सही स्तनपान और पोषण के बारे में समझाती थी। उनके इस काम को देखते हुए महिला और बाल विकास विभाग ने उन्हें उज्जैन जिले की पहली मास्टर ट्रेनर बनाया है। भोपाल के उधदास मेहता सेंट्रल सेंटर में आज से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-18 हॉकी सीरीज शुरू हो गई है। ये सीरीज 20 मई तक चलेगी। इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों के मुकाबले खेले जाएंगे। दूसरी तरफ IPL में कुछ ही देर बाद लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आगामी सिंहस्थ पर्व की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गुना कलेक्टर ने प्रतिमाह आयोजित होने वाले युवा संगम कार्यक्रम की विस्तृत कार्ययोजना की समीक्षा की। शिवपुरी में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए जनसंपर्क अभियान कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी मानसून के पूर्व बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारियों के तहत आगरमालवा स्थित मोती सागर तालाब में SDRF और होमगार्ड के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अशोकनगर जिले में ई टोकन से उर्वरक न देने पर 2 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन जारी है। अब तक 381,567 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी इंदौर है। किसान भाई सुने अपना मनपसंद कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाई बिरना का प्रियंका की राम राम। भाई बिरना, खेती बाड़ी का कामकाज में कब किन्हीं चीज की जरूरत पड़ी जाए कहीं नहीं की सकता।

कदी खाद लाणो है, कदी उत्तम बीज तो कदी कीटनाशक लाणो है। पैसा की तंगी का कारण हमारी खेती नीस अपनी जो खेती बाड़ी का काम काज है इनका शुरू शासन ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी है। एक असो कार्ड जो खेती की हर छोटी बड़ी जरूरत का पूरा करने का लिए सबसे बेहतरीन जरियो है। इना कार्ड को फायदो केवल फसल उगाने का लिए ही नहीं है बल्कि पशुपालन डेयरी और मछली पालन का लिए भी मिली रियो है। अब तुम सोच ही रहा होगा कि भाई लोन तो मिल ही जाएगा पर एक में ब्याज कितना तो लगेगा, तो ध्यान से सुन जो। वैसे तो किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर 9% रहे पर सरकार एक में 2% की छूट दे तो या ब्याज दर 7% रह जाए और जो किसान भाई बहना अपनों लोन समय पर चुका दे उनका सरकार 3% की अतिरिक्त छूट भी दे। यानी कुल मिले समय पर पैसा लौटाने वाला किसान भाई बहना का ये लोन केवल 4% सालाना ब्याज पर मिली जाए। तो है नहीं यो मुनाफा को सोधो। अभी का सरु जो पात्रता और जरूरी दस्तावेज है वी कहीं कहीं है भाई बहना तमाकन या तो खुद की जमीन हो या फिर पट्टा की या फिर बटई की तम खेती करता हो। बटई की खेती करने वाला किसान भाई बहन भी क्रेडिट कार्ड बनवाई सकता है। बस तुम्हारा जो तुम्हारो आधार कार्ड वोटर आईडी या पैन कार्ड की जरूरत रहेगी और साथ ही जमीन का कागज बैंक खाता की पासबुक का साथ एक पासपोर्ट साइज को फोटो एक बनवानो बड़ो ही आसान है। इकासर उत्तम अपना क्षेत्र का कोई भी सरकारी व्यवसायिक या फिर सहकारी बैंक में जैन किसान क्रेडिट कार्ड का लिए आवेदन फॉर्म लीन भरी सकता हो या फिर तुम इका ऑनलाइन डाउनलोड करीन भी ना फॉर्म का भरी सकता हो और फॉर्म भरीन जो जरूरी दस्तावेज है उका साथ बैंक में जमा करी सकता हो। यदि तुम किसान सम्मान निधि का लाभार्थी हो तो तुम बड़ी आसान प्रक्रिया से मात्र एक पेज को फॉर्म आए वो बैंक से लीन अपना कार्ड का लिए आवेदन दी सकता हो। भाई बहना बैंक द्वारा सत्यापन होने का 14 दिन का भीतर तुम्हारो किसान क्रेडिट कार्ड बनीन तैयार ही जाएगो। किसान भाई बहना किसान क्रेडिट कार्ड का रुपया को उपयोग अपना केवल खेती का काम में ही करना है। योनी सोचना है कि भाई अपन का अन्य घरेलू काम का जो खर्चा ना है उपमा अपन लीला समय पर लोन चुकाना सा अगली बार अगर अपना और बड़ी राशि की जरूरत रही अपना और ज़्यादा लोन लेना है तो उकमा परेशानी भी नहीं आए। तो भाई बहना किसान क्रेडिट कार्ड को उपयोग करें तम साहूकार ना का महंगा ब्याज से भी बची जाओगा और साथ ही अपनी खेती का भी सुचारू ढंग से कर ही सकता हो। बात अपन और भी करांगा पर मन करी रहो कि कार्यक्रम में अपन शुरुआत कराएं एक लोकगीत से तो बातचीत का साथ साथ एक लोकगीत भी अपन सुना। तो सुना भाई राम अवतार अखंड और साथी ना को गायो यो लोकगीत।

0: भाई बहना, अभी अपन लोकगीत सुने जी का गाया थो भाई, राम अवतार अखंड और साथी नाना। तो अब अपन बातचीत और भी करांगा और जानांगा कि भाई फल जो सब्जी ना है उनको उपयोग अपन बिना मौसम का भी साल भर अपन कसर करी सकता है। जी का अपन कहा है कि भाई परिरक्षित, जैसे कि तमना उदाहरण का ले मुरब्बो, जैसे हमना भाई बेड़ना इना टाइम बने ले, पर उनका हम आगे का भी कहीं 2-3 महीना बाद भी अपन उनका खावा तो वो कैसा संभव है। ऐसा ही अपना जो फल सब्जी ना है इनका भी परिरक्षित करी सकता है। तो इका बारा में अपन जानांगा इन्हीं भेंट वार्ता में, जी को विषय है परिरक्षित फल सब्जी ना को उपयोग और उनको टिकाऊपन। जी का बारा में डॉक्टर अंकित पांडे उद्यानिकी सहायक से चर्चा करी रही है बेन तुलसा दरगैया। तो सुना उनकी यह चर्चा।
1: भाई नोनी आज अपनी चौपाल पर आयला छे अंतिम पटेल ग्राम मोटक का माफी से अने इनका से अपन जानांगा कि जायत मा अने ग्रीष्मकालीन फसल की तैयारी ये कसा करी रहेल छे। राम राम भाई।
2: राम राम।
1: न जसो हम बात करें कि जायत को अभी समय चली रहेल छे,
2: हाँ।
1: तो आपने खेत मा काई काई रोपेलो छे, फसल जायत मा काई लीजा।
2: आपको बता दूं कि जायत की फसल में मैंने मूंग बोया था और मूंग की कटाई भी लगभग चालू हो चुकी है। मैंने अपने 5 एकड़ भूमि में मूंग की बोनी की थी और मूंग की बोनी करने के बाद मैं आपको बता दूं कि मूंग किसानों के लिए इतनी अच्छी फसल है कि कम समय में अच्छा उत्पादन ले सकता है। पर विशेष विशेष करके ध्यान दे समय का, टाइमिंग का और काम करने का तरीके का। बहुत सारे कृषक क्या करते हैं कि जो मूंग की फसल लेते हैं तो मूंग की फसल में वो जब सूखने जैसी अवस्था थे तब पानी देते हैं, तो विशेष करके सतत निगरानी करें मूंग की फसल की। और अभी तो लगभग कटाई की ओर बहुत सारे कृषक जा चुके हैं, पर आने वाला जो अगला सीजन आएगा उस समय बहुत अधिक किसान मूंग की खेती करें, क्योंकि मूंग की खेती से हमें बहुत बेनिफिट मिलता है और कम समय में आने वाली जो फसल रहती है मूंग की, इससे हम अच्छी आमदनी लेंगे। तो आने वाली जो ग्रीष्मकालीन फसल है उसके लिए हमें पैसे कहीं से जुटाना नहीं पड़ेगा, हमारे स्वयं पैसे होंगे और हम अच्छे से खरीदी कर पाएंगे।
1: बिल्कुल अच्छी बात की तब ना कि हम रबी की तो खेती करें, खरीफ की खेती भी करें। अगर जायद में अगर हम मूंग लगे ले बांगा और ओखा पर ध्यान दे ले बांगा, तो हम खरीफ की तैयारी कर लें, अपनो पैसों अपना पास नगद नारायण नगदुल्ला रख।
0: भाई बहना, अभी अपन सुना एक लोकगीत जिक गायो है बेन तृप्ति नागर ने। तो सुना अपन यो लोकगीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: भाई वरना संदेश का पहला अपन बेन तृप्ति नागर को गायो यो प्यारो सो लोकगीत सुनियो। अब अपन बात करा अपना खेतीबाड़ी की, तो अपन अभी गेहूं का काम सा निपटा है और साथ साथ अब अपना जो आगामी अपनी फसल अपन लगाने वाला है, खास तौर पर हमारा मालवा निमाण का क्षेत्र, मालवा क्षेत्र में जो है सोयाबीन अधिकतर भाई बहन ना बो, तो ऐसा में उनकी कौन कौन सी नवीनतम फूड ग्रेड किस्म ना है उका बारा में अपन इन वार्ता में जानांगा, जिको विषय है सोयाबीन की नवीनतम फूड ग्रेड किस्म ना, और वार्ताकार है डॉक्टर अनीता रानी। तो सुना अपन या वार्ता।
5: किसान भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर अनीता रानी, प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की ओर से आज के विशेष कृषि कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय है सोयाबीन की नवीनतम फूड ग्रेड किस्में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि फूड ग्रेड किस्मों का क्या मतलब है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसान अपनी सोयाबीन तेल निकालने वाली इंडस्ट्री को बेच देता है और ये इंडस्ट्रियां तेल निकालकर बाकी की जो खली बचती है उसको निर्यात कर देते हैं या अपने ही देश के मुर्गी पालन या अन्य पशु आहार के रूप में बेच देते हैं। बहुत ही कम मात्रा में सोयाबीन हमारे खाद्य पदार्थों में प्रयोग होता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा क्या कारण है सोयाबीन में 40% प्रोटीन होने के बावजूद भी खाया नहीं जा रहा है। अभी जो सोयाबीन के खाद्य पदार्थ बनते हैं वो है सोया दूध, टोफू, बढ़िया, पर इनको घर पर बनाने का लंबा प्रोसेस है। अगर हम सोयाबीन को रोजमर्रा के खाने में प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें लगता है सबसे आसान तरीका है गेहूं के आटे के साथ मिलाकर रोटी, पूड़ी, थेपला या बिस्किट बनाए जाएं। पर इसमें एक समस्या आती है कि सोयाबीन में कुछ ऐसे प्रतिपोषक कारक हैं जिनको नष्ट करने के लिए सोयाबीन को 20 मिनट तक उबालकर फिर सुखाकर पीसना पड़ता है। इस सब प्रोसेस में समय, मेहनत और पैसा लगता है। इस समस्या को खत्म करने के लिए हमारे संस्थान ने एक पहल की है, कुछ ऐसी प्रजातियां बनाई हैं जो इन प्रतिपोषक कारकों से मुक्त हैं। जिन प्रतिपोषक कारकों की मैं बात कर रही हूँ वो है कुनिस ट्रिप्सिन इनहिबिटर और लाइपोक्सिनेज एंजाइम। कुनिस ट्रिप्सिन इनहिबिटर क्या करता है, यह प्रोटीन पचाने वाले ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है जिसकी वजह से हमारी पेनक्रियाज पर असर होता है। और जो लाइपोक्सिनेज एंजाइम है वो सोयाबीन के खाद्यों में एक तरह की गंध पैदा करता है जिसे आम आदमी पसंद नहीं करता है। इस घटक को भी हमने अपनी नवीन प्रजातियों से बाहर निकाल दिया है। अब मैं आपको उन प्रजातियों के बारे में बताऊंगी जिन्हें हम फूड ग्रेड किस्में बोलते हैं। ये है NRC 150, NRC 142, NRC 181, NRC 127, NRC 152 और हाल ही में आइडेंटिफाई हुई NRC 268। इसमें NRC 150, NRC 152, NRC 181 ये जल्दी पकने वाली किस्में हैं, 142 मध्यम अवधि की है, और जबकि 127 और 268 ये 100 दिन से थोड़ा ज्यादा समय लेती हैं। NRC 150 और 142 किसान भाइयों में बहुत पॉपुलर हो चुकी हैं। इन किस्मों का उत्पादन भी बहुत अच्छा है और रोगों और कीटों को सहने की क्षमता भी बहुत है। जिन खेतों में जल भराव की समस्या है उन खेतों में भी NRC 142 का बहुत अच्छा उत्पादन मिला है। दोनों किस्मों के पौधे और फलियां रोएदार होते हैं। NRC 150 के फूल सफेद रंग के हैं और NRC 142 के फूल बैंगनी रंग के होते हैं। NRC 150 का पौधा सीधा होता है और शाखाएं बहुत कम होती हैं। इस किस्म को किसान 14 इंच की दूरी पर भी लगा सकता है, परंतु NRC 142 में बहुत ज्यादा शाखाएं आती हैं। यह फैलने वाली प्रजाति है, इसका अच्छा उत्पादन

0: लेने के लिए लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच रखना बहुत जरूरी है। एनआरसी 142 के बीजों को अगर हम बहुत पास पास डाल देते हैं तो पौधे की बर्बाद ठीक से नहीं होगी। इसके अलावा किसान भाई और बहनों से मैं ये कहना चाहूंगी, प्रजाति कोई भी हो, बुआई से पहले बीज उपचार बहुत जरूरी है। बीज का उपचार बाजार में उपलब्ध फफूंदनाशक, कीटनाशक एवं तरल बायो फर्टिलाइजर से जरूर करें, साथ ही खाद का संतुलित प्रयोग करें। इन फूड ग्रेड प्रजातियों के अलावा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने एक और खास तरह की सोयाबीन प्रजाति जारी की है, इसको हम सब्जी वाली सोयाबीन कहते हैं। इस प्रजाति का नाम है एनआरसी 188। इस प्रजाति की फलियों को मटर की तरह हरा ही काट लिया जाता है। इसका दाना मोटा होता है, खाने में मीठा होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी मटर से 3 गुना ज्यादा होती है। इसका बाजार भाव भी बहुत अच्छा है। फूड ग्रेड प्रजातियों के उत्पाद पर सोया फूड इंडस्ट्री भी प्रीमियम देती है। इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगी, किसान इन प्रजातियों की खेती करके अतिरिक्त मुनाफा कमा सकता है। इसके साथ ही अपने किसान भाइयों और बहनों को आने वाले सीजन में सोयाबीन की खेती करने की शुभकामनाएं देती हूँ। समय समय पर हमारा संस्थान किसानों को सोयाबीन खेती से जुड़ी सलाह प्रसारित करता रहता है। आप इन सलाहों पर ध्यान दें और अपनाएं, जिससे आप अधिकतम उत्पादन ले पाएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।
1: भाई बहना, अभी अपन वार्ता सुनी, जी को विषय थो सोयाबीन की नवीनतम फूड ग्रेड किस्मना, और वार्ताकार थी डॉक्टर अनीता रानी। भाई बहना, जैसे कि अब ग्रीष्मकालीन समय है और असामा जो ग्रीष्मकालीन फसल है, जायद की फसल ना है, वी हमारा प्रगतिशील कृषक भाई ना कैसे करी रहा है, उनसे अपन जानागा। हमारा साथ स्टूडियो में हमारे से बातचीत करी भाई अंतिम पटेल, ग्राम मोटक का माफी से, जिनसे जानकारी ली सुनीता पंडित ने, तो सुना अपन उनकी यह भेंट वार्ता।
2: भाई नोनी आज अपनी चौपाल पर आयला छे अंतिम पटेल ग्राम मोटक का माफी से, अने इनका से अपन जानांगा कि जायत मा अने ग्रीष्मकालीन फसल की तैयारी ये कसा करी रहल छे। राम राम भाई।
3: राम राम।
2: न जैसे हम बात करें कि जायत को अभी समय चली रहल छे, तो आपने खेत मा कई कई रोपेलो छे, फसल जायत में कई लीजा।
3: आपको बता दूं कि जायत की फसल में मैंने मूंग बोया था और मूंग की कटाई भी लगभग चालू हो चुकी है। मैंने अपने 5 एकड़ भूमि में मूंग की बोनी की थी, और मूंग की बोनी करने के बाद मैं आपको बता दूं कि मूंग किसानों के लिए इतनी अच्छी फसल है कि कम समय में अच्छा उत्पादन ले सकता है। पर विशेष करके ध्यान दे समय का, टाइमिंग का और काम करने का तरीके का। बहुत सारे कृषक क्या करते हैं कि जो मूंग की फसल लेते हैं तो मूंग की फसल में वो जब सूखने जैसी अवस्था थे तब पानी देते हैं, तो विशेष करके सतत निगरानी करें मूंग की फसल की। और अभी तो लगभग कटाई की ओर बहुत सारे कृषक जा चुके हैं, पर आने वाला जो अगला सीजन आएगा उस समय बहुत अधिक किसान मूंग की खेती करें, क्योंकि मूंग की खेती से हमें बहुत बेनिफिट मिलता है और कम समय में आने वाली जो फसल रहती है मूंग की, इससे हम अच्छी आमदनी लेंगे। तो आने वाली जो ग्रीष्मकालीन फसल है उसके लिए हमें पैसे कहीं से जुटाना नहीं पड़ेगा, हमारे स्वयं पैसे होंगे और हम अच्छे से खरीदी कर पाएंगे।
2: बिल्कुल अच्छी बात की तब ना, कि हम रबी की तो खेती करें, खरीफ की खेती भी करें। अगर जायद में अगर हम मूंग लगे लेवांगा और ओखा पर ध्यान दे लेवांगा, तो हम खरीफ की तैयारी कर लें, अपनो पैसो अपना पास नगद नारायण नगदुल्ला रखी सका।
3: हाँ।
2: यो आपने बहुत अच्छो बतायो, और हमारा जो सुनने वाला भाई छे एको लाभ लेगा। बात आपने खरी खरीफ की तैयारी की।
3: हाँ।
2: तो खरीफ की तैयारी आप कसी करी रहे छे, काई चली रहे छे अभी खेत में?
3: खरीफ की तैयारी में अभी निमाड़ क्षेत्र में चल रहा है कॉटन, कपास, कपास लगाने का सिलसिला चालू हो चुका है। पर अभी मैं एक मिनट आपको रोक के पीछे वापस लेके जाऊंगा जायद की ओर। मैं जायद की ओर कहना चाहूंगा कि जैसे अब मूंग की कटाई चल रही है, मूंग की कटाई में विशेष करके कटाई का विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे कृषक क्या करते हैं कि गीली ही मूंग की फसल काट लेते हैं, जिससे क्या रहता है कि जो ऊपर लगी हुई फलियां रहती है वो हमारी सही तरीके से दाना नहीं बना पाती, उससे हमें नुकसान होता है। तो विशेष करके हमारी मूंग की फसल को पहले देखें कि ये काटने की अवस्था में आ रही है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरे किसानों से पूछकर उससे जानकारी लेकर कि भैया आपने पिछले साल लगाया था तो इसकी कटाई किस समय करनी चाहिए और किस अवस्था में करनी चाहिए, उसका ध्यान रखें। साथ ही इकट्ठे करने की जो आती है कि इकट्ठे करके हार्वेस्टिंग करवाते हैं हम, उस समय क्या करना चाहिए कि जो मजदूर काम करते हैं उन्हें पहले चता दिया जाए कि भैया आप गमछा ना लगाएं या ऐसा कुछ ना करें जिससे आप ये जो मशीन चलेगी इसकी चपेट में ना आए और दुर्घटना का शिकार ना हो, और मेरा कृषक भी दुर्घटना का शिकार ना हो। भगवान करे कि मेरा कृषक लंबे समय तक खेती करे और

0: अच्छा उत्पादन लेता चले।
1: आपने मशीन को बतायो,
0: हाँ,
1: तो किना तरीका की मशीन है, किनी मशीन से आप ज्यादा अच्छो उपयोग ले सको?
0: मशीनें जैसे पुरनी मशीन होती है, हार्वेस्टर मशीन होती है, जैसे किसान को सहूलियत होती है वैसे मशीनों से। पहले विद्युत से चलने वाली मशीनें होती थी, बहुत सारे मिनी ट्रैक्टर से चलने वाली मशीनें आ चुकी है और बहुत सारे कटर आ चुके हैं जिनसे मशीनरी का काम पूरा होता है। तो किसान को जो सहूलियत लगे, जो सही पड़े, जो सरलीकरण हो वही करे।
1: आप तो की मशीन न वापरो?
0: हमारे यहाँ तो हार्वेस्टर चलता है, तो हार्वेस्टर से कटाई होती है, तो हार्वेस्टर में कटाई और गुड़ाई दोनों एक साथ हो जाती है, तो टाइम भी कम लगता है और माल की क्वालिटी भी आती है। और इसका जो जो हरे हरा चारा होता है ये पूरे खेत में फैल जाता है, तो ये एक खाद का काम करता है जिसे ग्रीन खाद बोलते हैं।
1: तो आपने कोई अपना पूरा खेत में मूंग चौपाला किना तरीका से अपना जायद की फसल ली?
0: मेरे
1: खेती होएगा आपकी ना कसी कसी?
0: मेरे पास 16 बीघा भूमि है जिसमें 5 बीघा भूमि में मैंने मूंग लगाए थे, क्योंकि पानी की जितनी सहूलियत होती है उस हिसाब से ही लगाया जाए, क्योंकि मुझे आगे तैयारी कपास की भी करनी थी, तो और समय भी थोड़ा ऐसा हो चुका था कि गेहूं की फसल थोड़ी लेट कटी थी, उस हिसाब से बीच में मौसम गड़बड़ हुआ था, उससे क्या है कि जो जायद का जो समय था वो आगे पीछे हो गया था। उसके कारण क्या है कि हमने फिर जहाँ आगे बोनी थी उसको रोक दिया और ये 5 ही एकड़ पे हमने विशेष करके ध्यान दिया, तो इससे मैंने अभी 2-3 एकड़ की निकाल ली है, तो 3 एकड़ में मुझे 8 का एवरेज मिला है।
1: अच्छा, तो एक बात यहाँ जानना चाहूंगा कि आपने कोई एकज किस्म की जो मूंग था वो लिए लाचे की अलग अलग किस्म न ली मूंग की?
0: ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी। मेरे बहुत सारे कृषकों को जानकारी का अभाव रहता है, वो क्या करते हैं कि जैसे मूंग की फसल लेते हैं तो वो इधर उधर पूछते हैं क्या करें क्या करें, घर की बो देते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रमाणित बीज खरीदे, इसकी जो वेरायटी होती है 139 होती है, विराट होती है, और बीज निगम से बहुत सारे जो सरकार देती है ना वो हम उन्हें खरीदे, तो जो प्रमाणित बीज होगा वो सस्ता पड़ेगा, और उसके बाद लेने के बाद इसमें जो सब्सिडी प्रोसेस होती है वो भी हमें उसका भी लाभ मिलता है। तो कोशिश करें कि आप प्रमाणित बीज खरीदें और सरकार की योजनाओं का भी लाभ उठाते चले, क्योंकि योजनाओं का लाभ लेंगे तो किसान आगे बढ़ेगा और प्रगति कृषक की ओर बढ़ता चले जाएगा।
1: कहीं आप सरकार से कोई ऐसी योजना को लाभ में ले लो छे, आपने कहीं ली जैसी सब्सिडी की योजना या और कई तरह की खेती में कई ऐसी योजना को लाभ लिए लो छे?
0: मैंने बहुत सारी योजनाओं का लाभ लिया है, और मैं आपको बता दूं कि दूध डेयरी से लगा के मेन तो ये जैसे मूंग के मैंने बोला बीज, मैं बीज निगम से ही मूंग खरीदता हूँ, क्योंकि वहां पे मुझे मूंग भी सस्ती मिलती है और जो बाजार में मूंग आती है वही मूंग मेरे को मिलती है और उसमें सब्सिडी भी मिलती है, तो ये भी लेता हूँ। साथ ही बहुत सारी योजनाएं जो होती है सरकार की, जैसे ट्रैक्टर पंप ये जो मिलते हैं, ये स्प्रिंकल टपक सिंचाई, ये सभी मैंने सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है, और मैं सभी कृषकों को कहूंगा कि आप इन चीजों का लाभ लें।
1: एक आपने हम चूंकि जायद की फसल की बात कराई, तो मूंग का अगर हम जायद में लेना चाहें तो जो परंपरागत तरीका से मूंग लेवाए,
0: हाँ,
1: तो ओका मन एका में कई कोई ध्यान रखने पर कोई विशेष बात न को असो तवज्जो देनु पड़े?
0: हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। विशेष करके मैं सभी कृषकों को यही कहना चाहूंगा कि आपकी टाइमिंग यदि अच्छी है, आप परंपरागत खेती भी करते हो, तो परंपरागत खेती ऐसे मत करिए कि पुराने जमे में बहुत सारे बीज बो दिए और जितना निकलेगा उतना आएगा। कोशिश ये करिए कि एक बीज से बहुत ज्यादा दाने निकले, बहुत सारा उत्पादन हो, ऐसी कोशिश करें। जैसे मूंग की फसल की बोनी कर रहे हैं तो 1 एकड़ में हमें लगभग 6 से 8 किलो के लगभग मूंग रखनी चाहिए, पौध से पौध की दूरी, कतार से कतार की दूरी, इसका विशेष ध्यान रखें। आपकी भूमि किस हिसाब से है उस हिसाब से भूमि का चयन करें, उस हिसाब से वैरायटी का चयन करें, साथ ही साथ कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के साथ कृषि करोगे तो आप बहुत अच्छी कृषि कर पाओगे। और सतत निगरानी, किसान सबसे ज्यादा जरूरी है सतत निगरानी और समय पे दवा और पानी। यदि समय पे दवा और पानी नहीं जाएगा तो कृषि करने से कोई मतलब नहीं है, आप बाय वन भरोसा गेट 100% धोखे वाली खेती ही कर रहे हो।
1: आपने एक पानी की बात करी है,
0: हाँ,
1: और हम जायद की अगर बात करें तो वो उंधाड़ा की रही,
0: हाँ,
1: एक काम हमको पानी को बहुत ध्यान रखना, हाँ, तो मूंग में सिंचाई की बात कर ले या जायद की कोई भी फसल ले ले,
0: हाँ,
1: तो एक पानी को सोई सहाय आप कसो बैठा रहे।
0: मैं बहुत सारे कृषकों को ये भी कहना चाहूंगा कि टपक सिंचाई से भी हम मूंग की फसल ले सकते हैं, यदि हमारे पास पानी कम मात्रा में है, पर होना भी चाहिए ना। टपक सिंचाई में यदि 1 घंटे चला रहे हैं और 3 एकड़ खेत में मूंग लगा दिए तो ये सही नहीं है। विशेष करके ध्यान रखें कि 1 एकड़ भूमि के लिए यदि अपने पास 2-3 घंटे का पानी है तो आप कर सकते हो, बकायदा कर सकते हो, और यदि लांगी से है जैसे हम हमारे पास मेरे पास नर्मदा सिंचाई

0: पंप है तो मैं नर्मदा सिंचाई से ही पूरी ग्रीष्मकालीन 12 महीने पानी ही पानी है मेरे पास, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। पर बहुत सारे कृषकों के लिए ये संभव नहीं है, तो कोशिश ये करें कि टपक सिंचाई से करने की कोशिश भी करें और उससे भी उत्पादन अच्छा मिलता है और बहुत सारे किसान आगे बढ़े हैं।
1: आपने नर्मदा सिंचाई की बात करी,
0: हाँ
1: तो ये कब से आपका खेत मचे? कहीं पहले आपको पानी की दिक्कत थी और ये आना से आपको सुविधा हुई?
0: मेरा जन्म 1992 में हुआ था, उस समय से लाइन है मेरे
1: अच्छा,
0: यहाँ
1: बहुत
0: सिंचाई
1: मतलब
0: पंप।
1: आपका
0: मतलब
1: बचपन
0: मेरे
1: से।
0: बाप दादा के समय में सबसे पहली लाइन मेरे ही यहाँ थी और वहीं से सिंचाई की व्यवस्था कर रहा हूँ, और पास में जो नहरें होती है उससे भी हम पानी का काम पूरा कर रहे हैं। तो पानी तो निमाड़ क्षेत्र में अभी ऐसा है कि सभी किसानों के लिए जो सरकारें करके गई है बहुत बढ़िया करके गई है, और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा तो मेरा कृषक और आगे बढ़ता चला
1: पानी की
0: जाएगा।
1: मतलब आपका बिल्कुल तकलीफ नहीं है, और
0: नहीं
1: जब
0: है,
1: पानी अगर पास में हो तो
0: हाँ
1: मेहनत रंग भी लावे
0: हाँ
1: और मेहनत करने को मन भी करे,
0: हाँ
1: और वो हम आप दिख ही रहे छे आपकी बात में कि मूंग की फसल भी आपकी हमको शायद पूछने की जरूरत ही नहीं
0: हाँ
1: कि बहुत
0: सही
1: अच्छी हुए ली छे आपका। और जहां तक बाजार भाव की बात है, क्योंकि बाजार बहुत जरूरी छे किसान
0: हाँ
1: भाई का लेन, फसल तो बहुत ज्यादा हुई जाए पर बाजार नहीं मिली पाओ, तो यो बाजार भाव लेने का लेन आप किना तरीका से अपना मूंग का बाजार में लाओ?
0: अभी जैसे मूंग की कटाई बहुत सारे किसानों की हो चुकी है, बहुत सारे किसानों के मूंग निकल के आ चुके हैं, बहुत सारे किसानों की रही है, तो समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदी करती है जो मई और जून के समय में उसका पंजीयन होता है। इंतजार करें क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो आप यदि पंजीयन करते हैं, आपकी मूंग अच्छी निकली हुई है, उसको यदि अच्छी नहीं भी निकली हुई है, थोड़ी बहुत कमजोर भी है, तो उसे सही कर ले तब तक, क्योंकि अपने पास समय है, उसे व्यवस्थित कर ले, उसका सही साथ भंडारण कर ले कि हमें पंजीयन के समय में जब तोलना है उस समय में तोलने जाना है, उस समय हमारी फसल अच्छी रहे कीटों से और इससे सबसे अच्छी रहे। तो विशेष करके जब समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदती है तो हमें 8,500 रुपये से लगाकर 8,768 रुपये तक का समर्थन मूल्य मिलता है, जो हमारे लिए हमारे हिसाब से बहुत सही है और कृषकों के हिसाब से भी बहुत सही है, क्योंकि अभी मार्केट में औने पौने दाम में जो मंडियां चल रही है तो उससे किसान बच सकता है और किसान समर्थन मूल्य में अपना मूंग देकर अच्छी इनकम ले सकता है।
1: बात समर्थन मूल्य की चली और मंडी की चली,
0: हाँ
1: तो हम आपसे जानना चाहूंगा कि मंडी में ले जाना का लेन
0: हाँ
1: या एक फसल का समर्थन मूल्य पर लेना का लेन किना तरीका से, किनी प्रक्रिया से गुजरना पड़े किसान भाई?
0: जैसे मंडियों में जाता है तो मंडियों में कृषक अपने अपने हिसाब से लेके जाता है कि जिनसे का क्या भाव चलता है, वो किस समस्या में है, पहले तो उसके लिए समस्या मायने रखती है कि उसको पैसे की भी आ जा सकता है और पंजीयन लेट हो
1: हम
0: तो।
1: आपसे ये जानना चाहूंगा कि अच्छो तरीको कहाँ कुछ है क्योंकि तकलीफ भी नहीं हो और आसानी से हो कि फसल बिकी जाए?
0: सबसे सबसे बढ़िया तो है जो सरकार खरीदती है समर्थन मूल्य पे, सबसे बढ़िया वही है मेरे हिसाब से कि आप उस समर्थन मूल्य में ही अपनी मूंग की फसल तोलने की कोशिश करें और उसका पंजीयन जरूर करवाए। पंजीयन करवाने के बाद ही आप फसल दे पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको खतौनी लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा, आपका नंबर लगेगा, और इससे पंजीयन करवाने के बाद जब आपका नंबर आएगा, जब आपका स्लॉट बुक होगा, उस समय में आपको आपकी फसल लेके जाना है, तो असुविधा भी ना हो और समय पर आपकी फसल भी तुल जाए। तो इसका विशेष ध्यान रखकर सरकार के पंजीयन क्रमांक के हिसाब से सरकार की योजना के अनुरूप ही तोले तो आप बेनिफिट ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहो। जायद की फसल की बात कर रहे हो और मूंग की फसल की बात कर
0: हाँ
1: रहे, खेती में जैविक को बड़ो महत्व होता है,
0: हाँ
1: तो कई आप अपना खेत में जैविक किसान बनने का लेन या जैविक उत्पाद लेने का लेन भी कोई काम कर रहे हैं?
0: हाँ बिल्कुल, मैं बहुत सारे काम ऐसे भी करता हूँ जिससे मेरी भूमि को हानि ना पहुंचे। अब क्या है कि जायद की ओर तो हो गई, अब हम जाएंगे आने वाले खरीफ सीजन की ओर, तो आप कपास मिर्ची इसका काम भी चालू होने वाला है, तो मैं बहुत सारे कृषकों को एक चीज और अवगत करवाना चाहूंगा कि मिट्टी परीक्षण जरूर करवाएं, सबसे जरूरी है मिट्टी परीक्षण। मिट्टी परीक्षण से हमें तो पता चलेगा कि कौन से तत्वों की कमी है, नहीं तो हमारे खेत में यूरिया की मात्रा अधिक हो और हम यूरिया देते चले जाएं तो उसका दोहन हो जाएगा मिट्टी का। हमें हमारी भूमि के जल धारण क्षमता को बढ़ा के रखना है, जमीन को उपजाऊ रखना है, और विशेष करके ध्यान भी रखना है कि हमें खेती को ज़्यादा जहर नहीं खिलाना है, जहर मुक्त करना है तो जैविक की ओर जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ मेरे घर में 6 घन मीटर का गोबर गैस प्लांट लगा है, क्योंकि मेरे पास पशुधन भी है, 10 से 12 पशु है, उनका जो सुबह का गोबर निकलता है उसे हम उस प्लांट में घोल के करते हैं, जिससे हमें गैस भी मिलती है और वो गैस हमारे घर उष्मा का काम करती है, हमारे चूल्हा हमारा जो भी काम रहता है उससे वो पूरा हो जाता है। साथ ही साथ उसकी जो सैलरी निकलती है वो जैविक का काम करती है, जैविक का काम वो सैलरी तो करेगी, उसके ऊपर एक तर जमती है पानी की, उसका हम इधर फसलों पे

0: करते हैं तो हमारे जो कीट हैं वो कीट भी नष्ट हो जाएंगे। पांच पत्ती काढ़ा है, उससे भी हम बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें, अभी क्या है कि पराली जलाने वाला मामला भी आया था, तो पराली जलाने के लिए किसानों ने क्या करा कि वो हलनी बखरनी से पूरा वो करवा दिया था, पर डीकम्पोजर का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सारे किसानों ने उसे डीकम्पोज करें और उसको चलाकर अपनी वो जो पराली है उसका खाद बनाए और उसके बाद बोनी करें। मैं आपको बोलता हूं कि आप कपास या कोई सी भी फसल लेना चाहोगे उसका उत्पादन अच्छा मिलेगा और खाद जो रासायनिक खाद की मात्रा है वो घटकर जीरो हो जाएगी और आप जैविक की ओर अग्रसर हो जाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहो, और आपसे हम चाहिराज की सतत बात करता रहा, क्योंकि आपकी बात न प्रेरक भी छे और दूसरा लोग न के भी प्रोत्साहित करेगा।
0: हाँ
1: और आपने जो बात कही जैविक होने की, जो सरकार छे वो भी चाह रही कि हमारा किसान भाइयों जैविक खेती की तरफ, प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ा,
0: हाँ
1: एक सपनों देखेलो छे, ओका सपना का आगे बढ़ाना म आप सभी का जो युवा भाई छे वो भरसक प्रयत्न भी करी रहा है। अंतिम पटेल ग्राम मोटक का माफी से आप हमारा बीच आया और आप न जायद न ग्रीष्मकालीन फसल के बारे में विस्तार से हमारा भाई बहन का जानकारी दी। एकालेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभी किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाई बहन अभी अपन ने भेंट वार्ता सुनी जी को विषय था जायद एवं ग्रीष्मकालीन फसल और जिप पर बातचीत करी रही थी सुनीता बेन और जानकारी ले रही थी प्रगतिशील कृषक भाई अंतिम पटेल ग्राम मोटक का माफी से। तो अपना प्रगतिशील कृषक भाई ने बताया कि भाई अपना समय पर निरीक्षण करते रहना है और साथ साथ अपना अपनी जो मिट्टी है उसकी सेहत को भी अपना ध्यान रखना है तो उसकी जांच जरूर से करवानी है। और चलते चलते हूँ अपने कृषि उपज मंडी समिति संयोगितागंज प्रांगण इंदौर का अपना मंडी का भाव भी आ गया है, उसका बारे में भी अपन जानी ला। तो गेहूं को भाव रहे 2100 से 3001 रुपया प्रति क्विंटल, सोयाबीन को भाव रहे 3025 से लिन 7135 रुपया प्रति क्विंटल, मिर्ची को भाव रहे 7010 से लिन 15500 रुपया प्रति क्विंटल और चना को भाव रहे 4500 से लिन 6700 रुपया प्रति क्विंटल, मटर को भाव रहे 3650 से 3975 रुपया प्रति क्विंटल और तुअर को भाव रहे 2350 से 6795 रुपया प्रति क्विंटल और राजमा को भाव रहे 4605 से 7705 रुपया प्रति क्विंटल। और एक साथ कार्यक्रम को अब बखत भी हुई चलियो है तो हमारी बात कहूँ न्याज दुआ विराम। सब किसान भाई बिरना का प्रियंका की राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, ये आकाशवाणी इंदौर है। श्रोताओं, 8 बजा चाहते हैं अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: सुर्खियों में,
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन चौधरी। आज हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन, महत्वपूर्ण चर्चाएं और प्रमुख निष्कर्ष पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर एम्बेसडर जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। सर, हम शुरुआत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक है, मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, तो इसके बारे में बताइए।
2: प्रधानमंत्री की अगर पांच देशों की यात्रा न होती तो भी प्रधानमंत्री इन देशों के विदेश मंत्रियों से मिलते हैं, क्योंकि ब्रिक्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इसके फाउंडर मेंबर्स में से हैं और अगर इसकी मीटिंग हो रही है जो कि आगे कल्मिनेट होगी समिट में, शीर्ष सम्मेलन में सितंबर में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, तो ये जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री इन देशों के विदेश मंत्रियों से मिलें, उनकी बात, उनका रुख समझें और अपनी भारत की बात बताएं। तो ये जरूरी हो गया था, इसलिए

0: जाने से पहले ही प्रधानमंत्री इन देशों के विदेश मंत्रियों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री ईरान से भी मिले अराक्ची, उनसे ऐसी क्या बात हुई है? क्योंकि अभी युद्ध, अभी सीज फायर हुआ है और ब्लॉकेड भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, जहाँ पे तेल का आना जाना रहता है।
0: देखिए, हमारी सबसे बड़ी मांग जो होती है, हमारी सबसे बड़ी डिमांड या सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी का होता है क्रूड ऑयल, और वो हम 80% से ज्यादा मध्य पूर्व से लेते हैं, पश्चिम एशिया भी जिसको कहते हैं। अब इस क्षेत्र में अगर होर्मुज के उस पे स्ट्रेट पे पाबंदी लग जाती है, आवागमन पे रोक लग जाती है, तो हमारी ऊर्जा जरूरतें इससे बड़ी बुरी तरह प्रभावित होती है और प्रभावित हो रही है। देख रही है आपने, तेल के दाम बढ़ा दिए गए, तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे टैंकर्स, भारतीय ध्वजवाहक टैंकर्स जो अगर वहां से आ रहे हों तेल लेकर के या एलएनजी लेकर के या और ऊर्जा के स्रोत लेकर के, तो उनको आने दी जाए, उनको लिए कोई परेशानी का सबब न हो। और इसलिए हम ईरान से उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि ईरान एक दोस्त के तौर पे, एक मित्र राष्ट्र के तौर पे हमारे तेल वाहक टैंकर्स को आने देगा। और इसीलिए आपने देखा कि शुरुआत में भी जब ये ईरान ने वहां पे माइन बिछाई, तो भी उसके बाद भी ईरान ने कहा कि हाँ, हम कुछ भारतीय, कुछ देशों के टैंकर्स को आने देंगे, उसमें भारत भी था। बीच में अब जब अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी, घेराबंदी कर दी, तब भी कुछ परेशानी हुई, लेकिन हमारी यही कोशिश थी। इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात तो जरूर कही होगी, और जब मिले होंगे तो ये बात भी कही होगी उन्होंने कि ईरान और यूएस के बीच में जो संघर्ष है, उसका अंत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे विश्व पे और ग्लोबल साउथ पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, छोटे देशों पे ज्यादा पड़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से भी मिले हैं। रशिया के साथ हमेशा हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, डिफेंस में, ऑयल इंपोर्ट्स में भी। यहाँ पे उन्होंने बात की है कि हम गैस भी आपको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का क्या कहना है और हमारे प्रधानमंत्री इसको किस तरीके से देख रहे हैं?
0: देखिए, रूस के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध रहे हैं, और जब हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी थी तो पाकिस्तान, तो अमेरिका ने हमें सशर्त देने के लिए कहा था गेहूं, लेकिन रूस ने उस वक्त कहा था कि आप हमें बस पोर्ट बताइए, किस पोर्ट पे और कितना चाहिए, प्राइस और सारे मॉडलिटीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारे बहुत पुराने संबंध, 70 साल 75 साल से ज्यादा के संबंध रहे हैं। आपने जैसे कहा कि हम डिफेंस इक्विपमेंट्स लेते हैं, हम क्रूड ऑयल लेते हैं, हम फर्टिलाइजर लेते हैं, एलएनजी भी हमें अब चाहिए, क्योंकि हमारी मध्य पूर्व की सप्लाई कभी कभी डिसरप्ट हो जा रही है, तो इसलिए एलएनजी भी हमें चाहिए होगी। तो हमारे ख्याल से तो हम यही करेंगे कि अमेरिकी सैंक्शन या अमेरिकी धमकियों के बावजूद भी हम सप्लाई रूस से लेते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय हित में है और जितनी हमें जरूरत है, और रूस हमें अनवरत सप्लाई देता है और वो भी हमें अच्छे टर्म्स पे सप्लाई देता है। तो इसलिए हमें रूस से, अभी जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाते हैं निकोबार की खाड़ी में, जब तक हमारे आयल की दोहन की प्रक्रिया चालू नहीं हो जाती, तब तक तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है, अपरिहार्य हो जाता है कि हम रूस से तेल लेते रहें।
1: प्रधानमंत्री ब्राजील के विदेश मंत्री से भी मिले हैं वियरा। ब्राजील की क्या भूमिका है ब्रिक्स में?
0: देखिए, ब्राजील एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हो जाता है, ये संस्थापक सदस्यों में से है। पांच जो संस्थापक सदस्य थे, भारत, रूस, चीन, ब्राजील, और उसके बाद में साउथ अफ्रीका बना। तो ब्राजील का बहुत महत्व इसलिए भी हो जाता है कि ब्राजील ही एक ऐसा देश है जो किसी भी देश की दादागिरी के खिलाफ सबसे पहले खड़ा हो। दूसरी चीज ये है कि ब्राजील ही, देखिए, जब डीडॉलराइजेशन की बात हुई ब्रिक्स में, ब्राजील ने कहा कि ठीक है, हम अपनी अपनी करेंसी में हम व्यापार करेंगे। और ब्राजील वैसे भी एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशंस तो हमारे बहुत अच्छे हैं, शुरू से ही ब्राजील से बहुत अच्छे हैं, और हमारे साथ ब्राजील हर इंटरनेशनल रीजनल प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहा है। ट्रेड रिलेशंस भी हमें बढ़ाने होंगे, क्योंकि कई चीजों में ब्राजील सबसे आगे है, और इसलिए अभी से अगर हम ब्राजील का साथ कंटिन्यू करते हैं ट्रेड रिलेशंस में, तो आने वाले वक्त में हम दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद ये बात साबित होगी। इसलिए जरूरी है कि हम ब्राजील का साथ देते रहें।
1: अब हम सुनते हैं सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुधाकर दलेला प्रेस स्टेटमेंट
2: During the course of two-day foreign ministers meeting, discussion took place around three broader themes: global and regional matters, reform of global governance and multilateral system, and BRICS at 20 under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. These

0: three sessions allowed members to exchange views and share perspectives on main pillars of BRICS strategic partnership, political and security, economic and financial, and cultural and people-to-people relations. The session on the theme BRICS at 20 allowed members to reflect on the evolution of the grouping in the last two decades and its growing relevance in addressing contemporary global challenges. Ministers also reflected on the nature of the cooperation under BRICS during India's chairship this year under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, as well as the future direction of the grouping.
1: BRICS ke theme जो है उसमें कहा गया है कि हम कोशिश करेंगे रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी, और उन्होंने बात की है कि रिफॉर्म्स ग्लोबल गवर्नेंस और मल्टीलैटरल सिस्टम. मल्टीलैटरलिज्म पे काफी चर्चा हुई है, इसके बारे में बताइए.
2: देखिए, शुरू में दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो खेमे थे, कम्युनिस्ट खेमा और अमेरिका का खेमा. उसके बाद यूएसएसआर के विघटन के बाद सिर्फ अमेरिका का खेमा बचा और वो भी पूर्व की ओर बढ़ता गया, यहाँ तक कि यूक्रेन पहुंच गया और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, 3 साल से ऊपर यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध हो रहा है. ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि ऐसा सिस्टम जो कि पहले सिर्फ कुछ मुट्ठी भर देशों के फायदे के लिए बनाया गया था, एक आवरण बना करके, भले ये कहा गया था कि ये दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा और पोस्ट वर्ल्ड वार बड़ा अच्छा होगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये सिद्ध हो गया कि साहब ये सिस्टम चल नहीं सकता, खासतौर से इसलिए कि छोटे छोटे देशों या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन सबके लिए बहुत परेशानी का सबब हो जाएगा. तो ये माना गया कि इस सिस्टम को बदलना चाहिए. और अब मल्टीलेटरलिज्म मतलब कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के चलना, और वो तभी संभव हो सकता है जब आप उन देशों के बीच में एक कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढें जो उनके नेशनल ऑब्जेक्टिव से, नेशनल इंटरेस्ट से मेल खाता हो. वहां से हम शुरू करें और तब उस पर हम वो न्यू रहेगी और उस पर एक हम बिल्डिंग बनाएं, वो ज्यादा सस्टेनेबल होगी. अब जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कहा ब्रिक्स का इनोवेशन, रेजिलियंस की आजकल बहुत बात हो रही है, इनोवेशन की ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन जो हमें चाहिए अभी ब्रिक्स कंट्रीज को क्या, बल्कि जो ग्लोबल साउथ को, वो इनोवेशन ज्यादा जरूरी है. जो हमारे संसाधन है उसका प्रयोग करते हुए हमें कैसे दूसरे उपाय ढूंढने चाहिए जिनसे कि हम ज्यादा एनर्जी, ज्यादा मिनरल्स का दोहन कर सकें. तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम मल्टीलेटरलिज्म, हम बहुदेशवादी या बहुक्षेत्रवादिता में विश्वास रखें.
1: अब हम सुनते हैं सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुधाकर दलेला प्रेस स्टेटमेंट.
0: The outcome documents cover common position on BRICS cooperation in areas such as global and regional matters, reform of the institution of global governance, including reforms of the UN Security Council, international financial institutions, fight against terrorism, trade, industry, finance, artificial intelligence, energy security, climate, biodiversity and sustainability, health and enhancing agriculture productivity and ensuring global food security and nutrition, supply chain resilience, disaster reduction, and of course, people-to-people exchanges, which is also a very key priority for our chairship. As you are all aware, the world today is navigating a period of unprecedented geopolitical and economic uncertainty, ongoing conflicts, economic volatility, climate-related risks, advancement in technology and associated disruption, supply chain challenges and disruptions are reshaping the global landscape. All these matters are also interlinked and have consequences for BRICS members, and I would say also for countries in the global south. There is a common view that BRICS must work purposefully in seeking common grounds for achieving practical, actionable, inclusive and development-oriented solutions through sustained engagement.
1: ये भी मांग रही है कि यूएन के प्रक्रिया में सुधार आना चाहिए. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबरशिप है, परमानेंट मेंबरशिप है, उनके पास वीटो पावर है, तो इसको लेके ऐसी क्या चर्चा हुई है इस बैठक में?
2: देखिए, इस बैठक में ये चर्चा हुई है कि इसको ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ को और ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस को, और उसके लिए जरूरी है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए. दुर्भाग्य से पिछले शताब्दी से ही ये बात होती रही है, लेकिन देशों के अपने राष्ट्रीय हित एक दूसरे से इस तरह टकराते रहे हैं कि देश इस मामले में कहीं भी कॉन्सेंसस या सर्वसम्मति नहीं स्थापित कर पाए. वीटो सिस्टम जो है वो एक बीमारी है, मैं कहूँगा. आपने आज की दुनिया में जहाँ लोकतंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है, वहाँ पर आपने एक तरह से डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दिया है. अब होता क्या है कि जिस देश के खिलाफ कोई प्रस्ताव होता है, अब वो देश तो वीटो करेगा ही, इसलिए वहाँ पर वो प्रस्ताव टूट जाता है.

0: ये बहुत जरूरी हो जाता है। और देखिए लेकिन इसमें कहाँ तक प्रगति हो पाती है कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात कई वर्षों से चल रही।
1: जियोपॉलिटिक्स का कोई समाधान है ब्रिक्स के पास?
0: देखिए मेरे ख्याल से तो जियोपॉलिटिक्स का समाधान न संयुक्त राष्ट्र संघ के पास है और न ब्रिक्स के पास है, इसलिए कि जब तक जियोपॉलिटिक्स में देश अपने राष्ट्रीय हितों के कुछ अंशों को छोड़ना न चाहेंगे या छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, और तब तक यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में इसी तरह से लड़ाइयाँ होती रहेंगी कि एक दूसरे के साथ नेशनल इंटरेस्ट, एक का नेशनल इंटरेस्ट दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट में दरारें डालता है, तो ऐसे में तो ये खाई पटने के बजाय बढ़ती जाएगी। इसलिए समाधान यही है कि अगर देश बैठ के ये सोचें कि हमें ठीक है अपने विकास के लिए दूसरे के विकास को अवरुद्ध नहीं करना होगा, तभी इसमें कुछ काम निकल सकता है।
1: अभी समस्या जो है वो है कि तेल का आना जाना मुश्किल हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ब्रिक्स क्या कर सकता है इसमें?
0: देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से ईरान को ब्रिक्स ये कह सकता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट खोली जाए, क्योंकि विश्व में जो भी मैन मेड, जो भी मानव निर्मित स्ट्रेट हैं, जलडमरू मध्य है, वो उस पर तो उन देशों का कब्जा हो सकता है या कंट्रोल हो सकता है जो उसके आसपास हो, जैसे स्वेज इजिप्ट का या जैसे पनामा का था चीन।
1: ये सारे मैन मेड
0: है, लेकिन जो नेचुरल है वो बाबल अंदब है या हुर्मुज है, मलाका है, पाक स्ट्रेट है, ये जो है ये मैन मेड नहीं है, नेचुरल है, और इन प्राकृतिक जल मार्गों पर किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से एक क्षत्र राज्य या प्रभुत्व नहीं हो सकता। तो इस दिशा में ईरान को ये कहा जाएगा, क्योंकि अगर हम ईरान की ये बात मान लेते हैं तो ये एक नई समस्या का जन्म देगा कि जो और बाकी स्टेट्स मैंने कहा है नेचुरल, उसमें वहाँ के देश उन पे कब्जा करें और उन पे अपना अधिकार जमाने की बात करेंगे, और ये एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि हर कुछ किलोमीटर पे आप टोल टैक्स देना पड़ेगा कंसर्न देश को, तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोशिश यही करनी होगी ब्रिक्स को कि ये कहें कि ईरान वहां से अपना एकाधिकार न बताए, थोड़ा कंट्रोल रखे, ठीक है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और साथ ही यूएस को ये कहना पड़ेगा कि वहां पे नाकाबंदी न की जाए क्योंकि वो मैनमेड नहीं है।
1: जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज आए आकाशवाणी में और आपने बड़े चर्चा की। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन, महत्वपूर्ण चर्चाएं और प्रमुख निष्कर्ष, शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। अब समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम।
4: ये आकाशवाणी इंदौर है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

दिल ने फिर याद किया। इस कार्यक्रम के साथ मैं हाजिर हूं आपका दोस्त राजेश जैन। प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें और श्रोताओं कार्यक्रम का आरंभ करते हैं निशान फिल्म के गीत के साथ, आवाज किशोर कुमार की। इसे लिखा है गुलशन बावरा ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

आरजू, ये है फिल्म का नाम। आवाज लता मंगेशकर की, शब्दकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

दिल ने फिर याद किया। आप सुन रहे हैं श्रोताओं ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं साथी फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में।

दिल वाले। इस फिल्म के लिए कुमार सानू, अलका याग्निक और अजय देवगन का गाया गीत सुनी। इसे लिखा है समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

इस गीत के साथ ही दिल ने फिर याद किया। ये कार्यक्रम समाप्त करने के अपने दोस्त राजेश जैन को आज्ञा दीजिए। ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के

0: समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखा ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 बिलियन US डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ पक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
5: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले 2 दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स के रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
6: अंडर द 3 पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देशभर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किये। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewzOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मॉनसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रूपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
6: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna, ye hamari sabse badi prathamikta hai. इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
5: प्राइम मिनिस्टर मोदी अराइव

अभिमान। इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया गीत सुनी। शब्दकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार SD बर्मन।

अभिमान की दो अहमियत है। एक तो ये कि बर्मन साहब के साथ मेरी सबसे आखिरी पिक्चर है और बर्मन साहब की लाइफ की भी सबसे आखिरी पिक्चर है अभिमान। उसके बाद वो फिर रहे नहीं दुनिया में। और उसमें एक गीत था, मुझे वो गीत बस पर्सनली बहुत पसंद है, न जाने आप लोगों को पसंद होगा या नहीं, कि तेरे मेरे मिलन की ये रहना नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना।

0: इस गीत के साथ ही चित्रगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या?
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: और सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: ये आकाशवाणी इंदौर है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन।

मन भवन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम, रेशमा और आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, वली और डब्लू डोम, मथुरा से वसीम आसमा, अकरम आसमा, उल्लाह और आसमा बिलदार, रिधोरा से बाबूलाल बोराखड़े, गोकुला और मंगेश गोराखड़े, यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता, मुस्कान मालाकार और इनके परिवार के सभी सदस्य, राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे।

आखिर क्यों, यह है फिल्म का नाम। आवाज लता मंगेशकर, अमित कुमार और साथियों की। इस गीत को सुनवाने का अनुरोध हमसे किया है वंदना नगर इंदौर से रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी और ललिता नारायण खर्चे। वारणा शाहपुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, तेजस।

तेजस्विनी, अंकिता, अनिकेत, करिश्मा, शौर्या कांबले, कल्याण महाराष्ट्र से डॉक्टर सूरज सुरबे और नमिता प्रकाश सुरबे, छत्तीसगढ़ भाटापारा धतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा।

अलग अलग, ये है फिल्म का नाम। आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने। धुन बनाई है शक्ति सामंत ने। इस गीत को सुनवाने का अनुरोध हमसे किया है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा ने। सुदामा नगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा, समता, चित्रा और निशा भंडारे। कोल्हापुर से तुषार कुर्णे, प्रसिका, एकता कांबले, मेघना कुर्णे, उत्कर्षा, अरुण सलगुड़कर, अरुण काले, एडी कांबले, अतुल गौतमी और धमदीना। कंवर कॉलोनी बड़वाह से इस गीत के लिए हमें अनुरोध मिला है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली से।

जुर्म, यह है फिल्म का नाम। आवाज कुमार सानू और साधना सरगम की, रचना इंदिवर की, संगीत राजेश रोशन का। पसंद करने वाले श्रोता हैं

कानपुरी से शेख फरीद मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हुसैन और खुशी। बड़वाह से बाबूलाल महाजन, शोभा महाजन, संजय, विजय, संध्या, अजय, नीता, सपना, सोनल महाजन और इनके परिवार के सभी सदस्य। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, खातून अंसारी, डुमराव से वलीउल्लाह और अस्मानाज अंसारी, अशोकनगर बसमत महाराष्ट्र से पार्वती सखाराम, दीपाली राजू, रोहित, सोनू, मोनू और इनके परिवार के सभी सदस्य। सरीमपुर बक्सर से एसडी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी, निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, माटेगांव पूर्णा से शेषराव देवराम बोड़े और इनके बहुत सारे दोस्त, मंदसौर से भगत राम चौहान, कृष्णपाल चौहान, मयंक और प्रीति चौहान।

जहर इस फिल्म के लिए उदित नारायण की आवाज़ में सुनिए ये गीत। इसे लिखा है सईद कादरी ने और धुन बनाई है रूप कुमार राठौड़ ने। इस गीत को सुनना चाहा है राणापुर जिला झाबुआ से अनिल सालेचा, पिंकी, पंकज, आशा और नमन सालेचा। बागटांडा से इस गीत के लिए हमें लिखा है प्रवीण, किरण, प्रियांक और गौरव जैन ने। उज्जैन से इस गीत को सुनना चाहा है शोएब अफाक सिद्दीकी। मक्सी से दयाराम जाटाव, चेंसी आरोल, नानूराम कांसोटिया, नंदकिशोर और दीपक कांसोटिया। महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले। वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर ने।

मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन। अनुरोध करने वाले हमारे श्रोता हैं रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और इनके परिवार के सभी सदस्य। इंदौर से अनिल कवचाले, नेहा फणसी, सीमा सबिया, पूजा नैनावा, सुषमा स्मिता कवचाले और इनके बहुत सारे दोस्त।

जी आगर से रघुनाथ मालवी, भंवर सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, श्याम, भावना, दुर्गा, मधुबाला, मिलन, विशाल और ओम प्रकाश मालवी। इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। पुणे से इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, चंद्रप्रभा वाड़ोदे और इनके परिवार के सभी सदस्य।

सड़क। इस फिल्म के लिए अनुराधा पौडवाल का और कुमार सानू का गाया गीत सुनिए। समीर और सुरेंद्र साथी का लिखा हुआ यह गीत है। इस गीत को सुनना चाहा है खंडवासी संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। मालेगांव से सुनीता घायड़, सानिका और गजानन घायड़। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, सरिता गवांडकर, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश गवांडकर। बहादुरा नागपुर से शैलेश, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गवहानकर। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा। ग्राम लोहारी से राजेश धनजे, राहुल, विशाल, शीला, गायत्री धनजे। मानपुर से विजय वेद, रानी, महिमा, नीतू वेद और इनके बहुत सारे दोस्त।

क्रांति। इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश का गाया गीत सुनिए। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है। और अनुरोध करने वाले हमारे श्रोता हैं अशोकनगर बसमत से पार्वती, सखाराम, दीपाली, राजू, रोहित, सोनू, मोनू, जिला हिंगोली से रामचंद्र हिंगोले, सिद्धांत, टिक्कू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजूषा और गौतम हिंगोले, झुमरी तलैया से देव, छकुली, छोटू हिंगोले और आरडी हिंगोले, लातूर से उस्मान शेख, सायरा बानू, दस्तगीर फैजन बी, शाकिर शेख, इस्लाम बी, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सिमर, सानिया, शाकिल, गदर और निलोफर शेख।

इस गीत के साथ ही आज का मन भावन कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त राजेश जैन को अनुमति दीजिए। ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी इंदौर है। शास्त्रीय संगीत लीजिए, इस कार्यक्रम में सुनिए विदुषी गंगूबाई हंगल का गाया राग यमन।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी गंगूबाई हंगल का गाया राग यमन, और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
3: ये आकाशवाणी इंदौर है, 11 बजा चाहते हैं, समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
5: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हुरमुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2000

0: 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Dr. S. Jaishankar also met foreign ministers of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. Prime Minister Narendra Modi has said that government remains committed to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi rejected a report of a media house on cess or tax or surcharge on foreign travel. He said the report is totally false and there's not an iota of truth in it. The Prime Minister said there's no question of putting such restrictions on foreign travel. The Central Bureau of Investigation has arrested the kingpin in connection with alleged irregularities in paper leak related to NEET UG 2026 examination. The agency said that P.V. Kulkarni has been arrested at Pune after thorough interrogation. P.V. Kulkarni is a chemistry lecturer involved in the process of examination on behalf of National Testing Agency. He had access to the question papers. Lok Sabha Speaker Om Birla has constituted the Empowerment of Women Committee. BJP MP from Lok Sabha, Dr. D. Purandeswari, will be the chairperson of the committee. The committee comprises of 18 members from Lok Sabha and 10 members from Rajya Sabha. The members of the lower house include prominent personalities like Hema Malini, Harsimrat, Kumar Badal and Ikra Chaudhary. In IPL cricket, chasing a target of 188 runs set by Chennai Super Kings, Lucknow Super Giants were 164 for 3 in 16 overs at Ekana Cricket Stadium, Lucknow, when reports last came in. Chennai Super Kings scored 187 for 5 in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी इंदौर है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये अंतिम सभा समाप्त होती है। कल प्रातः 5:51 पर प्रातःकालीन सभा में इसी मीटर पर पुनः उपस्थित होंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।